नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 जुलाई सन 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: ये है विविध भारती। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024

0: इसके अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का कथन है, क्रोध में हजार शब्द बोलने से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। ये था आज का चिंतन। लीजिए वंदनवार में आपको सुनवाते हैं भक्ति रचनाएं।

यह है विविध भारती। झरोका में लीजिए सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 260, 6:35 से। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला घुंघरू की तरह। कलाकार गायक संगीतकार रविंद्र जैन। इस कार्यक्रम का पांचवा भाग आज आप सुनेंगे, समय सुबह व शाम 6:45 से। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से, हम है राही प्यार के। आठ 8:15 से और दिन में 2 बजे से त्रिवेणी सुनिएगा। चित्रलोक सुबह 8:30 और रात 8:15 से। नौ 9:30 से आज के फनकार केंद्रित होगा संगीतकार जीएस कोहली पर। आलेख व स्वर यूनुस खान। दस 10:00 पिटारा में सुनिए

11 बजे से चित्रपट संगीत। ग्यारह बजकर 30 मिनट से मैटिनी शो, जल है तो कल है। पर्यावरण विशेषज्ञ शुभजीत मुखर्जी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। आज होगा इसका दूसरा भाग। एक बजे से सुरीला सफर, 2 बजकर 30 मिनट से सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे से लेकर आएंगे मनचाहे गीत। दिन में 3 बजकर 30 मिनट से नाट्य तरंग में नाटक वो मंजिल कहाँ, लेखक डॉक्टर रणवीर सक्सेना, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। चार बजे से पिटारा में सुनिए बॉम्बे टाकीज। फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। पांच बजकर 30 मिनट से तराने नए पुराने, 6 बजकर 35 मिनट से संध्या रंजन। शाम 7 बजे से विशेष जयमाला पार्श्व गायक अनूप जलोटा द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। 7 बजकर 45 मिनट से इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा। 8 बजे हवा महल में सुनिएगा सुनो कहानी, पी सनहारी का कुआं। इस कहानी का पहला भाग आज आप सुनेंगे। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वाचन अमरकांत दुबे। रात 9 बजे से आपके लिए लेकर आएंगे, 10 बजे से छाया गीत और 10 बजकर 30 मिनट से ढलती जाए रात। 'झरोखा' में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

शबरी के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया, भक्ति जिसके अभाव में जात पात कुल धर्म धन ऐश्वर्य सभी निरर्थक और निष्फल होते हैं। इस प्रकार जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ होती है वो शबरी को सहज ही प्राप्त हो गई। क्या उसे जनक नंदिनी सीता का कुछ अता पता है? श्री राम के इस प्रश्न के उत्तर में शबरी उन्हें पंपा नामक सरोवर जाने का परामर्श देती हैं, जहां उनकी भेंट होगी धीर बुद्धि वाले वानर राज सुग्रीव से। श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर चलते हैं। अतुलनीय शोभा युक्त वन में

सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने जोड़े के साथ विचरण कर रहे हैं, ये देखकर उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। राम लक्ष्मण को देखकर हिरण भागने लगते हैं, तो हिरनिया मानो उन्हें आश्वस्त करती हैं कि तुम्हें भयभीत होने का कारण नहीं, क्योंकि तुम साधारण हिरण के वंशज हो। ये लोग तो सोने का मृग खोजने आए हैं।

0: अंगूरों की तरह। कार्यक्रम के इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: प्यारे दोस्तों, एक पंक्ति मुझे याद आती है, एक पंक्ति मतलब कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। कोश में यूं तो हजार

0: हजारों शब्द हैं। कोश को कविता कहा जाता नहीं है, काव्य उस अनुभूति का सम्यक प्रकाशन बिन कहे जिसको रहा जाता नहीं है। शेक्सपियर ने भी कहा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस इज पोएट्री। प्यारे दोस्तों, रविंद्र जैन साहब का गायन पक्ष और संगीत निर्देशन का पक्ष जितना सशक्त है उतना ही सशक्त है उनका लेखन। दादा एक बहुत अच्छे दर्जे के साहित्यिक प्रतिभाशाली कवि और गीतकार हैं। इनकी प्रतिभा में कई बातें जुड़ गई हैं। क्योंकि दादा लिख नहीं पाते हैं, दृष्टि मंद है, फिर भी ईश्वर ने इनको इतनी संपदाओं और प्रतिभाओं से नवाजा है कि ये स्पॉन्टेनियस वहीं के वहीं तुरंत वातावरण और माहौल को महसूस करके कविता कह देते हैं। ऐसे कवि बहुत कम होते हैं और मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि आज की श्रेणी के कवियों में रविंद्र जैन साहब कवि के रूप में बहुत ऊंचे हैं। आपके लेखन के बारे में आपके अनुभव के साथ कुछ जानना चाहते हैं।
1: मुझे साहित्यिक मेरी अभिरुचि बहुत, जैसे मैंने आपसे बताया, प्रारंभ से है
0: जी।
1: लिख कितना पाया हूँ वो तो नहीं कह सकता, लेकिन सुना बहुत अच्छा अच्छा है। हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसे ऐसे कवि हैं, ऐसे लोगों ने रचनाएं की हैं कि बस आदमी पढ़ता रहे। मैं ये मानता हूँ उम्र बहुत कम है ऐसी कलाओं को, ललित कलाओं के लिए, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ लें सुन लें वही हमारी उपलब्धि है। मैं थोड़ा बहुत जो कहता हूँ वो, जैसा कि आपसे बताया, अलीगढ़, एक तो उसकी उसमें फाउंडेशन में अलीगढ़ मौजूद है, फिर कलकत्ते गया टैगोर का, उनको पढ़ा सुना बहुत,
0: साहित्य पढ़ा टैगोर
1: जी, बहुत अच्छे अच्छे वो तो क्या कहें, लाजवाब लोग हैं। आज आप कविता के किसी मोड़ पे खड़े हो जाइए, गुरुदेव आपको वहां मिलेंगे।
0: शिलालेख हैं वो लोग,
1: शिलालेख
0: बिल्कुल।
1: फिर वहां के कंपोजर काजी नजरुल इस्लाम और डीएल राय, बड़े बड़े बड़े विशेष लोग,
0: कमाल के लोग हैं ये।
1: जी जी, तो उन वहां से मुझे जो गढ़ा गया है उन सब चीजों ने गढ़ा है। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ आज हम जो कुछ कहें कम से कम ऐसा कहें कि उन लोगों को शर्मिंदगी ना हो, उनसे अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन उनको शर्मसार ना होना पड़े।
0: अच्छी बात कही आपने। हम चाहते हैं कि आपकी सृजन की हुई कुछ रचनाएं हम अपने श्रोताओं को सुनाएं और आपके काव्यात्मक हुनर का भी दर्शन करें।
1: फिल्मों में तो आपने महसूस किया कि मैंने हमेशा उन गीतों की ऊंचाई देना चाहिए है, ऐसे लफ्ज लाया हूँ, संकेत है और इस तरह के, जल जो जल न होता तो ये जग जाता जल,
0: जी
1: अलंकारों का प्रयोग है, सजना है मुझे सजना के लिए।
0: और बल्कि मैं यहाँ यूँ कहूंगा कि आपने फिल्म और साहित्य को बहुत नजदीक लाने की कोशिश की है जिसमें आप सफल हुए हैं, तो कुछ अपनी रचनाएं
1: आपको सुनाता हूँ। पीछे एक मेरी किताब शाया हुई थी गजलों की
0: जी,
1: उजालों का सिलसिला, उसमें से एक गजल के दो तीन शेर आपको सुना रहा हूँ।
0: इरशाद।
1: उफ ये सफर तवील ये छालों का सिलसिला, उफ ये सफर तवील ये छालों का सिलसिला, उफ ये सफर तवील ये छालों का सिलसिला, उस पर मिजाज पूछने वालों का सिलसिला।
0: क्या बात है, वाह वाह,
1: उस पर मिजाज पूछने वालों का सिलसिला। हम ही ना अपनी कैद से बाहर निकल सके,
0: क्या बात है,
1: वरना कहाँ नहीं है उजालों का सिलसिला।
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: वरना कहाँ नहीं है
0: उजालों का
1: सिलसिला। इंसान को सारी उम्र फिर आता है दर बदर, दो रोटियों का चारने वालों का सिलसिला।
0: क्या कहने, इसमें तो आपने पूरा दर्शन डाल के रख दिया दादा। वाह,
1: इसमें बहुत सारी गजलें हैं, नज़में हैं।
0: कुछ और इशाक करें,
1: एक हिंदी की कुछ रचनाओं का संकलन
0: स्वागत है
1: अभी निकालना चाह रहा हूँ, उसमें से एक गीत आपको सुना रहा हूँ। और उस गीत की विशेषता यह है कि वो गीत मैंने, मेरी जीवन संगिनी दिव्या जो है वो इसी गीत से प्रभावित होकर जीवन में आई, सौदागर की रिलीज पे मुझे मिली थी, लेकिन उसके मेरा साहित्य पक्ष उसको बहुत पसंद था।

0: दादा, आपके इतने सुंदर गायन और इतनी सुंदर शब्द रचना से ऐसा लगता है कि इस सृष्टि को बनाने वाला जरूर कहीं ना कहीं है जिसने आप जैसा प्रतिभा संपन्न कलाकार इस धरती पर उतारा। अच्छा, आपके लेखन के सफर में आगे चल रहे हैं तो आपने बहुत सी सांकेतिक भाषाएं और तुलनात्मक भाषाएं और अलंकार बहुत इस्तेमाल किया अपने गीतों में, जिससे संगीत का यानी फिल्मी संगीत का स्तर बहुत ऊंचा जा पहुंचा है। कुछ ऐसे गीतों के बारे में जानकारी दें जिसमें आपने कई उपमाएं और कई अलंकार इस्तेमाल किए हैं और कॉमर्शियली भी वो गाने बहुत हिट हुए हैं।
1: सबसे पहले वो सौदागर में आशा जी का गाया हुआ गीत सजना है मुझे सजना के लिए।
0: वाह वाह वाह, क्या उपमा है।
1: एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ। भूषण जो वीरस के कवि हैं आपने उनको जरूर पढ़ा होगा।
0: जी जी।
1: ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं।
0: वाह वाह।
1: तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती हैं। नगन जड़ाती थी सो नगन जड़ाती हैं। तो इसी तरह का प्रयोग इस गीत में है।

0: आशा जी बहुत वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं, हर तरह के गीत की गाने की आशा उनसे की जा सकती है। इसी तरह वो गीत गाता चल में ये है ना अपना उसका टाइटल सॉन्ग
1: गीत गाता
0: जल जो ना होता तो ये जग जाता जल।
1: वाह वाह वाह,
0: एक शब्द के दो अर्थ
1: निकलते हैं।
2: चांदी

0: जब कोई गीतकार संगीतकार बनता है और जब कोई संगीतकार गीतकार बनता है तो वो रविंद्र जैन बन जाता है। दादा, आपके गीतों में, गीतों की पंक्तियों में शब्दों का इतना अच्छा फैलाव है, इतने अच्छे अर्थ हैं, गेयता के साथ साथ उनमें आध्यात्म भी स्वयं चला आता है जो आपके एक नहीं अनेक गीतों से जाहिर होता है। संगीत सरिता के प्यारे श्रोताओं, आज की इस कड़ी का सफर यहां समाप्त करते हैं और अगली कड़ी में रविंद्र जैन साहब के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे।
1: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूप

द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। योगेश ने इसे लिखा, जीएस कोहली का संगीत। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सब।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा, अफवाह फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध की जाए कठोर कार्रवाई। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं इस मामले पर संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
4: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इससे पहले गुरुवार रात प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। इस बीच सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को

बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में अहम कदम है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार

0: सर्वोच्च न्यायालय ने कल केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि वह परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम में बदलने के लिए क्या कदम उठा रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
1: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों को हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। दोनों केंद्रीय मंत्री कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के साथ आज एक बार फिर चर्चा करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा युवाओं के हितों को ध्यान में रखा है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में समय रहते कार्रवाई के साथ दोबारा परीक्षा भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने के बजाय सदन में चर्चा करनी चाहिए।
2: वह हमारा देश का भविष्य और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि देश का एसेट और प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं पे फोकस किया है और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की। हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सदन में बात करो कि युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत ना आए, वैसा जो आपके पास सुझाव हो ताकि उसका कानून बनावे नया ताकि आगे से पेपर लीक आओ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा और अन्य पर्वों को लेकर कल देर शाम उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा में प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौहार्द बिगाड़ने, अफवाह फैलाने, मिलावट, ओवररेटिंग, अव्यवस्था या अराजकता करने का प्रयास करने वाले तत्वों के विरूद्व कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रखी जाएं। इसके साथ ही प्रत्येक दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा प्रदेश के किसी एक हिस्से तक सीमित आयोजन नहीं रह गई है, ऐसे में हर जनपद में व्यवस्थाओं पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा से पहले यात्रा मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर लेने के भी निर्देश दिए। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आगामी सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कई विभागों और जनता के बीच समन्वय बनाया जा रहा है।
3: कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश से जुड़े हुए चाहे वो सरकारी विभाग हों या फिर आमजन हों या जो भी समितियां, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया गया। मुख्य जो घाट हैं जहां से गंगा जल लेके लोग शिवालयों में जाते हैं वहां का निरीक्षण किया गया, रूट का निरीक्षण किया गया। घाटों पर जहां जहां पे जल पुलिस की सहयोग लेनी है, जल पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस तरह से श्रद्धालुओं को कहीं कठिनाई न हो इसके लिए हमारे पूरे अधिकारी पूरे अलर्ट मोड में हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के दौरे पर रहेंगे। वह फतेहाबाद रोड स्थित टाटा मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान 342 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुरसराय नगर पालिका परिषद और गरौठा नगर पंचायत

नियुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल, बिजली और आधारभूत ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। सहारनपुर के गंगोह थाना अंतर्गत ग्राम नयाकुंडा में एक पटाखा फैक्ट्री में कल शाम विस्फोट हो जाने से दो मजदूरों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अयोध्या और बलिया में घाघरा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत सभी संवेदनशील जिलों में वहां का प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। मौसम विभाग ने आगामी पांच दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा, अफवाह फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध की जाए कठोर कार्रवाई। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान, सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद, अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
0: वीडियो

0: फिर आप पहुंच।
1: फिल्म काला पानी से गीत अभी आप सुन रहे थे और मोहम्मद रफी की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।

फिल्म लूट मार से अभी आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। प्रोग्राम में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।

0: इंसाफ का तराजू इस फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम है राही प्यार के संपन्न होता है। ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय

0: कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हथकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारे बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच शांति
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
4: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि यह दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compass. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज,
4: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
3: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के

0: खिलाड़ियों में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रूपये जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक, लोकसत्ता लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट अप्रूव्स एंटी पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified 4 positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been under

अरिजीत सिंह की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, मेट्रो इन दिनों फिल्म का नाम था। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये फिल्म का नाम था। शेखर रावजियानी, सलीम मर्चेंट, नीति मोहन और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। विशाल शेखर का संगीत, अनविता दत्त ने इसे लिखा।

0: शाहिद माल्या को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था उड़ता पंजाब, अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त प्रोग्राम चित्रलोक। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

जावेद अली और बन ज्योत्सना की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दे दनादन फिल्म का नाम था, आशीष पंडित ने इसे लिखा और प्रीतम का संगीत था। दोस्तों आपको बता दें कि आज है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, यानी विश्व डूबने से बचाव दिवस। सन 2021 के दिन इसे मनाने की शुरुआत हुई थी और इस दिन का मुख्य उद्देश्य पानी में डूबने की घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जीवन बचाने के उपाय बताना है। और हमें खासकर छोटे बच्चों को, 5 साल से 14 साल के बच्चों को डूबने के खतरों के बारे में बताना चाहिए और उन्हें इससे बचाव के तरीके भी सिखाने चाहिए। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: मोहित चौहान को अभी आप सुन रहे थे तमाशा फिल्म से, इरशाद कामिल ने इसे लिखा और A.R. रहमान का संगीत।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल,
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: विविध भारती से स्वतः आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं ममता चोपड़ा।
1: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू मैम।
1: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
2: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है बट उस जगह को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूँ कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट इजी।
1: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही हैं, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में हैं। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, आपने देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना शुरू किया होगा।
2: जी।
1: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोल कीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो गोल कीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं।
2: जी, मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से और वहां पे हॉकी, बैडमिंटन और जूडो है। तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे क्योंकि गांव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहां जाना है। तो मेरे मम्मी जी को गठिया

0: था उस टाइम पे, और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा गाय भैंस का जो काम होता है मैं पापा और भाई मिलके करते थे। तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। बट फिर मैं दादाजी के पास गई और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूँ तू हॉकी खेल। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है कैसे, तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है। उनकी जो वर्डिंग थी ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। और हम एक दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार मिलता था। तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है तो मुझे खेलनी तो हॉकी है।
1: अच्छा
0: जी, फिर मैंने हॉकी की ट्रायल दी और वहां मेरे फिजिकल टेस्ट हुए थे क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट, तो वहां पे मैं सेकंड आई थी। गई, मन नहीं लगा क्योंकि वो लाइफ बहुत एक
1: गवर्नमेंट होती है ना।
0: जी, डिसिप्लिन्ड, एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया वो माइंड में था, तो काफी रोती थी। हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर से।
1: क्या उम्र थी आपकी उस समय?
0: 13 साल की थी।
1: अच्छा जी, 13 साल की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया।
0: अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया, इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूँ और घर वापस चली जाऊँ। काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, खाना भी छोड़ दिया था खाना। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है, आप लेके जाओ। तो पापा लेने आए और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे सी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्ल्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने। मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा, बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी। मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ, तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा मंडे को तू वापिस जा रही है। मैंने बोला नहीं मैंने छोड़ दिया है सबको, मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई हूँ। तो बोले कि नहीं बेटा अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी, उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं बोल। तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रूपये गोलकीपर किट के कोच को देके आए हैं, क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे दो गोलकीपर हैं, तो मेरे पास साल में दो ही किट आती है, या तो आपको
1: एक साल। आपके पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना?
0: जी, मेरे पापा जॉब करते थे, बट 8,500-9,000 रूपये सैलरी थी, और वो चीज मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रूपये ऑलमोस्ट दो महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी। काफी रोई मैं, पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहां पे, और काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहां पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज किया।
1: आपने काफी गोल बचाए।
0: जी, तो वहां जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे उन्होंने मुझे आके 100 रूपये दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है, तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है मुझे।
1: लेकिन आपने जो शुरुआत की, जब उसके बाद आप साई अकेडमी गए, उसके बाद नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी, मतलब है ना, उस पर आपने एशिया कप खेला। ये जो आपने हॉकी के मैदान में गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सविता का क्या जज्बा होता है मन में?
0: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई, और हम गांव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया है। तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे और एक आज लड्डू बांटूंगा। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया, आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे, तो सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है, बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गई कैंप में और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो। तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी, तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मैं भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादाजी मेरे पास आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहां नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है, और काफी खुशी थी उनके आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे, बट वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबड़ में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा एक साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा।
1: अच्छा?
0: मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा।
1: क्या बात।
0: और आज वो हमारे साथ नहीं है, बट वो चीज सच हुई। एक साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया। उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67

0: वन ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो खड़ी होती है गोल के आगे, सविता वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन खासकर उन इंस्टांसेस की बात बताएं जब आपने जापान के गोल रोके, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने नौ नौ गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था, और आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे?
0: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया, क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। मुझे मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी, बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं, वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई

0: दूर रहती थी, बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं, वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था, और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। 1980 में बुलाया था, बट वो एक इन्विटेशन था, है ना, टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा मैच था वो, मुझे आज भी याद है। और उस 1.5 ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बीइंग ए फर्स्ट गोलकीपर, प्रेशर सिचुएशन था, बट जब जब एक सेव करते हैं और पता है कि एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है, और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई, अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, तो पापा ने बोला बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है, बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है, तो मैं डायरी लिखती हूँ नॉर्मली। तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है, ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं। बस मैम, बहुत गोलकीपर की, नॉर्मली लोगों को शायद लगता है कि गोलकीपर्स का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं। गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं, हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है, और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है। तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा एड की, और कोचिज से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है, और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही, हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और इंडिया अपने पूल में लास्ट आया। और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जैसे मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है, तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है, बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से, वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को बोला पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे। अच्छा। मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे वो जरूर ये चीज को मेंशन करेंगे। अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि हमारे एज ए टीम हमने बहुत काम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था, और लास्ट क्वार्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे, बट उनको वो एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते है ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापिस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है, हार रहे हैं, तो कोई भी उस टाइम पे उनको एक था कि शायद हम
1: साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती हैं।
0: दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा, हमें भी हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था। तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई, और एक एक मिनट एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। और लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले, और मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे, तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता।
1: आपके जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है, और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं अभी जिनको 3 बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है। सविता, आप तो कैप्टन भी रही है ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या?
0: डेफिनेटली, क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बट उसके साथ बींग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एड होती है, तो प्रेशर होता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए है, तो ऑफकोर्स कैप्टन इज ए
1: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली जॉब तो है। अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट्स में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं। इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
0: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ, और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि मैं छोटी थी तब था मुझे, बट 5th-6th क्लास तक था कि कुछ गांव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है। और आज के टाइम पे ये है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है तो इट्स मेक मी स्ट्रेस, कि मुझे उतना पसंद नहीं, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है।
1: ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन हेलमेट के पीछे जब छुपी होती हैं, उनके बाहर निकलकर जो सविता सामने आती है, उस सविता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो एक हॉकी प्लेयर से हटकर लोगों को जाननी होती है?
0: हॉकी से बाहर ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ कि हॉकी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है, बिना बिना हेलमेट के भी आज

0: मुझे वो कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं उस दिन का शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी हॉकी जर्नी को कंटिन्यू रखा।
1: वैसे आप जब छोटी थी उस वक्त आपकी प्रैक्टिसेस के लिए जाना करना और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पर हम देखते थे कि लड़कियों को लेकर उस वक्त तो आंकड़े और भी लैंगिक अनुपात के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था करना होता था तब क्या क्या मुश्किलें आती थी आप?
0: 2011 की बात है, उस टाइम हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं दिल्ली में ही थी, बेंगलोर से मैं दिल्ली आई थी और बस स्टैंड पे थी मैं, क्योंकि उस टाइम टैक्सी फ्लाइट ये सब उतना नहीं होता था, ट्रेन से आते थे और यहाँ से आगे रोडवेज से जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली से थी तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि पापा को मैं बताना भी नहीं चाहती थी क्योंकि अदरवाइज वो लेने आएंगे, फिर पैसा लगेगा, खर्चा होगा। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे थी, मेरे पास गोलकीपर बैग था और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे खड़ी थी, कोई मुझे बस में चढ़ा नहीं रहा था क्योंकि इतना बड़ा बैग है, देखे सबकी बैग रखेगी उतनी जगह पे 2 सवारी और बैठ जाएंगे। मेरा गला भराया था, मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बस में बिठाओ। तो उन्होंने बोला इतना बड़ा बैग और पास में जो लोग खड़े मजाक कर रहे थे, लग रहा है देश छोड़ के जा रही है। तो वो चीजें मुझे अंदर से वीक कर रही थी, इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वीक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों खेल रही हूँ। और उसके बाद में ज्यादा खराब तब हुआ जब मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको बस में नहीं बिठाएंगे, या तो आपको 2 पैसेंजर की टिकट खरीदनी पड़ेगी जी। और 250 मुझे याद है 250 रुपीज की एक टिकट होती थी और मैंने कहा नहीं 500 रुपीज तो एक्स्ट्रा, वो पैसे तो मैं बचा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, तो फिर बोलते आप ऊपर रख दो बस के ऊपर छत पे रख दो। मैंने बोला इतना बड़ा बैग लेके मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप बोल दो, आप किसी की हेल्प के लिए मुझे बोलो। तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी और मैंने पापा को रोते हुए फोन किया कि पापा मुझे नहीं खेलना है, मुझे हॉकी छोड़नी है क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं खेल पाऊंगी, कि मुझे बहुत खराब लगा आज ऐसे से हुआ। तो पापा ने बोला कि बेटा आज का दिन कैसे भी निकाल ले, चाहे मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं तुझे इस वजह से तो हॉकी नहीं छोड़ने दूंगा। पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव उठाना। और मैं इंडिया टीम में 2008 में आई थी और 18 तक मेरे पास जॉब नहीं थी। तो बट कभी भी पापा ने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के पास जॉब नहीं है। मम्मा थोड़ी टेंशन लेती थी क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ये था कि क्या पता कब इंजरी हो जाए। तो ये टाइम थे जहां पे लगता था कि मैं अपने माँ बाप को जो खुशी देना चाहती हूँ वो अभी भी अधूरी है, बट
1: और उनकी खुशी के लिए आप लगी रही हैं।
0: जी
1: लगी। ये जो आपने लोगों की बात की, लोग ऐसे कमेंट करते थे, सब करते थे, जब आपने खेलना शुरू किया तब भी तो आपको कमेंट सुनने को खूब मिलते होंगे।
0: बिल्कुल, बट मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये चीजें बाद में, जब मैंने ऑलमोस्ट इंडिया टीम में आने के भी 3-4 साल हो चुके थे, तब मुझे मम्मी ने बताना स्टार्ट किया।
1: तो क्या बोलते थे मम्मा, क्या बताती थी?
0: यही कि मतलब हाइट लंबी है तो क्यों शॉर्ट्स पहनना, क्यों जींस पहनना, और घर से बाहर भेजना वो भी तो सेफ नहीं है, कल को अपनी मर्जी से शादी करवाएगी, ये सब चीजें थी जहां। और बट मेरे पापा ने बोला कि हमारा डिसीजन है, हमारी बच्ची है, हम देखेंगे क्या करना है। तो वो मुझे बहुत बाद में खुशी होती थी कि कितने अच्छी चीजें कि वो चीजें मुझे पता नहीं चलने दी।
1: आपके मामा पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज पहुंची हैं। आई एम श्योर बहुत ही ऐसे हरियाणा के भी परिवार होंगे, बेटियां होंगी, जो आज आपको देखकर बहुत प्रेरणा ले रही हैं। चलिए यहाँ पर एक रैपिड फायर करेंगे सविता के साथ। पेनल्टी शूट आउट या पब्लिक स्पीकिंग, किससे ज्यादा नर्वस होती है आप?
0: पब्लिक स्पीकिंग।
1: अच्छा, एक स्ट्राइकर दुनिया का जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अलर्ट रहती है आप उसके खिलाफ?
0: ड्रैग फ्लिकर है नीदरलैंड से, ये भी जेंसन।
1: ओके, अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं होती तो क्या होती?
0: डॉक्टर।
1: डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहती थी?
0: पापा का सपना था क्योंकि मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो उन्होंने किसी वजह से, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से अपनी स्टडी को रोकना पड़ा। पापा ने बोला मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
1: एक टीममेट जो आपको कितना ही टेंस मोमेंट हो हंसा सकता है?
0: नेहा गोयल, शी इज वेरी फनी।
1: अच्छा, क्या मुश्किल है, पेनल्टी कॉर्नर बचाना या फिर अपने फेवरेट फूड को ना कहना?
0: पेनल्टी कॉर्नर बचाना।
1: अच्छा
0: जी,
1: खाने को ना करना आसान है
0: मेरे लिए, मैं आई एम नॉट रियली फूडी पर्सन।
1: ओके, अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया की से एक स्किल सीखनी हो तो क्या होगी?
0: मैं मैरी कॉम की फिटनेस को बहुत इंस्पायर करती हूँ।
1: ये सेंटेंस पूरा करिए कि लोग मुझे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि
0: मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
1: अगर आपको मैच खेलते हुए अपनी एक पोजीशन किसी के साथ स्वैप करनी हो गोलकीपर के हटकर तो क्या होगी?
0: मैं हमेशा ग्रेस, जो हमारी प्लेयर थी, उनके साथ हमेशा मजाक करती थी कि मुझे एज ए डिफेंडर खेलना पसंद है, क्योंकि जैसे गोलकीपर का एक परमिशन मिलता है कोचिंग करना, वैसे एक डिफेंडर है जो पूरी गेम को खिला सकता है। सो इट्स सेंटर डिफेंडर आई ऑलवेज एंजॉय।
1: ऑलराइट सविता, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। लेकिन अंत में देश की बेटियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मैं हर एक उस बेटी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करें लाइफ में और बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ बहुत हार्डवर्क करें और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएं। उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप मैदान पर उतरेंगी जो आप गोल बचाती आई हैं वैसा ही आप करिश्मा दिखाती रहें।

0: बहुत बहुत धन्यवाद हर्षद बात करने
1: के लिए। थैंक यू सो मच मैम।
0: सविता पुनिया, जाहिर है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो प्रेरणा देश की बेटियों को दे रही है वही आगे भी लगातार जारी रहे, हमारी ओर से यही शुभकामनाएं हैं। आज बस इतना ही, नमस्कार।
2: हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। ये कार्यक्रम DD News के सहयोग से प्रस्तुत किया गया।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी

0: आज के फनकार।
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की।
2: अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा तड़प

ऐसा संगीतकार जिसने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन अपना बड़ा नाम किया और लोगों ने उनको दिल दिया।

0: फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थीं। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।
1: कुछ समझ नहीं आ

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का।

गोपी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज।

इसके ठीक बाद निर्माता जीपी सिप्पी ने जीएस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर।

1963 में जी एस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने बरसों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है। सुनिए फारूक कैसर का लिखा ये गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम पर।

फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जी एस कोहली हैं।

और फिर सैक्सोफोन की तरंगों पर सवार होकर आती हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, शिकारी फिल्म का ये बेमिसाल गाना।

इसके बाद आई चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा मोहम्मद रफी का गाया ये गाना खूब कामयाब हुआ। यहाँ एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं, माना मेरे हसी सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था, माना मेरे हसी सनम तू रश के महताब है।

जी एस कोहली के संगीत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओपी नैयर के रिदम में दिया वो ओपी नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जी एस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे

बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जीएस कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जीएस कोहली की अपनी भी शैली है। कहीं ना कहीं नैयर के गानों में जीएस कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए, साल 1965, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। ये गाना अज्जान का लिखा हुआ है।

साठ के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिनमें जी एस कोहली का संगीत था, जैसे नौजवान और संग दिल वगैरह। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, ये जी एस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है कि जब ओपी नैयर और जी एस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं, तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। ये वो शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है।

25 जुलाई 1996 को जीएस कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। जीएस

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जीएस कोहली पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। सपनों की नगरी मुंबई, यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए भागते हैं, तो कुछ खुद को भूलकर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए उन्हें निभाने के लिए अपनी जिंदगी भी भूलकर जीते हैं। सुधा भी उनमें से ही एक है। भाई के जन्म के समय माँ दुनिया छोड़ गई और तभी से सुधा के नन्हे कंधों पर छोटे भाई बहन और घर की जिम्मेदारी लद गई। कंधे बड़े होते गए और उसके साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ चला। सुबह जल्दी उठकर पिता की सेहत, उनकी खत्म होती दवाइयों की चिंता करते हुए बाहर से पानी भरना, रसोई में खाने की तैयारी, भाई बहन को जगाकर स्कूल के लिए तैयार करना और इसी बीच खुद भी ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलना उसका रोज का काम था। भागते दौड़ते ही कुछ खा लिया तो भला, नहीं तो ना सही। इन कामों के बीच समय को पकड़कर रखना उसका सबसे मुश्किल काम होता, क्योंकि कुछ भी करती लेकिन समय उसकी पकड़ में ही ना आता और वो रोज ऑफिस में लेट होकर डांट खाती। सुधा भी क्या करती, समय पर निकलने की कोशिश धरी ही रह जाती। वो बस खुद से यही कहती कि एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा, लेकिन एक रोज जब वो मुंबई की भारी बारिश में भीगते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंची, तो मैनेजर ने उसके हाथों से फाइल लेकर सीधे शब्दों में उसे कहा, मैं सुधा, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसे लोग नहीं चाहिए। सुधा कुछ पल के लिए खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके मन में भी लाखों सवालों की गरज जारी थी कि अब सब कैसे होगा। तेज बरसती बारिश उसकी आंसुओं को भी बहाती ले जा रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम आज इस बारिश के कारण उसे आंसू छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ी।

0: बेहतर है कि मर जाए।
1: ये गीत सुधा को पसंद था क्योंकि नायक मरने को जीने से बेहतर बताता है, लेकिन ये बात कहते हुए वो बहुत सकारात्मक ही नजर आता है क्योंकि वो भी जीवन ही चुनता है। सच भी है, जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अगले कुछ दिनों तक सुधा नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ ठोकरे खाती रही। अब नौकरी जल्द पाना जरूरी था क्योंकि पापा की पेंशन तो उनके इलाज के लिए ही कम पड़ती थी, उस पर भाई बहन की फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा बहुत थक गई तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज, हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही, फिर धीमे से उसने कहा, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है। उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची, तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी आप सबसे स्ट्रांग हो। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई, फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा जी, मैं चंदन बोल रहा हूँ, हमारी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आप आ जाकर ऑफिस में मिलिए, मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूँ। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो आप सुन रही है ना, आज आप कितने बजे आएंगी। जी हाँ मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ, थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई, पापा मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े, पिता की आंखें भर आई और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉरपोरेट फर्म थी जहाँ हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहाँ देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को ये समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वो अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आती हैं मिस सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं? ये सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ सर,

रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा आप ठीक हैं? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभालिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं? जी। कितने घंटे? 3-4 बस। और बीती रात? नहीं सो पाई। क्यों, कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा, मिस सुधा आपको कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी होठी, मिस सुधा आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है, आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है। कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है, हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा। जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

दिन बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची, तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन न आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे, इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं, इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपने पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप, अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूँ, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई? सर मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी, सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मिस सुधा ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया। पर सर आप भी तो। मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूँ, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपए बचे थे तो

कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में आपने ओवरटाइम किया है तो इतना तो बनता है। सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊँ, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान, ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूटकर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी, माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही

नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई। जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी, ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे हैं रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची, वहां उन्हें दिखाकर दवा लेकर उन्हें घर छोड़ने आई। फिर सरला को पापा के पास बिठाकर जल्दी ऑफिस भागी। पड़ोस की संजना दीदी को हिदायत दी कि वो भी बीच बीच में देखते रहें और कोई भी बात हो तो तुरंत कॉल कर दें। ऑफिस पहुंची तो वो आज 2 घंटे लेट हो चुकी थी। रमन ने उसे देखते ही कहा, सुधा आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया, बॉस ने मिलने के लिए कहा है। अपना सामान डेस्क पर रखकर सुधा सीधे रमेश के केबिन में पहुंची। रमेश काम में व्यस्त था, उसने सुधा को बैठने का इशारा किया। इस चुप्पी ने तो सुधा की जान ही निकाल दी थी। रमेश ने अपना वो काम पूरा किया और पूछा, आज इतनी देर क्यों? सर पापा की तबीयत, कहते हुए सुधा का गला रूंध गया और वो आगे कुछ ना बोल सकी। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आप जानती हैं कि आप इन्फॉर्म करके घर पर रह सकती थी, पर आपने 2 घंटे बाद ऑफिस आना चुना, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल करना ठीक नहीं समझा? क्यों? सर मैंने सोचा कि संभाल लूंगी, सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा। क्या संभाल लेंगी आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं। आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर, भगवान न करे, लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं पिछले 1 घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूँ, आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है, रमेश ने पूछा तो सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं, मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हाँ में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा, आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है, कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहाँ पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकाल कर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

को ऐसे खाते हुए देखने के लिए तो मैं रोज ला दूंगी। ये कहकर सुधा हंस पड़ी। तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ, रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था। पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा।

अगले दिन जल्दी ऑफिस आकर रमेश सुधा का इंतजार करने लगा। न सुधा आई न उसका फोन लगा। चंदन ने बताया कि सुधा ने छुट्टी ली है। रमेश बेचैन सा रहता, लेकिन उसे लगा कि सुधा के साथ इतना कुछ लगा रहता है कि क्या किया जा सकता है। हफ्ते भर बाद चंदन ने बताया कि सुधा ने ऑफिस में काम छोड़ने की अर्जी दे दी है। रमेश को तो कुछ समझ ही नहीं आया। चंदन ने साथ आया एक खत भी रमेश को दिया। जब रमेश ने खत खोला तो उसमें लिखा था, सर इंसान चाहता क्या है और होता क्या है। आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपके लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूँ। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार है। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहाँ किसी की सुनती है। माफ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई आ जाए जो आपको रोज टिफिन बनाकर दे। आप ये कोशिश कीजिएगा, सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता। वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी। रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही निछावर कर दिया।

तो एक बार फिर भागते शहर मुंबई में जीवन की जद्दोजहद के बीच एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है, वाचन नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रपट संगीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें आपने सुनी बुढ़ा मिल गया फिल्म के इस गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत, और अब आपको कारवां फिल्म से गीत सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत विविध भारती पर।

0: कारवां फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

करेगा तो फिर क्या करोगे।

0: एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय। और आपको ये भी बताते चलें कि आज बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकते हैं शाम 4 बजे से फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा। और अभी सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

चोर मचाए शोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मैटिनी शो प्रोग्राम में पिछले हफ्ते हमने बातें की थी जल है तो कल है, सुभजीत मुखर्जी हमारे बीच मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं और उन्होंने बीते हफ्ते बताया था कि कैसे जल संचय किया जा सकता है। उन्होंने शुरू किया था वृक्षारोपण से और तब उन्हें समझ में आया कि पेड़ तो तभी जिंदा रह सकते हैं जब पानी उनको जरूरत भर का मिलेगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
1: थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ के, क्योंकि आपके जो लिसनर्स हैं
0: जी
1: वो नेचर लवर्स हैं, वो ऑन ग्राउंड है, वो बातों में विश्वास नहीं करते हैं, वो काम करते हैं, जो इतने कर्मयोगी हैं सब
0: जी,
1: उनके साथ मिलके जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आता है, जिस हिसाब से कॉल्स आते हैं, पिछले हफ्ते जब बात हुई कई लोगों ने मुझे मेल किया है, इनफैक्ट मेरे इनबॉक्स लगभग भरने वाला था
0: जी जी,
1: तो बहुत अच्छा लगा इस बात
0: बिल्कुल, क्योंकि विविध भारती को पूरे देश में और बल्कि दुनिया के तमाम देशों में लोग सुनते हैं और ये वो लोग हैं जो अपने तई बदलाव करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते जब हमने बातें की थी तो आपने जल तारा के बारे में बताया था, मैं ये जो बातचीत है इसको गांव की दिशा में मोड़ना चाहता हूं।
1: बिल्कुल,
0: गांव का एक सीधा साधा आदमी जिसका जमीन पर घर है और गांव में कुछ दूर पर उसके खेत हैं, या तो उसके खेत हैं या किसी और के खेत हैं जहां वो काम करता है, ऐसे लोग जो विविध भारती सुन रहे हैं उनको वाटर कंजर्वेशन या जल संचय से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, वो क्या कर सकते हैं अपने तई, ये बताइए।
1: बिल्कुल जी, इनफैक्ट थैंक यू सो मच कि किसानों का विषय आपने लिया है, क्योंकि जो मेरे पास इतने मेल्स आ रहे हैं ज्यादातर किसान है, उसमें मैं तो बोलूंगा 100 में से 80 किसान भाई बहन है जिनका मेल आ रहा है, एंड सब पानी से परेशान है
0: जी,
1: क्योंकि उन लोग कह रहे हैं कि पहले हमारे पास कम से कम 10 महीना पानी होता था, आज हमारे पास 8 महीना पानी है, बाकी हम लोग 4 महीना खाली बैठे रहते हैं, हमें समझ भी नहीं आता क्या करें, खर्चा नहीं पूरा होता, इसलिए शहरों में जाके काम करना पड़ रहा है, एंड आजकल के न्यू जनरेशन अवॉइड कर रहे हैं खेती करना क्योंकि ये पानी की कमी है, इसलिए वो हमें ये बोलने, एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा कि आप ऐसा कुछ बताइए हमारे पास 12 महीना पानी हो ताकि हम 12 महीना काम करेंगे, एंड बात सही है क्योंकि अगर हम 150 करोड़ आबादी है हमारे देश का और इनको अगर हमें खाना खिलाना है तो हमारे किसान तो 12 महीना काम करना ही पड़ेगा ना उनको, अगर वो बोलेंगे कि 6 महीना पानी नहीं है, 4 महीना पानी नहीं है, हम काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, एंड थैंक यू सो मच आपने ये टॉपिक लिया
0: जी,
1: एंड और भी बहुत सारे सवाल आए हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट यस, किसानों को पानी ज्यादातर जरूरत पड़ता है उनका खेती के लिए, एंड खेती में पानी उपयुक्त मिले, क्वालिटी का पानी भी होना चाहिए और क्वांटिटी भी होना चाहिए, पानी का गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को माइंड में रखते हुए स्पेशल खेत में जल संचय करने का थोड़ा डिफरेंट विधि है, लेकिन है यही सिस्टम, हमें शोष खड्डा बनाना है, हमें परकुलेशन पिट बनाना है, जल तारा बनाना है, बट उसका साइज ज्यादा बड़ा होता है, फ्री तरीका है, इसमें उनका कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 1 या 2 दिन का मेहनत है। देश भर में आज भी जो खेती हो रहा है हम लोग बोरवेल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर,
0: और इस वजह से वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है।
1: देखिए, एक है जब बारिश हो रही है उस समय हम लोग ऐसी ऐसी चीजें ग्रो करते हैं जैसे चावल है, शुगर केन है, कॉटन है, कपास की खेती बहुत होती है, गेहूं की भी खेती होती है, जब पानी है तब हम लोग ये खेती कर लेते हैं, जब पानी खत्म हो जाता है तो हम लोग सब्जियों पे आ जाते हैं, हरी सब्जियों पे आ जाते हैं, तो इसलिए पहला तो हमें ऐसी चीजों को ग्रो करना है जिसमें पानी की कम से कम जरूरत पड़े, या जब पानी बहुत ज्यादा है, आज भी हमारा 70% पानी बह के समुन्द्र में और नदी में चला जा रहा है
0: जी,
1: तो बारिश के समय जिन सब्जियों में और जिन चीजों में ज्यादा पानी लगता है तो हमें उस समय ग्रो करना है क्योंकि पानी बहुत होता है, जैसे ही पानी कम होने लगता है हमारा पूरा फोकस चला जाता है ग्राउंड वाटर, क्योंकि 6 महीना सोच लीजिए आपने बारिश का पानी खींच लिया, बाकी का 6 महीना हमें अगर काम करना है तो बहुत ज्यादा हमारे किसान जमीन से पानी निकालने लगते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है सब्जियों का लेकिन जमीन का पानी खत्म हो जा रहा है,
0: इसलिए जो 70% पानी चला जा रहा है समुद्र में इसे कैसे बचाया जा सकता है और क्या एक आम आदमी इसे बचा सकता है,
1: बस वही सोच है
0: जी।
1: यहाँ हम जब एक किसान की बात कर रहे हैं या किसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं या किसान को माइंड में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ, खेत का पानी खेत में रहना जरूरी है
0: जी,
1: एक तो हम लोग मेड़ बनाते हैं खेत में ताकि पानी रोक के रख सकें, दूसरा जब खेत में हम बात कर रहे हैं कि हमारा बोरवेल सूख चुका है, बोरवेल में पानी नहीं है तो वापिस डालना भी जरूरी है, ये तो वही बात होगी, जमीन के अंदर एक पानी

0: आप अगर आप मान के चलिए, अक्सर ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा जमा है, हजारों साल लगे हैं पैसा जमा करने में, मे भी आपके दादाजी पर दादाजी ने पैसा जमा किया था और अभी हम सिर्फ निकाल रहे हैं तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, और वही हुआ है।
1: पानी के साथ भी ऐसे ही है,
0: बस तो पानी खत्म हो चुका है, तो अब उसको हम दोबारा वापस डालना जरूरी है। मैं सबको यही, ये जो जल संचय और जन भागीदारी का ही प्रेरणा है कि जिसमें हमारी कोशिश है कि हर बोरवेल के बगल में एक माइक्रो पॉन्ड कहते हैं इसको, जल कुंड कहते हैं हम लोग, जल तारा ही कहते हैं, जिसमें वो ज्यादा गहरा नहीं होता है, 15 फुट बाय 15 फुट और 2.5 फुट गहरा, एक अच्छा। छोटा सा जल कुंड बनाना है ताकि बारिश का पानी आपके बोरवेल का जो पाइप है, बोरिंग का जो पाइप है, उसके बगल में जमा रहे। एक आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बोलूंगा, और जो भी हमें सुन रहे हैं याद रखिएगा कि जब भी हम बोरवेल खोदते हैं, 6 इंच का पाइप अगर जमीन में जा रहा है तो 8 इंच की खुदाई होती है। जो मशीन होता है ना उसका मुंह बड़ा होता है, तो नीचे जो बड़े बड़े पत्थर है वो तो ग्राइंड हो चुका है, वो तो पाउडर बन चुका है। अब अगर आप बोरवेल के आसपास पानी इकट्ठा करेंगे बारिश का, तो धीरे धीरे नॉन स्टॉप जमीन में पानी जाता रहेगा,
1: क्योंकि वो पिट जो है वो बड़ा बना है।
0: बड़ा बना हुआ है। बोरवेल क्या होता है, 200, 300, 400, 1000 फीट नीचे से पानी निकाल रहा है, नीचे पत्थर है, पत्थरों के बीच में गैप है, उसको एक्वाफर कहते हैं, उसमें से हम पानी निकाल रहे हैं। जिस गैप से हमने पानी निकाला है, और बोरवेल का पाइप मतलब एक स्ट्रॉ मान के चलिए, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, स्ट्रॉ से पानी निकाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसी स्ट्रॉ को यूज करके अगर हम पानी वापस डाल दें तो हमारे पास पानी दोबारा भर जाएगा कम से कम लागत में। और कम से कम लागत के आपको सिर्फ श्रमदान करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है।
1: अच्छा, कोई किसान या कोई गांव वाला अपने घर में, खेत में या अपने आंगन में जल संचय की कोई विधा बनाना चाहता है, कोई सिस्टम बनाना चाहता है, उसका साइज क्या होना चाहिए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा?
0: बिल्कुल, बहुत बहुत अहम सवाल है ये सर। सबसे पहला जरूरी है, और जो भी हमें सुन रहे हैं याद रखिएगा कि पानी को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है
1: जी।
0: अगर एक पानी को आप संचय कर रहे हैं कि खेत में इस्तेमाल करना है, और खेत का पानी है, तो याद रखिएगा खेत में हमने पेस्टिसाइड डाला हुआ है, यूरिया डाला हुआ है, फर्टिलाइजर डाला हुआ है, टॉप सॉइल का पानी है, तो वो पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये डिफ्रेंशिएशन हम मेंटेन रखें। जिस बोरवेल में आपने खेत का पानी डाला है, तो 1 किलोमीटर दूर भी अगर आप उस पानी को निकालेंगे तो वो जहरीला हो सकता है, आपके पीने लायक नहीं है। इसलिए घर में जो आप पानी जमा कर रहे हैं वो आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एकदम साफ होना जरूरी है। छत का पानी आप उसमें डाइवर्ट करवाइए, छत का पानी साफ होता है, पहले बारिश का पानी बह जाने दीजिए, फिर छत एकदम साफ हो जाता है, उस पानी को आप बोरवेल में डायरेक्टली इंजेक्ट कीजिए। एक दो टेक्निक है, डायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज, इनडायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज। तो छत का पानी बहुत साफ होता है, उसको आप बोरवेल के अंदर डालिए, साफ रहेगा, आप पी सकते हैं। खेत का पानी खेत में इस्तेमाल करेंगे, उसको पीने में नहीं आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। एंड जल संचय उतना कीजिए जितनी आपकी जरूरत। बहुत इजी फॉर्मूला है, किसी भी शहर में है, किसी भी गांव में है, कितना बारिश हो रहा है, कितने समय के लिए बारिश हो रहा है, आपको बता देगा कि कितना आपके पास छत है, उस हिसाब से कितना पानी आप कैच कर सकते हैं, उस हिसाब से आप उसको सेव कर सकते हैं। चाहे आप एक टंकी बना के सेव कीजिए, या परमानेंटली भूजल ग्राउंड वाटर में उसको जमीन में समाने दीजिए, जितना सोख हो जाएगा आप, जैसे कि मैं कह रहा हूं उसमें इवेपोरेशन नहीं है, निकाल के इस्तेमाल करते रहिए, 10 साल बाद भी इस्तेमाल करेंगे वो जमीन के अंदर मिलेगा। बाकी अगर आप खेत है, आपको पानी ज्यादा चाहिए, तो आपको सिस्टम ज्यादा बनाना पड़ेगा। साइंस ये कहता है हर एकड़ में एक जल संचय होना चाहिए, हर एकड़ में एक जल तारा इंस्टॉल होना चाहिए, हर एकड़ में अगर आपके पास बोरवेल है, देखा जाता है हर एकड़ में एक बोरवेल मिल जाता है आजकल, तो बोरवेल इतना ज्यादा लोगों ने बना दिया है, बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे देश में। एंड बोरवेल भी 4 वैरायटी के होते हैं, ये लोग आइडेंटिफाई अक्सर भूल जाते हैं ये चीज। एक होता है फेल्ड बोरवेल, हमने एक जगह ड्रिल मशीन से 300, 400, 500 फीट खड्डा किया और पानी मिला ही नहीं, हम तो भूल ही जाते हैं कि ये भी तो बोरवेल है,
1: और उसके बाद उसको छोड़ दिया है।
0: छोड़ दिया, आपने 1 लाख रुपए खर्चा कर दिया एक खड्डा बनाने में और उसको छोड़ दिया। इसको आप जलतारा बना दीजिए, इसके ऊपर पानी कलेक्ट कीजिए, पानी जाने लगेगा, बहुत सिंपल। सेकेंड, डेड बोरवेल एक होता है,
1: जहां का पानी सूख चुका है,
0: जो पहले आता था, पिछले 5 साल से वहां पानी ही नहीं आया है, मतलब कहीं ना कहीं पानी आता था, अभी नहीं आ रहा है, मतलब पानी डालेंगे तो जाएगा ही जाएगा।
1: यस,
0: तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, डेड बोरवेल को अलाइव कर देना है। मुर्दा को हम लोग जान डाल सकते हैं,
1: जी जी,
0: वहां पे भी आप जलतारा लगा दीजिए। फिर मैं आ जाता हूँ ड्राई बोरवेल, मतलब पिछले साल यहाँ पे पानी था, आज पानी नहीं है।
1: इसका क्या मतलब है?
0: मतलब

0: ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, ज्यादा
1: वो
0: एक्सट्रैक्शन
1: तो
0: हो गया।
1: डेड बोरवेल में भी तो ग्राउंड टेबल वाटर नीचे,
0: डेड बोरवेल आना बंद ही हो गया है 5 सालों से। 5 साल का रिकॉर्ड बताता है पानी ही नहीं है, बट ये है ड्राई बोरवेल जो पिछले साल पानी था आज नहीं है।
1: ओके,
0: फ्रेश फ्रेश अभी अभी मरा है ये।
1: तो इसको जिंदा जल्दी किया,
0: तुरंत इस प्रायोरिटी है
1: जी।
0: एंड चौथा कैरेक्टर मैं बोलता हूँ पार्शियली ड्राई, मतलब अक्सर लोग फोन करते हैं भाई साहब मेरा 3 घंटा पानी देता था अभी सिर्फ 15 मिनट पानी दे रहा है। पिछले साल इसी समय 2 घंटा पानी देता था आज सिर्फ आधा घंटा पानी दे रहा है, तो ये पार्शियली ड्राई हो चुका है। या पिछले महीने तक पानी देता था अभी पानी नहीं दे रहा है। मैंने मेरे पास अभी जैसे किसान भाइयों का जो मेल आया है, जैसे पिछले हफ्ते आपने मेरा ये इंटरव्यू लोगों को दिखाया, ज्यादातर यही बोल रहे थे कि हमारा पिछले साल जून महीने में पानी था, इस बार जून महीने में पानी नहीं है। पिछले साल मई महीने में पानी था, अभी भी बारिश नहीं आई है तो हमारा पानी नहीं है। तो मतलब एकदम फ्रेश फ्रेश उनको साल भर पानी मिल रहा है, बट कई ऐसे बोरवेल हैं जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक सब सूखने लग जाते हैं। उनको भी हम लोग ये 4 कैटेगरी को माइंड में रखते हुए जल तारा बना सकते हैं, 15 फीट बाय 15 फीट, 2.5 फीट गहरा खड्डा, बस इतना
1: तो
0: ही।
1: कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
0: बस श्रमदान हो रहा है। एंड थैंक यू NSS, थैंक यू NCC, ग्रीन क्लब
1: जी,
0: जो हमारे कॉलेज के बच्चे जाके ये बना रहे हैं। पालघर में हमने 750 से ज्यादा इंस्टॉलेशन किए हैं पिछले 1 सालों में,
1: और इससे बड़ा भारी बदलाव आया होगा।
0: और सब अलाइव हो गए, सारे मरे हुए बोरवेल जिंदा हो गए, और क्या, पानी भरा हुआ, जो खुश हो गए हैं।
1: अच्छा, जो देश के सुदूर इलाकों के स्कूल कॉलेज ऑफिसेज मोहल्ले इस मामले में क्या कर सकते हैं, खासतौर पर अब ये हो रहा है कि इंडिपेंडेंट हाउसेज की जगह पर अपार्टमेंट आ गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: और अपार्टमेंट में ये होता है कि एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मैं क्यों करूं वो करे, तो सब मिलकर करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो ये कितना आसान है कि एक बिल्डिंग के लोग भी एक साथ आ जाएं और इस काम में जुट जाएं?
0: देखिए, ये 2 अलग अलग पहलू हैं, मैं बताना चाहूंगा। मैंने जो कुछ 2.5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दिया है जल संचय के ऊपर, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस जुड़ गए इसलिए हो पाया। जब भी हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, एक एक जल तारा इंस्टॉल करते हैं, स्कूल में 500,000 बच्चे होते हैं, वो सीख जाते हैं ये चीज, और वो घर जाके माता पिताओं को बताते हैं कि हमने ये सीखा है, हमारे स्कूल में दिखाया गया है, और हमने ये बनाया है, हम अपने घर में भी बनाएंगे, और जिसमें कोई खर्चा नहीं है। और सबको मैं यही बोल रहा हूं, आप ज्यादा काम मत कीजिए, 4 फुट बाय 4 फुट और 3 फुट खड्डा बनाइए और छत का पानी उसमें डाइवर्ट कर दीजिए, हमारा काम शुरू हो गया जल संचय का। तो ये जहां यूथ पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान आज सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि हमारे देश का यूथ इसमें जुड़ चुका है। तो वही मेरी कोशिश कर रहा हूं स्वच्छ भारत अभियान का इंस्पिरेशन लेके कि हम लोग इसमें यूथ को जोड़ें। तो स्कूल कॉलेज NSS NCC ग्रीन क्लब सबको इसमें जोड़ने की कोशिश है, जिसने बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूप ले लिया है बिकॉज इन लोग जुड़ चुके हैं। बाकी शहरों में जल संचय करना आसान है क्योंकि क्वालिटी ऑफ वाटर मेंटेन करना आसान है। खेतों में हमारे पास छत नहीं होते। अगर मैं मुंबई की बात करूं, अक्सर लोग कहते हैं कॉन्क्रीटाइजेशन, हर शहर में इतना कॉन्क्रीट बन चुका है, इतने छत बन चुके हैं कि छत का पानी बहने ना दें। छत का पानी एक बारिश के बाद एकदम साफ पानी आता है, वो पीने लायक पानी है। हम उस पानी को तुरंत हर घर जल संचय जो अभियान चल रहा है, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स एंड वेयर इट फॉल्स, छत का पानी है, मेरा छत मेरा पानी, मेरा स्कूल मेरा पानी है, वही मैं सबको बोल रहा हूँ। और गवर्नमेंट भी यही बोल रही है कि आप अपने हिस्से का, आपके पास जो पानी आ रहा है आप रोक के रखिए, आपका छत नीचे पानी जाएगा तुरंत। इसमें खर्चा कम है, जैसे कि मैंने कहा मेरा कोई भी प्रोग्राम 10,000 से ज्यादा खर्चा नहीं होता है, बड़े से बड़ा। और बोरवेल तो हर घर में है आज के जमाने में, ट्यूबवेल बोरवेल हैंडपंप भी उसी कैटेगरी में आता है। कुएं, कुएं को लोग अक्सर बुझा देते हैं, कुएं पत्थर डाल के बंद कर देते हैं, कुओं को आप लोग बिल्कुल बंद मत कीजिए। छत का पानी एक बारिश के बाद जो दूसरा पानी आ रहा है उसको कुएं में बिल्कुल, बस पाइप को तो आपको बस जो गटर में बाहर जा रहा था उसको आपने इधर कर दिया पानी,
1: डाइवर्ट करना। आपने कुओं की बात की तो मुझे एक बहुत जरूरी चीज याद आ गई, और वो है कि एक जमाने में तमाम छोटे शहर और गांव में कुएं, बावड़ियां, छोटे छोटे तालाब और इस तरह की वाटर बॉडीज हुआ करती थी, जो अब खत्म होती चली जा रही है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, बावड़ियों को बुझा दिया गया, सुखा दिया गया, पत्थर भर दिए गए, कुएं खत्म हो गए, झीलें तालाब, क्या महत्व है इनका? पुराने जमाने से लोगों ने इस बात को समझा था, तभी तो इन्हें बनाया था।

0: मैं आपको क्या बताऊं, इसका जवाब दूंगा शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कहीं हम सबकी गलती है
1: जी।
0: एंड मैं कुछ इस बारे में जरूर बताना चाहूंगा, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं किसी को उंगली नहीं बता रहा हूं किसी की गलती। पहले हम लोग तालाबों से पानी लेते थे, तालाब छोटे पड़ने लगे, आबादी बढ़ गई, तो हम लोग कुआं खोदना शुरू किए। कुआं छोटा पड़ने लग गया, आबादी बढ़ गई, हम लोग बोरवेल पे आ गए। बोरवेल कम पड़ने लग गया, म्युनिसिपैलिटी बोली कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को हेल्प करता हूं, मैं तुम्हारे घर में पानी पहुंचा दूंगा। अब वो भी कम पड़ने लग गया है, क्योंकि हम लोग बारिश के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं, और जिस हिसाब से ये अलग अलग एल नीनो और अलग अलग सिचुएशन आ रहे हैं, जो तालाबें थी वो नेग्लेक्ट होने लग गई है, जो कुएं थे वो ऑब्सोलीट हो चुका है। आज मैं किसी को भी बोलूं कि चलो कुएं का पानी पिलाऊं, बोलेगा भैया मरना क्यों चाहते हो, मेरे हाथ में एक प्लास्टिक का बोतल दे दिया जाता है, भैया इसी से पी लो। आप बताइए, मैं मुंबई में हूं, कोई कुएं का पानी पीने लायक है? कोई नहीं है।
1: कुएं कहां है?
0: अब जो कुएं है प्राइवेट है कुएं
1: जी।
0: अब जिस चीज का कोई उपयोग ही नहीं है, हम उसको रख के क्या करेंगे? ये तो वही बात हो गई कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, विंटेज कार पड़ी हुई है, चलती भी नहीं है, उसको क्या करेंगे? उसको कबाड़ में डालना पड़ेगा ना
1: जी।
0: तो कुएं का मतलब हो गया, ये तो कबाड़ है हमारे लिए, जिसका उपयोग नहीं है। हम 10 फीट बाय 10 फीट का खड्डा है, पड़ा हुआ है, कोई गिर के मर सकता है, उसका पानी खराब हो गया, कुएं का मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा है 10 सालों से, तो लोगों ने उसको बंद कर दिया, उसके ऊपर पार्किंग लॉट बना दिया, क्योंकि पार्किंग लॉट सोसाइटी में रहेगा तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं सोसाइटी को, तो कुआं रख के फायदा क्या है? जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि कुएं का फायदा है, जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं बोलेगी, या कोई बुद्धिजीवी नहीं बोलेगा, या हम आप इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो लोगों को लगेगा कुआं बेकार है। वही हुआ तालाब का सिचुएशन। मैं बंगाल गया था अभी, मैं बेंगलुरु गया था, चेन्नई गया था, जो सिटी ऑफ लेक्स बेंगलोर को बोला जाता था, अब लेक्स तो नजर ही नहीं आता है मुझे। बंगाल में आपको पता है मेरे दादाजी की शादी दादी के साथ क्यों हुआ था? क्योंकि उनके पास एक तालाब था।
1: ओहो,
0: मेरी दादी की जो मम्मी थी उनसे मिली थी, उन्होंने कहा था उस समय पहले जमाने में जिस लड़के के पास तालाब है मतलब वो क्वालिफाइड है। तुम डॉक्टर इंजीनियर बाद में हो, तुम्हारे पास तालाब है मतलब पानी है, तुम्हारे पास तालाब है मतलब मच्छी है, तुम जिंदा रहोगे,
1: क्या बात,
0: बाकी पढ़ाई लिखाई अपने जगह। तो वो कल्चर कहां गया है? तालाब इतना महत्व होता था। आज के जमाने में लोग गाड़ी खरीदते हैं अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, बैंक बैलेंस दिखाते थे, उस समय बैंक बैलेंस और एफडी यही होता था,
1: तालाब होता था।
0: तालाब है भाई इसके आदमी के पास।
1: हमारे शहरों के तालाब, कुएं, हमारी झीलें, बावड़ियां, ये धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई हैं
0: बहुत ज्यादा। और एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, ये भी आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लेक्स, ब्यूटिफिकेशन ऑफ नदी, नदी बचाने के लिए नदी के किनारे जो घाट बनाने से नदी नहीं बचेगा। नदी होता है नदी के पानी से, नदी होता है नदी के अंदर प्लास्टिक नहीं जाना चाहिए, वो नदी होता है जिसके अंदर लाइफ हो, जिसके अंदर पानी पीने लायक हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पियो पानी, बट कम से कम अगर इंसान पी सकता है तो बाकी जीव जंतु भी उसमें रह सकते हैं। नदियों में जो लाइफ आसपास होता था, नदियों के पानी में जो मछलियां होती थी, अलग अलग तरीके के जानवर होते थे, वो सब मरने लग गए क्योंकि नदी में ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो गया है
1: जी।
0: तो बहुत जरूरी है, जब मैं नदी की बात कर रहा हूं, तालाबों की बात कर रहा हूं, दीघी की बात कर रहा हूं, बड़े से बड़ा लेक हो, हर जगह क्वालिटी ऑफ वाटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि मैं अक्सर मैंने देखा है अलग अलग म्युनिसिपैलिटी के लोग, अलग अलग गवर्नमेंट के लोग, अलग अलग एनजीओ लोग, तालाब तो गंदा पड़ा हुआ है, तालाब में मतलब एक मछली नहीं जिंदा रह सकता है, लेकिन चारों तरफ बेंच लगा दिया, लाइट लगा दिया और वॉकिंग स्ट्रिप बना दिया है। वो वाटर कंजर्वेशन नहीं होता, वो लेक रिजुनोवेशन नहीं होता है
1: जी। जी बिल्कुल।
0: जल शक्ति मंत्रालय ने जो रूल बनाया है एकदम परफेक्ट बनाया है, उसको पढ़िए, उसका पहला पॉइंट ही है क्वालिटी ऑफ वाटर। उस चीज को छोड़ के बाकी सब चीज किया जा रहा है, जो रूल्स बनाए जाते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, जल शक्ति मंत्रालय में एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, हमारे देश के सारे धुरंधर वहीं बैठे हुए हैं। सच बताओ, मुझे मौका मिला उन लोगों के साथ मिलने का, बात करने का, काम करने का, वो बहुत अच्छे सोच है उनका, वो सोच लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सोचा आपके माध्यम से ये बात लोगों को बताऊं।
1: बिल्कुल।
0: कि आप, आपके पास अगर तालाब है, तालाब से आप बहुत कुछ इनकम कर सकते हैं। मैनग्रोव की कोई इंपॉर्टेंस नहीं करता है, मैनग्रोव से कितना केकड़ा बनता है, कितने टाइप के खाना आता है। आज भी करोड़ों लोग दुनिया में मैनग्रोव से चीजें ऐसी आती हैं जिससे लोग खाते हैं, खा के जिंदा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनग्रोव कंजर्व करना जरूरी है क्योंकि वो भी एक वाटर बॉडी में से आता है, उसी तरह हर तालाब को कंजर्व करना जरूरी है ताकि उसमें से मछलियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं खाने की चीजें उसमें से मिलती है। वाटर बेस्ड बहुत सारे फार्मिंग टेक्निक्स आ गए आजकल, तो

0: फ्लोटिंग फार्म भी शुरू हो गया है और तालाबों का रक्षा करना हर किसान के लिए तो पहला धर्म होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने कैंपेन भी लाया है, वो पॉली पॉन्ड बना के देते हैं गवर्नमेंट के तरफ से। हर किसान को बोला गया है कि आपके पास अगर 5 एकड़ जमीन है उसमें से आधा एकड़ में आप पॉली पॉन्ड बनाइए, बारिश का पानी उसमें संचय कीजिए, उसके अंदर जमा कीजिए। और न्यू टेक्नोलॉजी है आजकल, टेक्निक्स हैं, लोग उसका बहुत फायदा भी उठा रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट करोड़ों पॉली पॉन्ड बनाए हैं देश ने।
1: जी जी
0: मैं तो बोलूंगा कि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, एक इंसानों का जो हिस्ट्री है, इतना बड़ा जल संरक्षण का अभियान कभी किसी ने न किया न कभी होने वाला है जो इस समय हमारे भारत देश में चल रहा है।
1: जी, जल संरक्षण से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब मुझे लगता है कि आपके काम के कुछ और दिलचस्प हिस्सों की बात करें। एक आपके काम का हिस्सा है जो आम से जुड़ा हुआ है, ये क्या मामला है भाई? आम आदमी से आम तक?
0: बिल्कुल, आम आम नहीं, खास है।
1: अच्छा, आम के बीजों का संरक्षण, वो क्या मामला है?
0: जी, ये किसानों का लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है कि आज किसान इतना पानी के ऊपर निर्भर करता है, कभी ज्यादा पानी आ गया हमारा खेत बह गया, कम पानी आ गया तो खेत जल गया हम ये बोलते हैं। इसलिए पैडी बेस्ड कल्टीवेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो कहीं पे गलती कर रहे हैं। एक फार्मर पूरा निर्भर हो जाता है कि हम चावल का खेती करेंगे या ऐसा खेती करेंगे जो सिर्फ टॉप सॉइल से आता है और जिसमें इतना इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, यूरिया, फर्टिलाइजर क्या क्या डालना पड़ता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि पानी आए या ना आए, बारिश हो या ना हो, हमारा पेड़ कभी मरता नहीं है। एंड टॉप सॉइल, ऊपर का जो मट्टी है 1-1.5 फुट का, इतना मैं बोलूंगा इतना डेंजरस हो चुका है, जहरीला हो चुका है कि ऐसा कुछ खेती किया जाए जो जमीन के सब सॉइल से आए। तो फल का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो जड़ उसका नीचे तक जाता है, नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, न्यूट्रिशंस आ रहे हैं और फल, रोटी खाने से अच्छा है कि आप फल खाइए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को लेकर बहुत सीरियस हैं एंड बातचीत चल रही थी, जब बात हो रही थी कि हम लोग फल मिशन फ्रूट्स क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मन की बात में लोगों को ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप फल खाइए ज्यादा।

0: जी अब चावल क्यों खाते रहते हैं? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में, हम लोगों ने हमारा खेत जितना जंगल था काट दिया है, जंगल काट काट के हम लोगों ने सीधा जमीन कर दिया और उसमें सिर्फ चावल बो रहे हैं, शुगर केन बो रहे हैं, जितने फल के पेड़ काट दिए हैं, जंगल खत्म कर दिया। अगर आप किसी को देखिए, जब खेती खत्म हो जाता है सब पीला पीला मिट्टी दिखता है, काला मिट्टी तो दिखता भी नहीं है, इट इज ऑल बैरन लैंड। इसको बचाने के लिए मेड़ पे पेड़ प्रोग्राम आया है गवर्नमेंट का।
1: जी जी।
0: गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर आपके पास जितना भी जमीन है 20% जमीन पे फल का पेड़ लगाए।
1: जी।
0: और जब मैंने किसानों से पूछा फल का पेड़ क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो किसान बोले हमें तो कोई फल का पेड़ देता ही नहीं है साहब, हमें तो इमली का पेड़ दे रहे हैं फल के नाम पे, सिर्फ आंवला का पेड़ दे रहे हैं, हमें तो आम दीजिए तो मजा आए। अच्छा, तब मुझे समझ में आया आम आम नहीं है, खास है।
1: क्या बात।
0: किसी भी किसान को बोलिए आम का पेड़, बोले हाँ तुरंत, कभी नहीं मना करेगा।
1: जी जी।
0: आम हम लोग खुद भी खा लेते हैं इतना ज्यादा कि एक्सपोर्ट ही नहीं करते।
1: जी जी बिल्कुल।
0: इतना बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, एंड आम एवरग्रीन पेड़ है, पतझड़ नहीं होता है आम में।
1: बिल्कुल।
0: और मैं लोगों को बोलता हूँ आम का पेड़ एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें हर टाइप का जंगली जानवर रहता है।
1: वाह वाह।
0: एक चिड़ियों का घोंसला भी दिखेगा, उसमें लेपर्ड भी बैठा होगा, उसमें शेर भी बैठा होगा, उसमें एक बंदर भी बैठा होगा और सांप भी रह रहा होगा। तो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है।
1: इसलिए आपने ये मुहिम शुरू की।
0: इसलिए मुहिम, मेरी कोशिश ये है कि फार्मर्स को आम का पेड़ दिया जाए, और सिर्फ आम का पेड़ तो इसे एक बहाना है। जब हम आम का पेड़ देते हैं तो उसके साथ 15 अलग अलग वैरायटी के पेड़ भी दिए जाते हैं,
1: फलों के,
0: फल के हैं, पॉलिनेशन के लिए इमली, वहाँ नीम का भी पेड़ दिया जाता है, अलग अलग वैरायटी होते हैं ताकि आम जोर बड़ा हो सके और नेचुरल तरीके से हो सके।
1: क्या बात है,
0: ये है इसका टेक्निक।
1: अच्छा, अब चलते चलते मैं चाहता हूँ कि जो आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो जरूर दीजिए, ताकि ये तमाम बातें सुनने के बाद जो लोग प्रेरित हों, जो लोग इस पूरी मुहिम से जुड़ना चाहें या किसी और को जुड़ना चाहें, वो आपको किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेल कीजिए waterheroofindia@gmail.com पे।
1: जी।
0: एंड पिछले बार की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लिखिए कि आपका समस्या पूरे डिटेल में। सिर्फ हेलो लिख के भेजेंगे तो फिर बहुत ज्यादा समय जाता है। आपको जल संचय करना है तो कितना जमीन है, किस शहर से बोल रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है, वो डिटेल में लिखिए।
1: जमीन का क्या साइज है?
0: बिल्कुल।
1: जमीन का क्या मिजाज है?
0: छत का क्या साइज, अगर आपको घर में करना है, पानी की कमी है तो क्यों है, कितना है, थोड़ा सा डिटेल रहेगा तो हम और बेटर तरीके से समझा पाएंगे।
1: तो शुभजीत जी, आप सभी की ईमेल्स का इंतजार कर रहे हैं। आप ईमेल करेंगे तो इनसे जुड़ सकते हैं और उसके बाद आप अपने इलाके में पानी की समस्या का निदान कर सकते हैं। शुभजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार फिर गाने की फरमाइश करनी होगी, फिर आपसे इजाजत लेंगे।
0: बिल्कुल जी। एंड इस बार गाना आप डिसाइड कीजिए।
1: देखिए, आप पानी पर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि माचिस फिल्म का पानी पानी रे गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच।
1: बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। आप भारत के वाटर हीरो हैं, हमारे भी हीरो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से लोगों को प्रेरित करते रहिए और सार्थक काम करते रहिए।
0: थैंक यू सो मच। धन्यवाद।

ये था आज का मैटिनी शो। आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग हैं और इस कार्यक्रम को जुबैर खान ने प्रस्तुत किया। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत और हाँ, वाटर प्रिजर्वेशन की दिशा में हम सबको काम आगे बढ़ाना ही है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें

0: दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमबी ओमोरफ्रीम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

अनजान के बोल आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में डॉन फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। और आपको ये बता दें कि आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकते हैं फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

तेरे सदके गिर मत जाना, जलना बच के मिस्टर समझे क्या, उस मिस्टर समझे क्या।

0: सीता और गीता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आवाजें आशा भोसले मन्ना डे की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
3: कौन लाया, कौन लाया।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा,
1: अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा।
0: हुस्न हमेशा रुका रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है।

0: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और आवाजें किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

हसरत जयपुरी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे से आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम यादों की महफिल, और अभी आपने सुना हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए ये गीत।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राहुल देव बर्मन का संगीत गोलमाल फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। घर फिल्म से ये गीत सुनिए।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हम दोनों फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। ये हमारे सवाल का सही जवाब, और हमने आपसे ये भी पूछा था कि कौन सा ऐसा दुख भरा गीत है जो आपको बहुत पसंद है। भले ही आप निराश हों, दुखी हों या ना हों, कभी कभी हमें ये दुख भरे गीत भी अच्छे लगते हैं। तो हमारे साथियों ने भेज दिया है, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंसू भरी है जीवन की राहें, और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि फिल्म दूर गगन की छाओं में के गीत के बोल हैं, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिलवाले फिल्म में मुझे एक गीत बहुत पसंद है, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक और साथी कह रहे हैं कि जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, एक बेहतरीन गीत है, तो इनकी पसंद ये गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सरल शब्दों में कहें तो सकारात्मकता जीवन को आगे बढ़ाती है और नकारात्मकता इंसान को पीछे की ओर खींचती है। सकारात्मक सोच में हमेशा आशावादी रवैया, समाधान पर ध्यान और दूसरों की मदद करने पर होता है, जबकि नकारात्मक सोच में निराशावादी रवैया, शिकायत करने और ईर्ष्या की भावना रखना और हिम्मत हारना ये होता है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक साथी ने कहा कि निगेटिविटी, निराशा से हरदम दूर रहना चाहिए, खुद को पॉजिटिव बनाओ, कुछ भी अपने हाथ में नहीं, समय संजोग की बात है, खुश रहना चाहिए, जो पल खुशियां दे उसे याद रखना चाहिए और उस पल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। गीत वो कह रहे हैं कि जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। हमारे एक और साथी हैं कह रहे हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, इस तरह का रवैया हमें रखना चाहिए। एक और साथी कहते हैं कि आज गद्यांश में गम, आंसू, यादें, निराशा जैसे नकारात्मक विचारों से मन को सकारात्मकता की ओर कैसे ले जाया जाए, यही बात कही गई है। गम, निराशा, उदासी और अकेलापन जीवन के अनचाहे मेहमान जरूर हैं, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। निराशा के क्षणों में कृतज्ञता मन के अंधकार को मिटाने वाला सबसे अचूक दीपक है। सकारात्मकता एक दृष्टिकोण है जो आपके भीतर सोई हुई रचनात्मकता को जगा दे और अपनी जीवन ऊर्जा को पुनः जागृत कर देता है। तो बहुत सी बातें हमारे साथी भेज रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि नकारात्मकता या निराशा की भावना अक्सर आ सकती है हमारे मन में। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से आ सकती हैं, कभी कुछ परेशानियां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती हैं जो इस तरह की नकारात्मकता हमारे मन में ला देती हैं। कभी कभी कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से भी इस तरह का भाव हम हमेशा महसूस करते रहते हैं। तो इसलिए भी इन सारी चीजों का भी ध्यान देना जरूरी है। जरूरी नहीं कि अगर कभी कभी निराशा या ऐसा नकारात्मकता लगे तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा अगर ऐसा लगता रहे एक लंबे समय तक तो इसके लिए पूरी जांच पड़ताल करना भी बहुत जरूरी है। और ये भी हमें जांचना जरूरी है कि क्या आपको पता है कि ये जो गीत हम सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है और कौन है इसके संगीतकार। तो बताइए गीत सुनकर।

माय लव फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, दान सिंह का संगीत। तो संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथियों ने तो ये भी बताया कि शशि कपूर पर फिल्माया गया है ये गीत। हमारी एक और साथी कहती है कि मैं बहुत खुश मिजाज नेचर की हूँ, हर समय हंसती बोलती रहती हूँ, पर गीत मुझे सभी दुखी वाले ही पसंद हैं। भाई ये बात तो एक अलग चीज है कि भाई दुखी गीत पसंद है लेकिन दुखी रहना पसंद नहीं है, तो फिर चलाया जा सकता है। वैसे हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई मन की बात तो सबसे कहना मुश्किल होता है, और हमारे कुछ साथी कह रहे हैं दुख के बारे में बातें जब कर रहे हैं तो अलग अलग बातें बता रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई दुखी होना तो सभी के लिए स्वाभाविक है, सब हमेशा खुश तो नहीं रह सकते, लेकिन दुखी ही बने रहना ये एक प्रवृत्ति है जिसे हम बदल सकते हैं। और हमारे एक और साथी हैं जो बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन से गीत पसंद है। वैसे एक साथी ने कहा कि भाई आज की भारत में सभी गाने बहुत दुख वाले हो सकते हैं, पर कभी कभी सैड सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं। जीवन सुख दुख का मेला है आज के शब्द उन्होंने चुने हैं, और कहा है कि भूली हुई यादों हमें इतना न सताओ, कोई हमदम न रहा वो तेरे प्यार का गम, ये भी इनकी लिस्ट में शामिल गीत था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, और मंजिलें अपनी जगह रास्ते अपनी जगह, ये गीत इन्हें पसंद है। तो जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, इस गीत के बोल को अगर हम ध्यान से सुने तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमेशा क्या किसी ऐसे व्यक्ति से हम मिलते हैं जिससे मिलने के बाद हम उदास हो जाते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या वो हमें बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं हमारी, या किस तरह से हमारे साथ उनका व्यवहार होता है जिसकी वजह से हम इस तरह से उदास हो जाते हैं, या उनकी उदास प्रवृत्ति ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से उदास होते हैं, तो इस बात पर भी गौर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग मित्रों की तरह मिलते हैं लेकिन बाद में ऐसा होता है कि उन्हें आलोचना करने की इतना आदत होती है कि वो जब आलोचना करते रहते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि सामने वाले को

दुख दे रहे हैं और हम उनकी बातें, उनके विचार अपने मन में ले आते हैं और दुखी रहने लगते हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि उन्हें बहुत गीत पसंद है, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। और हमारे एक और साथी कौन रोता है किसी की बात पर, इस गीत के बारे में उन्होंने गीत को ही लिख भेजा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी खुद पर कभी हालात पे रोना आया, और सही कहा है गीतकार ने कि कभी कभी अपनी ही नादानियां, बेवकूफियां, अपनी गलतियां और किसी के प्रति कुछ जरूरत से ज्यादा लगाव पर उनके व्यवहार से मन आहत होता है। तो ये गाना बहुत याद आता है कि कौन रोता है किसी और के आगे, उन्होंने लिखा। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गीत के अथाह सागर में दुख भरे गीत एक तो नहीं है, फिर भी प्रिय गीतों में से अपनों में मैं बेगाना बेगाना और चंचल मन तेरी चतुराई कुछ काम नाई, ये प्रमुख।

हैं, हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं हम दोनों फिल्म का गीत पसंद है, और साथी हैं वो कह रहे हैं कि फिर वही शाम वही गम, शामे गम की कसम, चल दिया कारवां, ये गीत इन्हें पसंद है। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार जब नकारात्मकता या दुख हावी होने लगता है तो इस तरह के गीत और भी ज्यादा निराश कर देते हैं, तब कुछ सकारात्मकता से भरे मन को सुकून देने वाले गीत उस स्थिति से निकलने में मदद करते हैं। तो एक ऐसा ही गीत क्यों ना आपको सुनवा दिया जाए, क्योंकि भाई आपको दुखी करना तो हमारा इरादा नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आपको दुख होता है और मन निराश होता है। क्या कभी ऐसा लगता है, बहुत से साथी कहते हैं कि दूसरों से ज्यादा लगाव रखने की वजह से हमारा मन कई बार दुखी होता है, क्या सच में ऐसा होता है कि दूसरों से ज्यादा लगाव रखना या दूसरों से ज्यादा उम्मीदें करना, ऐसी उम्मीदें जो हमारी उम्मीदें हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं। तो जरा सोचिए और इस बारे में बताइए। तब तक हम आपको गाना सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला, और इसके बारे में आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है और आवाज किसकी है।

0: चित्रलेखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हालांकि जो चीजें नहीं पूछी थी उसका भी सही जवाब दिया है। और इस बात से खुशी तो हुई ही जाती है कि हमने जो पूछा, आप कितनी अच्छी तरह से अपनी जानकारियां हमसे बांटते हैं और साथ ही अपने जीवन की बातें भी हमसे साझा करते हैं। हमारे साथी ने कहा कि आज की भारत में जीवन की सच्चाई को दर्शाती है, जीवन की राह बहुत कठिन है, खुशी कम, दर्द बेशुमार है, दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है कि आंसू बहाने का समय नहीं, कोई भी कदम उठा, रास्ता बना, कोई साथ चले न चले, कहीं तो मंजिल मिलेगी, जैसे नदियां कल कल बहती रास्ता बना लेती हैं। गीत उन्होंने बताया है, किसी राह पर किसी मोड़ पर, ये गाना उन्होंने अपनी पसंद का इसमें शामिल किया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब जिंदगी की जमीन बंजर और निराशा से भरी लगने लगती है तो ऐसा महसूस होना बहुत स्वाभाविक है कि तकलीफों का यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन रात चाहे कितनी भी घनी और लंबी क्यों ना हो, वो सुबह के सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। तो इसी तरह की सकारात्मकता जब हम अपने अंदर रखते हैं तो वो सकारात्मक विचार ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गम और आंसू की बातें और गाने, इंसान अपने मनोभावों को कभी व्यक्त कर पाता है तो कभी नहीं, खासकर जब बात गमों की हो, वो मन ही मन अपने हालात से जूझता रहता है और तब तन्हाइयों में वो दर्द आंसू बनकर बहता है। किसी को पाने के बाद खोना और मिलने के बाद बिछड़ना, कहते हैं कि जब दर्द आंसू से छलकता है, मतलब इंसान जब रो लेता है तब उसका मन हल्का हो जाता है। दर्द भरी यादें कभी तो ताउम्र सताती हैं, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने मनपसंद कार्य में मन को लगाए, समाज सेवा, पशु पक्षियों की सेवा या गीत संगीत सीखे, गुने सुने, गाएं, व्यक्त होने से उस दर्द को कम कर सकते हैं। तो हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं, कहते हैं कि राहें बंद नहीं होती, बस नजर का दायरा कभी कभी छोटा पड़ जाता है। एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत हो, जिंदगी का पासा पलट देती है ये हिम्मत। जिंदगी के कैनवस पर अगर आज काला रंग गहरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी रंग खत्म हो गए, उस ब्रश को उठाने और एक नया रंग भरने की देर है। तो सकारात्मकता से भरे ये संदेश हमारे साथी भेज रहे हैं और हम आपसे यही जानना चाहते हैं किस तरह से आप सकारात्मकता से सामना करते हैं अपने जीवन में कोई भी परेशानियों का, कठिनाइयों का। और दुखी होना कोई बुरी बात नहीं है, जैसा कि हमारे साथी कहने की भी दुख ही होते हैं, अकेले में आंसू बहाते हैं, वो भी चलिए कोई बात नहीं, अगर ये काम एक आध दिन हो रहा है, लेकिन लगातार अगर यही हो रहा है तो बहुत जरूरी है कि बाहर निकलें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा या आपकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। कभी कभी हमारे मन का वहम होता है, कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से, किस परिस्थिति में हैं, किस निराशा से जूझ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में अगर हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं तो वो बात सुनते हैं। और सुख दुख की बात अगर हम कहें तो भाई, सुख दुख से संबंधित ये गीत अगर आप सुने तो ये गीत आपको सकारात्मकता का संदेश तो देगा ही। और फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताने वाले हैं।
1: सुख हो या सुख, जब सदा

मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर, और बात हो रही है कि जब निराशा हमें घेरती है तो हम क्या करते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर मिल जाए किसी प्यारे से दोस्त या किसी अपने का थोड़ा सा साथ या थोड़ा सा सहयोग, तो हमें लगता है शायद कोई इंसान इस परेशानी में रहेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ चीजें दौलत से नहीं बात करने से भी संभल जाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभार मन किसी जाने अनजाने दुख से या यूं ही निराश होकर उसी में डूबता चला जाता है, कभी कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसे में उस जगह से उठकर थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ी चहलकदमी करें, एक दो लोगों से कुछ हल्की फुल्की बातें करके मन को बहलाएं, मन को कहीं और लगाएं तो कुछ मन हल्का हो जाता है, वरना जितना डूबोगे मन इतना ही डूबता जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक ही जगह पर बैठे रहने से भी कभी कभी वो बात हमारे मन से निकलती ही नहीं, तो जरूरी है कि हम बाहर निकलें, लोगों से मिलें, या उठकर बस एक चार पांच कदम भी अगर हम चल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस विचार से निकल पाते हैं और कुछ और भी सोच पाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत हमें जिंदगी के नकारात्मक पहलुओं के साथ ही सकारात्मक सोच की तरफ ले जाने के लिए सक्रिय कर रही, किंतु सच्चाई इससे कुछ अलग है। सच्चाई सकारात्मक पहलुओं के करीब अवश्य ही है, और जैसे नकारात्मक ऊर्जा हमें सकारात्मक सोच की तरफ इशारा किया करती है, हम उससे ही उसकी सहायता से ही अपनी सकारात्मक सोच की तरफ प्रवृत्त होते हैं। उसी तरह हमें सकारात्मक सोच से भी बचते हुए उस अद्वैत आनंद की इबादत से ही ओतप्रोत रहते हुए संदेश देते हुए स्पष्ट करता है कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, यानी जो भी वस्तु है वो गोविंद यानी भगवान की दी हुई वस्तुएं हैं और उन्हें ही हम समर्पित कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात आपने कही एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि सकारात्मकता नकारात्मकता दोनों ही जीवन के एक पहलू हैं और इन्हें बदलते रहना चाहिए। जैसे कि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, ऐसा कहते हैं कि

समय एक सा नहीं रहता, उसी तरह मन के विचारों को भी एक ही तरफ एक ही जगह पर बचाकर या जमा करके नहीं रखना चाहिए। हमारे एक साथी कहते हैं कि निराशा हर किसी के जीवन में आती है। अब ये उस इंसान पर निर्भर करता है कि उसमें कितना आत्मबल है कि वो संसार के रचयिता पर विश्वास करते हुए नकारात्मकता को छोड़कर उस निराशा को आशा में बदलते हुए फिर से हिम्मत करके कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और जो निराशा का ही दामन थामे रहते हैं वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते, इसलिए आशावान रहना ही जीवन की सच्चाई है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन की निरर्थकता का बोध ही घोर निराशा और नकारात्मकता है। कभी कभी मनुष्य अर्थहीनता की स्थिति से जूझता है तो मनुष्य का चेतन और अवचेतन दोनों ही पीड़ा से घिर जाते हैं। जीवन इच्छाओं और संभावनाओं का अनंत सागर है, इसलिए जीवन में दुख और निराशा उत्पन्न होती है। मनुष्य का अवचेतन मन दमित इच्छाओं का मार्ग है। जागृत अवस्था की नकारात्मकता जब मानसिक प्रतिरोध तोड़ देती है तो स्वप्न में दबी हुई पीड़ा अवसाद और आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलती है। तो जरूरी तो यही है कि उस पीड़ा, उस निराशा, उस नकारात्मकता को बाहर निकाल दिया जाए। और जरूरत तो ये भी है कि बातों के साथ साथ गीतों का सिलसिला भी जारी रखा जाए। तो चलिए ये गीत आपको सुनवाते हैं, और इस गीत को हमने लिया है सीमा फिल्म से। ये बताइए कि इसमें नजर कौन आती है।

सीमा फिल्म का ये गीत सुना। और इस फिल्म में और इस गीत में नजर आती हैं नूतन शुभा खोटे के साथ। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि फिल्म चित्रलेखा के गीत के बारे में उन्होंने लिखा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की भारत का सारांश है कोई क्या जाने पीर पराई। और हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ये गीत जब दिल टूटता है तो आशिक लोग गाते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से इसे देखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और गीत के बारे में ही ऐसा कह रहे हैं ऐसा हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मात्राधिक आशा ही कष्ट का कारण है, सबसे कष्ट और निराशा अपने कार्यरत आत्मनिर्भर बच्चों के फिजूल खर्ची से होता है। 8,000 के जूते क्या मुकुट है जो सिर पर पहनना है। भाई देखिए, ये भी एक कारण हो जाता है कभी कभी, जब हम ये सोचते हैं कि इस चीज की क्या जरूरत थी। हो सकता है किसी और के नजरिए में उस चीज की उन्हें जरूरत हो, सकता है वो ज्यादा उन्हें आरामदायक लगते हों या कुछ बातें हों, उनके मन के बारे में भी जानना जरूरी है। कभी कभी हम दूसरे ने क्या किया ये बात जब देखते हैं तो इससे जो दुख हमारे मन में आता है या बहुत सी असंतोष पैदा जब होता है तो ये भी दुख का बड़ा कारण होता है जिसका निवारण हमारे हाथ में ही होता है। हमारे को साथी कह रहे हैं कि जब मन दुखी उदास और निराश होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता और चारों तरफ अंधेरा या खालीपन सा महसूस होता है, तब मुकेश जी का गाया गीत याद आता है, जाऊं कहां बताए दिन दुनिया बड़ी है संग दिल। वहीं हमारे साथी का कहना है कि अपने से बिछड़ने का दुख सबसे ज्यादा निराश करता है, पर ये गीत उसके लिए परफेक्ट है। किसी जो भी गीत उन्होंने सुना उसमें से एक गीत के बारे में ये कह रहे हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि दूसरों का दुख दर्द देखकर मेरा दिल गहराई से भर उठता है, जब भी किसी को तकलीफ में देखता हूं तो उसकी वेदना जैसे मेरी अपनी बन जाती है, मन इस कदर भावुक होता है कि पूरे दिन उदासी की एक गहरी परत सी छाई रहती है, सोचता हूं कि काश मैं हर किसी के आंसू पोंछ पाता। आज भी ऐसा ही हुआ, किसी की पीड़ा ने भीतर तक झकझोर दिया और पूरा दिन एक अनकहे भारीपन और उदासी में बीत रहा है। अति संवेदनशीलता भी कभी कभी हमारे दुख का कारण होती है, तो उनके लिए अगर हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। और ये देखिए, एक बात हमें याद रखनी चाहिए हमेशा कि भाई हर एक व्यक्ति का दुख दूर करना या हर एक व्यक्ति की परेशानी दूर करना तो ईश्वर के हाथ में भी नहीं है। तो इस वजह से हम तो केवल मानव हैं, तो ये सोचना चाहिए कि हर चीज कर लेना हमारे बस की बात नहीं है, और इसलिए दुखी होना भी ये हमारे बस में है कि हम इसके लिए दुखी ना हो। हमारे एक और साथी कहने कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं, सुख के क्षणों में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तब परिवार ही है जो हर परिस्थिति में हमारा हाथ थामे रखता है। गीत उन्होंने बताया, बाहरो मेरा जीवन भी संवारो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब भी मन किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में हो जाता है तो ये गीत हौसला बढ़ाते कि समझौता गमों से कर लो। हमारे एक और साथी कहने की आवाज देकर मुझे तुम बुलाओ, बहुत उदास हूं मैं, मुझे गले लगा लो। जब भी ये दिल उदास होता है ये गीत इन्हें काफी पसंद है। जो सैड गीत कौन से पसंद है हमने पूछा था। हमारे एक और साथी कहने की कबीर से फिल्म का गाना तुझे कितना चाहने लगे हम, जुबिन नौटियाल ने सिखाया है, ये गाना इन्हें बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, ये गीत इन्हें पसंद है। और हमारे कुछ साथी बता रहे हैं कि उनकी लिस्ट में से गीत शामिल हो गए हैं। एक और साथी का कहना है कि निराशावादी लोगों की जगह हंसमुख स्वभाव वाले लोगों के साथ समय गुजारना चाहिए। भाई ये तो एक अच्छी बात है कि अच्छी संगति हो या खुश मिजाज लोगों के साथ अगर जब हम होते हैं तो हम भी खुश रहते हैं ऐसा लगता है, लेकिन कभी कभी जो ये हम सोचते हैं कि निराशावादी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ये जो दिन भर ये उदास रहते हैं इनके साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे वक्त में ही उस व्यक्ति को ये लगता है कि जब हम निराश हैं या हम उदास हैं तो लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं और उन्हें और ज्यादा निराश कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ उनकी जो दुख तकलीफ है उन्हें बांटने की कोशिश कर सकते हैं और उनके वो दोस्त बन सकते हैं जो जिसकी उन्हें तलाश है ना। तो चलिए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम का एक ऐसा ही गीत। आपको ये बताना है कि किस फिल्म से ये गीत हमने लिया।

आलिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हमें, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चाहे दुख हो या खुशी, एक गीत तो हम हर समय सुनते हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और ये गीत इन्हें बहुत पसंद है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लाखों तारे आसमान में, ये गाना उन्हें बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी का कहना है कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, ये गीत उन्हें पसंद है। हमारे एक साथी ने तलत महमूद के गीत उन्हें पसंद है ऐसा कहा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुकेश जी के दर्द भरे गीत बहुत अच्छे लगते हैं। एक साथी कहते हैं मेरे महबूब कयामत होगी, ये गीत उन्हें बहुत पसंद है। और हमारे और साथियों ने गीत कौन सा बताया बताएं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि धूप बहुत है राहों में, परछाओं भी कभी मुस्कुराएगी, गम का मरुस्थल लंबा सही पर हरियाली लौट कर आएगी। तारे सुन सुनकर थके पैर अब ताने सुन सुनकर थके पैर अब मंजिलों की ओर बढ़ेंगे, सुख दुख के ताने बाने में सहयोग के धागे बुन लेंगे। ये इन्होंने लिख भेजा है सकारात्मक लघु काव्य आज की भारत से संबंधित। और उन्होंने कहा कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना है। इस तरह से उन्होंने अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट भेजी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निराशा या नेगेटिविटी इंसान को जब आती है, उसके मन को यह एहसास होता है कि अब मुझे हर कोशिश कार्य में असफलता मिल रही है। पर उसी इंसान को जब कोई आशा की किरण किसी विचार से या किसी व्यक्ति से मिलती है, तो वह पुनः निराशा छोड़ कार्य करने लगता है। जीवन में आशा और निराशा आती रहती है। कुछ गीत जो इस विषय में है, मंदे तु काहे न धीर धरे, और भी बहुत से गीतों के बारे में इन्होंने लिख भेजा है। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कहते हैं ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ये गीत उन्हें बहुत पसंद है। निराशा की राह छोड़ो, आशा का दीप जलाओ, हमारे एक साथी कह रहे हैं। एक और साथी कहते हैं कि अंधेरा कभी प्रकाश को नहीं हरा सकता, एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को दूर कर देता है। उसी तरह एक सकारात्मक विचार अनेक नकारात्मक विचारों पर भारी पड़ सकती है। तो हमारे एक और साथी का कहना है, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, ये गीत उन्हें पसंद है। इस तरह से जब कोई चुप करवाने वाला हो या समझाने वाला हो, तो भी निराशा बहुत जल्दी दूर हो जाती है, जैसे कि इस गीत में। बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

जाने तू या जाने ना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राशिद अली की आवाज, अब्बास टायरवाला के बोल या रहमान का संगीत, और फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। तो कभी कभी अगर कोई हो ऐसा जो हमें बता दे कि भाई इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं और हम सभी आपके साथ हैं, तो उस दुख से ऐसा मत कहिए कि बिल्कुल ये दुख भूल जाओ और कल से तुम्हें बिल्कुल हंसते रहना है। ऐसा कहना तो बड़ा ही अजीब होता है, क्योंकि भाई ऐसा कहने से तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी अगर दुख में डूबा है, निराशा में डूबा है, तो अचानक से उठ खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आपका साथ उसे धीरे धीरे उस चीज से बाहर ला सकता है। हमारे एक साथी कहने की वैसे तो मैं आशावादी ही हूँ, माता रानी की असीम कृपा है। जब भी कभी उदास या दुखी होता था या कभी कभी उदास होता हूँ, तो शादी से पहले मेरी माता जी हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, शादी के बाद और अभी तक मेरी धर्म पत्नी मेरे उत्साह और हिम्मत बढ़ाती, और तो और मेरी दोनों बेटियां मेरी परेशानियों में कहती कि पापा जी हमें बेटियां ना समझकर अपने बेटे समझो, हमें परेशानी बताइए, हम हैं ना। तो भाई बेटियों को भी परेशानी बताई जा सकती है, जरूरी नहीं है कि परेशानी सिर्फ बेटों को बताई जाए, लेकिन फिर भी ये उनका अपना एक तरीका है बात करने का। हमारे एक और साथी कह रहे, सुख और दुख तो दुख छांव, धूप छांव की तरह है, जो जीवन में आते ही रहते।

जैसे हमारा एक पैर आगे चलता है और दूसरा पीछे, लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है कि रात में रोक ली हो सूरज की रोशनी? तो हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए और इस मामले में गीत हमारा बहुत साथ देते हैं। और जब मैं टेंशन में होती हूँ तो अपने पसंदीदा गीत सारे गीत गा लेती हूँ और मेरी टेंशन 80% तक दूर हो जाती है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा मित्र हो तो क्या कहना, और क्या हर सफर आसानी से कट जाता है। वही हमारे एक साथी का कहना है कि दुखी होना सिर्फ समय नष्ट करता है, कुछ हाथ तो आता नहीं, इसलिए लगता है कि दुखी होने से फायदा ही क्या है, जो है गुजर जाएगा। ये एक बात बहुत ज्यादा मन को सुकून देती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन की जटिलता से जुड़ी चीजें आज की इबारत में शामिल है। इस बेहद चुनौतीपूर्ण जिंदगी से गुजरते हुए आदमी का मन कभी कभार बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, कुछ लोग तनाव के कारण बीमार पड़ जाते हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे दिलीप की दुखांत फिल्मों की याद आ रही है, दिलीप कुमार की बात वो कह रहे हैं, उनकी फिल्म दिल दिया दर्द दिया का एक गाना, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये गीत भी आज के कार्यक्रम के लिए उन्हें लगता है कि बिल्कुल सटीक बैठता है। और बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं कि हमें, लेकिन ये बताइए कि वो कौन सा हैप्पी या कहें कि उम्मीदों भरा गीत है जो आपको दुख जब बहुत ज्यादा होता है और आप दुखी गाने सुन सुनकर परेशान हो जाते हैं और ज्यादा दुख में डूब जाते हैं, तो वो कौन सा एक उत्साहवर्धक गीत है जो आपका उत्साहवर्धन करता है और आपको उस दुख से बाहर आने में मदद करता है। हो सकता है कोई दुखी गीत ही हो जो आपको आगे आने के लिए मदद करता हो और वापस उठ खड़े होने के लिए और एक आशा उम्मीद रखने के लिए मदद करता हो, हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये गीत। फिल्म का नाम बताइए।

कहा कि भाई हम तो हैं सीनियर सिटीजन और हमें तो इस के बारे में पता नहीं, सिलेबस से बाहर की चीज है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि मुकेश से अपनी दोस्ती शुरू से रही, अब तो पत्नी भी नहीं रही, तो मुकेश के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। परिवर्तन नियति है, हर रात के बाद सवेरा होता ही है। इसी तरह दुख का भी अंत होता है, सुख भी आता है, पतझड़ के बाद नई कोपलें भी आती हैं, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि वो देर से शामिल हुए, तो तेरी आंखों के आंसू पी जाऊं, ऐसी तो मेरी तकदीर कहां, ये गीत उन्हें पसंद है। फिल्म जाने तू या जाने ना का गीत के बारे में हमारे साथियों ने बताया। और हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कभी कभी पुराने गीतों को ही ज्यादा जानते हैं और नए गीत सिलेबस से बाहर के जब लग रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको जिस तरह से सुख और दुख के बारे में बता रहे हैं, उसी तरह से पुराने जमाने और नए जमाने दोनों से अपडेट रखें। तो एक गीत फिर से आपके लिए नए जमाने का, ये बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

छिछोरे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और जिंदगी में किसी भी तरह की कोई फिक्र ना कीजिए, बेफिक्र होकर जीना शुरू कीजिए। और सुरीला सफर कार्यक्रम से बस लेते हैं इजाजत।

दोस्तों, आजकल दुनिया से भोलापन यानी मासूमियत जैसे गायब होती जा रही है। जरूरत पड़ने पर बहुत चालाक और बड़े व्यवहार कुशल लोग अपने भोलेपन का स्वांग जरूर रच लेते हैं, लेकिन जल्दी ही ओढ़ी हुई मासूमियत गायब हो जाती है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि उम्र के हर पड़ाव में थोड़ी मासूमियत, थोड़ा भोलापन बचा कर रखना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि जो मासूम है वो ही किसी से सच्चा प्यार कर सकते हैं। जो भोले हैं

हाँ तो दोस्तों, बात चल रही थी मासूमियत की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मासूमियत गुम होने लगती है, लेकिन जो लोग छल प्रपंच से अपने को दूर रख पाते हैं, जो लोग दूसरों से कम नफरत करते हैं, जो लोग हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रख लेते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों में बुराई नहीं ढूंढते, जो लोग मन में कुछ और बाहर कुछ और वाला बर्ताव नहीं करते, वो लोग लंबे समय तक अपनी मासूमियत बचाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा भी यही कहना है दोस्तों कि कितने भी हो जाइए समझदार, कितने भी हो जाइए चतुर और व्यवहार कुशल, लेकिन मन के किसी कोने में बचाए रखिए अपनी मासूमियत।

दोस्तों, बच्चों में एक किस्म का भोलापन होता है और इसे उम्र भर कायम रखना चाहिए, लेकिन आज ये भोलापन बच्चों में भी जैसे समाप्त हो रहा है। आजकल के बच्चे इतने सयाने, इतने व्यवहार कुशल और तेज हो गए हैं कि उतने किसी जमाने में नहीं थे। आजकल के बच्चे बच्चे कम, सयाने ज्यादा लगते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा।

0: अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश टोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: जीआरपी की 32 प्लाटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जलभराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी सीजेपी की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई

0: संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट, डीप फेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय

0: अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जी एस कोहली का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे फारूक कैसर के बोल। शिकारी फिल्म के इस गीत में आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आपको बता दें कि शाम 4 बजे आज बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकेंगे फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।

जी एस कोहली का संगीत बद्ध ये गीत आपने सुना। नमस्ते जी फिल्म के इस गीत को लता मंगेशकर ने गाया और अनजान के बोल थे। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं उजाला फिल्म से ये गीत, मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद।

0: पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
1: एक और आ गया।
0: एक और आ गया।
1: कहा जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
2: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गूंज उठी शहनाई। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और लता मंगेशकर की आवाजें, भरत व्यास के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

दिल दे के देखो, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों में ये अगला गीत। छोटी बहन फिल्म के इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा और शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया।

छोटी बहन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सुबीर सेन और लता मंगेशकर की आवाजें, हजरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको याद दिला दें कि आज शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में आप सुनेंगे फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और कार्यक्रम सदाबहार नक में आइए अब सुनते हैं मुगले आजम फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: विविध भारती पर मन चाहे गीत कार्यक्रम के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में आगे बढ़े, आपकी फरमाइशी गीतों की फरमाइश पूरी करें, उससे पहले जानते हैं आज के जो ये कार्यक्रम है मन चाहे गीत, उसमें पत्र भेजने का क्या तरीका है और क्या है नियम।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ढप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।

0: और ये चिट्ठियाँ आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
2: तो कार्यक्रम मनचाही गीत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम का पहला गीत किसकी फरमाइश पर सुनवाने वाले हैं ये तो बताएंगे ही, लेकिन वो गीत है मेरे हुजूर फिल्म से, ये आपको पहले बता रहे हैं। और इसकी फरमाइश आई है न्यू ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद अहमद रायनी, अबरार अहमद रायनी, शकीला बेगम रायनी, बद्री प्रसाद यादव, सौरभ सोनवानी, एम ए कानपुरी, आर के कानपुरी ने भी इस गीत की फरमाइश यहीं से भेजी है। और दतरंगी भाटापारा से नोखिलाल वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा भी सुनना चाहते हैं मेरे हुजूर फिल्म से गीत। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। अपनी पसंद पर सुनिए ये गीत।

मेरी हुजूर फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन चाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम का अगला गीत जिनकी फरमाइश पर जिनकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं उनके नाम है न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय शीतल जो कि अपनी पत्नी के लिए ये गीत सुनना चाहते हैं। चार डोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गाराम साहू अजय कुमार साहू किशन साहू जय कुमार श्रीमती कुमारी साहू श्रीमती इंद्राणी माया साहू आप सभी की पसंद पर जहां आरा फिल्म से ये गीत सुनिए। आवाज तलत महमूद की राजेंद्र कृष्ण के बोल मदन मोहन का संगीत।

0: अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
1: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
2: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए
4: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और जिसके मन चाहे गीत को हम सुनने वाले हैं उनके नाम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको गीत सुनवा दें। लीडर फिल्म से एक गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, और गीत के बाद बताएंगे कि किसकी पसंद पर सुनवाया ये गीत।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल आपने सुने। नौशाद का संगीत फिल्म लीडर से गीत आपने सुना और इस गीत की फरमाइश हमें आई थी जोधपुर राजस्थान से मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इजान, सनोवर रानू, हुमेहानी और साथ ही नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव, ज्योति रानी, गुरमनंत ने भी इसी गीत की फरमाइश की थी। कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अगला मनचाहा गीत है सगीना फिल्म से और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु सिंह, सेक्टर 18 जगाधरी

जगह धरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी आप सभी की पसंद पर सभी को सुनवा रहे हैं सगीना फिल्म से गीत, और इस गीत में आवाज किशोर कुमार की।

फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे वाह फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया इस साला मैं तो साहब बन गया attention

0: या गंगू तेली,
1: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा, हम साला बदलेगा। सीना

सगीना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और पंकज मित्रा के आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत। तो किसी की पसंद पर वो गीत तो हमने सुनवा दिया, लेकिन अगला गीत किसकी पसंद पर है ये आपको बताते हैं। अगला गीत है गिरधारी लाल दुआ, महितपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से इन्होंने अपनी पसंद भेजी है। साथ ही सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, इन्होंने भी अपनी पसंद भेजी है। और आप सभी की पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं सिंग इज किंग फिल्म से गीत। लव जैन जुनेजा ने इसे और सुजी क्यू की आवाजें हैं, मयूरपुरी के बोल प्रीतम का संगीत। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

सुजैन डिमेलो और लव जंजुआ की आवाजों में आपने सुना सिंगिस किंग फिल्म का ये गीत, मयूर पुरी ने से लिखा, प्रीतम का संगीत। अब कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। इतिहास फिल्म से ये गीत सुनने की फरमाइश आई है। मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अजान, सैफ अली खान, मोहब्बत अली, रजाक अली, नथु खान सेमपुरा बीकानेर से आप सभी हैं, और बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी केशरी की पसंद भी है। चोरी चोरी ये गीत सुनना चाहते हैं। इतिहास फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, समीर के बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत। तो सुनिए ये गीत आपकी पसंद पर।

0: राष्ट्रीय तरंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा नाटक वो मंजिल कहाँ, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: हेलो, रीता स्पीकिंग। जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ। आप? अरे सचिन, हाँ मैं हूँ रीता। क्या कहा? कब? अस्पताल? अच्छा अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
1: सचिन का फोन था। पापा हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,
3: आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि हमारे यहाँ भी कोई स्थान रिक्त नहीं है। आप क्या फरमाते हैं?
4: यस सर, आई रिग्रेट टू से दैट द पोस्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एडवर्टाइज्ड बाय अस हैज सिंस बीन फिल्ड अप। हाउएवर सम पोस्ट्स ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क्स आर स्टिल लाइंग वेकेंट।
3: लोअर डिवीजन क्लर्क?
4: और आपके सिंहासन पर बैठाने वाले हैं जनाब चंद्र साहेब। हमारे मदरसे में अंग्रेजी के मुदर्रिस की जगह खाली है, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी माली हालत इस वक्त नाजुक है, इसलिए हम आपको फिलहाल 100 रुपया महीना से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी के एमए पीएचडी को 100 रुपया महीना की मास्टरी?
5: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
3: तुम भी आ गए कंगाली में आटा गीला करने।
5: तो वो तो आना ही था।
3: पहले सिगरेट तलब करोगे, थोड़ी देर मेरा दिमाग खाओगे।

0: और फिर चाय की मांग करोगे।
1: ओफो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है। तुम्हारे ऑस्कर वाइल्ड ने ही तो कहा था कि जब मैं कर्ज में होता हूँ तो हर खर्च बर्दाश्त कर सकता हूँ।
0: मेरी हालत तो इससे भी बदतर है जाने मन।
1: हाँ?
0: मुझे 100 रुपये महीने की मास्टरी मिल रही है। जो लोग इस उम्मीद में कर्ज दिए जा रहे थे कि डॉक्टर हरीशचंद्र आज नहीं तो कल किसी बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, वे भी मेरी मास्टरी देखकर कर्ज देना बंद कर देंगे।
1: अच्छा, वेरी गुड। क्यों हरीश, कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते?
0: कारोबार के लिए पूंजी कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें तो मालूम है अख्तर, पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे वो सब पढ़ाई में खत्म हो गया है। अब सिवा कर्ज के मेरे पास कुछ नहीं है।
2: अरे भाई, क्या साजिश हो रही है?
0: अभी तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप तशरीफ लाए हैं तो जरूर होगी। क्यों होगी?
2: ओहो जनाब अख्तर साहब, यहाँ डटे
1: आधा वर्ष। मियाँ,
2: मैं पूछता हूँ, आखिर बात क्या है? कोई पार्टी वार्टी है क्या?
1: अरे मियाँ, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है। हरीश की बेकारी पर मातमपुरसी करने चला आया था।
2: भाई देखो अख्तर भाई, अगर बेकारी के लिए मातमपुरसी होने लगे ना तो ये देश मातमपुरसी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकेगा। ये मेरी अपनी राय।
1: तो और करता भी क्या है?
2: देखो हरीश, ये बेकारी का सवाल तुम व्यक्तिगत सवाल मत समझो, ये पूरे समाज और सारे देश का सवाल है।
0: सचिन, व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सवाल नहीं तो और क्या है? बेकार इंसान को जिन कमियों का सामना करना पड़ता है, समाज में जिन अपमानों का शिकार होना पड़ता है, वे सब इंसान भोगता है, क्योंकि इंसान के मन होता है, आत्मा होती है।
2: हाँ, मैं मानता हूँ ये सही है कि व्यक्ति के मन होता है, आत्मा होती है, और समाज का कोई मन नहीं होता, कोई आत्मा भी नहीं होती। लेकिन मैं फिलॉसफी की चर्चा नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ हरीश के इस समस्या का इलाज व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता, सामाजिक इलाज से ही समस्या को सुलझाया जा सकता है। ये मेरी अपनी राय।
1: यानी आपकी नेक्स्ट सलाह ये है कि डॉक्टर हरीश चंद्र इनकलाब का परचम ऊंचा कर सड़कें नापने का काम शुरू कर दें।
2: जी हाँ, पर अकेले नहीं बल्कि और बेकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि इनकलाब के बिना बेकारी खत्म नहीं हो सकती।
0: सचिन, तुम्हारे विचार में जानता हूँ, तुम हर मर्ज का इलाज अपनी पार्टी के इशारे पर होने वाली क्रांति में देखते हो, लेकिन ये तो बताओ कि क्रांति होने तक बेकार इंसान क्या करेगा?
1: सचिन, ये भी गौरतलब है कि इनकलाब गुत्थियां सुलझाने से ज्यादा नई गुत्थियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से शुरू किए इनकलाब बेहाथ होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाती है।
2: अख्तर, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल रिएक्शनरी हो, तुम इनकलाब का ना मतलब समझते हो और ना ही उसकी ऐतिहासिक अनिवार्यता।
0: अरे अरे, ये तुम दोनों ने क्या राजनीतिक अखाड़ेबाजी शुरू कर दी है? यहाँ रोटी रोजी के लिए परेशान है और आप लोग हैं कि सिद्धांत बगाड़ रहे हैं।
1: करेक्ट सर। सचिन भाई, सुलह की दरख्वास्त करता हूँ,
2: बशर्ते कि उसकी घोषणा चाय के प्याले से हो।
1: करेक्ट।
0: अरे वो तो अख्तर के आते ही मैंने कह दिया था कि हजरत पहले सिगरेट मांगेंगे, फिर सर खाएंगे और आखिर में चाय पर पहुंचेंगे। चलो चलो बाहर, चलो
2: चलो चलो।
0: रितु, क्या मंगवाए?
3: बस कॉफी।
0: दारा?
4: जी सर।
0: दो कोल्ड कॉफी।
3: तुम्हारी अर्जियों के कोई जवाब आए?
0: आए, जितनी अच्छी जगह थी सब भर चुकी है, बची है क्लर्की और मास्टरी की जगह, वे खाली है। तनख्वाह भी काफी शानदार है, 100 रुपया महीना।
3: अच्छी नौकरियां भी आखिर किसी न किसी को तो मिलती हैं।
0: जरूर मिलती है।
3: फिर मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं मिलती?
0: प्रोफेसर डॉक्टर मिस रीता सिन्हा, आप बड़ी भोली हैं।
3: अच्छा
0: रितु, जानती हो नौकरियां किन्हें मिलती है? चाचा भतीजे को सबसे अधिक नंबर देता है।
3: तुम भी जाति प्रदेश और रिश्ते की सीढ़ी पर पैर रखकर ऊंची कुर्सी पर पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते?
0: क्योंकि मैं जाति मानता हूँ और न प्रदेश से बंधा हूँ, रिश्तेदार कोई है नहीं।
3: तुम मजाक कर रहे हो।
0: मजाक मैं नहीं, मेरी तकदीर कर रही है। क्योंकि मैं न जाति से बंधा हूँ और न प्रदेश से, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ।
3: हरीश, बेकारी तुम में करवाहट पैदा कर रही है, ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
0: मेरी

0: सुबह तुम्हारे एक शब्द के इंतजार में रुकी हुई है रीता।
1: फिर वही बात।
0: रीतु शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेरा सारा खालीपन दूर हो जाएगा, जिंदगी जीने के लायक बन जाएगी। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, वो एक खाली प्याला है।
1: जिंदगी के प्याले में कई चीजें पी जा सकती हैं, उसे शादी के लिए खाली छोड़ देना क्या उचित है?
0: हर आदमी को अलग अलग समय पर अलग अलग प्यास होती है। आज मेरी प्यास दूसरी है, मुझे स्नेह चाहिए। किसी के प्रेम की उंगली पकड़कर मैं ऊपर उठ सकता हूँ, जिंदगी की निराशा और दुख को जीत सकता हूँ, इंसान की तरह खड़ा हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ।
1: अगर मेरे स्नेह से सब मिल सकता हो तो तुम जानते हो वो तुम्हारा है। रहा शादी का सवाल, उसके लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साल दो साल में शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया जाएगा।
0: साल दो साल, ये सजा क्यों?
1: ये सजा नहीं, ये परीक्षा है, कसौटी है, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारा प्रेम साल दो साल के इंतजार को सह सकता है।
0: तब तक मैं क्या करूँ?
2: सर बिल।
1: तब तक बिल चुकाओ।
3: अख्तर, हरीश के मामले में तुम कहाँ तक पहुँचे हो?
4: मेजर, हरीश को दल में लाना आसान नहीं है।
3: आसान होता तो तुम्हें ये नहीं सौंपा जाता। और ये मत भूलो कि हरीश का नाम तुमने ही सुझाया था।
4: इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया।
3: शायरी नहीं, मुझे रिपोर्ट चाहिए।
4: हरीश ने भी नाउम्मीदी के दौर में पैर रखा ही है। गहरे में पहुंचते ही हम उसे अपने पास घसीट लाएंगे।
3: एक बात ध्यान रखना, जब तक हरीश दिमागी तौर से तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके सामने इनकलाब की बातें मत करना, वो कहीं भागने खड़ा हो।
4: मैं बचपन से उसके साथ पढ़ा हूं मेजर, उसकी नस नस पहचानता हूं। एनसीसी में भी हम दोनों साथ थे। अपने जमाने का वो सबसे बढ़िया कैडेट था, निशानेबाजी में बेजोड़।
3: यही तारीफ सुनकर तो मैं उसे दिल में लेने के लिए राजी हुआ हूं। उसके जीवन में कहीं कोई लड़की है?
4: जी।
3: मैं पूछ रहा था वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है? ऐसे लोगों को खतरे के काम में लाना कठिन होता है।
4: समझ गया, अभी उस पर मोहब्बत की लगाम नहीं लगी है मेजर।
3: फिर ऐसा करो, पुराना नुस्खा ही काम में लाओ।
4: वो क्या मेजर?
3: अलका से उसकी मुलाकात करा दो, अलका इस काम में उस्ताद है। जयंती लाल को वही तो दल में लाई थी।
4: नथिंग लाइक ट्राइंग इट मेजर, लेकिन साकी के साथ सागर भी चाहिए।
3: यू आर राइट एंड दैट मीन्स मनी।
4: ऑफ कोर्स।
3: ये लो 100 रुपए, वेस्ट मत करना, अलका से भी कह देना।
4: जी।
3: सुनो सुनो, अलका को हरीश की पूरी बैकग्राउंड समझा देना, और देखो दोनों का परिचय कराकर तुम स्टेज से हट जाना।
4: आप फिक्र मत करें मेजर।
3: ऑलराइट, मिस्टर फ्लेक।
5: थैंक्स।
6: कहो हरीश। अरे भाई क्या हो रहा है?
7: आओ आओ, बहुत दिन बाद दिखलाई पड़ रहे हो, कहाँ थे?
6: अरे यही था यार, वो रबर फैक्ट्री की हड़ताल में बुरी तरह बिजी था।
7: बाजार में अफवाह गर्म थी कि हड़ताल समाप्त होने को।
6: हाँ, वो तो समाप्त हो गई है। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुमने ऐसा हुलिया क्यों बना रखा? कपड़े मैले, चेहरे पर कई दिन पुरानी दाढ़ी, बाल रूखे, अरे भाई अच्छे खासे मजनू दिखाई दे रहे हो।
7: सचिन, एक बेकार नौजवान से तुम क्या उम्मीद करते हो?
6: अरे यार मैं तो बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये लक्षण बेकारी के नहीं,
7: बेकरारी के हैं।
6: मैं समझा नहीं। बनो मत, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी इस हालत का कारण बेकारी से अधिक रीता है। मालूम पड़ता है रीता से कोई झगड़ा हो गया है।
7: तुम तो मुझे और रीता दोनों को अच्छी तरह जानते हो। हम में कभी झगड़ा नहीं होता। हाँ सचिन, रीता चाहती है तो मेरे वजन को हल्का कर सकती थी।
6: वो कैसे?
7: हम शादी कर लें तो मेरा अकेलापन चला जाएगा, रीता के साथ रहकर मैं समाज से लड़ सकूंगा, बेकारी जैसी बीमारियां पैदा करने वाले सामाजिक अन्याय से लोहा ले सकूंगा।
6: अच्छा,
7: लेकिन मुझे आत्मिक शांति चाहिए जो रीता ही दे सकती है।
6: मेरा ख्याल है हरीश, प्रोफेसर सिन्हा तो पहले ही

0: का संबंध मंजूर कर चुके हैं, फिर रुकावट कहाँ है?
1: यही तो समझ में नहीं आता। जब ये बात उठाता हूँ तो रीता रुकने को कहती है।
0: क्या रीता बदल रही है? मैं पूछता हूँ क्या वो भूल गई कि अगर तुमने जानबूझकर अपनी इंटरव्यू खराब न कर ली होती तो नेशनल कॉलेज की लेक्चरशिप उसे नहीं तुम्हें मिलती।
1: छोड़ो इस बात को।
0: पर हरीश, तुमने ये बेवकूफी क्यों की? औरत के लिए नौकरी इतना महत्व नहीं रखती, पर मर्द के लिए वो सिर्फ आमदनी का जरिया ही नहीं, उसके सोशल स्टेटस की बुनियाद भी है।
1: जो कुछ मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। रीता के लिए मैं क्या नहीं कर सकता?
0: लेकिन वही रीता आप तुमसे इंतजार करने को कह रही। मैं पूछता हूँ क्यों? क्योंकि तुम बेकार हो, तुम्हारे पास ना कोई ओहदा है और ना कोई आमदनी।
1: नहीं सचिन, तुम रीता के साथ अन्याय कर रहे हो। उसके फैसले के पीछे जरूर कोई अच्छा कारण होगा।
0: ये कारण अख्तर तो नहीं?
1: अख्तर?
0: हाँ, उसे रीता के घर और कॉलेज के चक्कर लगाते अक्सर देखता
1: हूं। नहीं, वो नहीं हो सकता। रीता उसे हल्का आदमी समझती है।
0: देखो हरीश, तुम हमेशा जल्दबाज रहे हो और शायद जरूर से ज्यादा भोले भी। नारी इतनी सरल नहीं होती।
1: पुरुष ही कहां इतना साफ होता है। स्त्री और पुरुष के गुण दोषों का वजन बराबर बराबर है। मैं क्या खुद गर्ज नहीं हूं जो अपनी आत्मिक शांति की बात सोचकर शादी पर जोर दे रहा हूं? मुझे रीता और उसके पिता की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए।
0: ठीक है। अच्छा हरीश, मैं रीता से बात करूंगा।
1: नहीं सचिन, इसकी कोई जरूरत नहीं।
0: देखो भाई, ये मत भूलो कि रीता मेरी भी फ्रेंड है, उससे बात करने का मुझे भी अधिकार है। खैर चलो, तैयार हो जाओ। अरे भाई चलो ना, कॉफी हाउस तक चलेंगे। अच्छा चलो चलो।
2: हरीश सर।
3: नहीं नहीं सचिन।
4: हेलो हरीश। हाय सचिन।
3: हेलो हेलो।
4: किस बात पे खफा है हुजूर कि हम आ रहे हैं और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? अरे मैं तो भूल गया, आपसे मिलिए मिस अलका, और आप हैं डॉक्टर हरीश चंद्र MA PhD वगैरह वगैरह, और आप हैं मिस्टर सचिन मेहरोत्रा, मशहूर पॉलिटिकल वर्कर।
3: हाउ डू डू।
5: हाउ डू डू। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अब तक आपसे आप लोगों की बेहद तारीफ सुन चुकी हूँ। चलिए एक कप कॉफी हो जाए, आइए ना।
4: कॉफी? श्योर श्योर। क्यों सचिन, ख्याल तो बुरा नहीं है?
0: भाई आज माफी चाहता हूँ मिस अलका, एक मीटिंग है जिसमें पहुंचना जरूरी है, फिर कभी साथ दे दूंगा। अच्छा ओके बाय
5: बाय। और आप डॉक्टर चंद्र?
4: मैं भाई हरीश, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें कहाँ जाना है?
5: आइए ना डॉक्टर चंद्र।
0: चलिए मैं आपकी सेवा में हूँ।
4: दैट्स गुड।
5: बैठिए ना डॉक्टर चंद्र।
4: बैठिए। बैरा बैरा।
6: जी साहब।
4: तीन कॉफी लाओ। कुछ खाओगी अलका?
5: जी नहीं।
4: तुम कुछ लोगे हरीश?
0: मैं कुछ नहीं लूंगा।
4: ओके बस तीन गरम कॉफी लाओ बैरा।
6: अभी लाए सर।
4: हरीश, अलका बढ़िया कहानियां लिखती है। गाना, नाचना और एक्टिंग तीनों में कमाल हासिल है।
0: दैट्स ए रेयर कॉम्बिनेशन।
5: अख्तर साहब तो मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हैं, मैं तो नहायत ही मामूली लड़की हूँ।
4: भाई ऐसी बात नहीं है।
6: साहब अभी फोन पर यह संदेश आपके लिए आया।
4: अच्छा देखो। आई एम सॉरी अलका, मुझे फौरन बुलाया।
7: क्या हुआ?
4: अब्बा जान की तबीयत एक खराब हो गई। सॉरी हरीश।
7: चलो चलो हम भी चलते हैं।
4: नहीं नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। उन्हें हर महीने 15 दिन में ऐसे दौरे आते ही रहते हैं। कॉफी के बाद तुम अलका को घर तक छोड़ दोगे हरीश? प्लीज।
5: जी नहीं, इनको क्यों तकलीफ देते हैं, मैं चली जाऊंगी।
7: मैं छोड़ाऊंगा।
4: ओके ओके ओके हरीश, आई एम सॉरी फॉर टीचिंग यू।
7: कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
4: ओके
8: रितु, हरीश आखिर गायब कहां हो गया?
5: क्यों, क्या हुआ पापा?
8: हरीश का कई हफ्तों से पता नहीं। थोड़े दिन पहले तक मैंने उसे एक बदनाम लड़की के साथ कई बार घूमते फिरते देखा था।
5: समाज तो हर अकेली लड़की को बदनाम करता है, और लड़की के साथ घूमने में क्या दोष है?
8: हाँ, साधारण तौर से कोई दोष नहीं, लेकिन रितु वो सचमुच ही खराब लड़की है।
5: लड़की खराब होगी, पर हरीश बहकने वाला आदमी नहीं है।
8: हरीश कितना बहक सकता है ये शाम हम दोनों ही देख चुके हैं रीता। आम सड़क पर एक लड़की की कमर में हाथ डाले, नशे में लड़खड़ाते देखकर हरीश के चाल चलन पर शक करने की काफी गुंजाइश है।
5: पापा आपने पहचानने में भूल की है, वो हरीश नहीं होगा।
8: मैंने तब भी कहा था और अब भी कहता हूँ, मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया, वो हरीश ही था। इतना ही नहीं, उसने भी हमें देख लिया था, तब से हरीश को किसी ने नहीं देखा।

0: और मैं उस लड़की को भी जानता हूँ। उसका नाम है अलका। वो एक्टिंग करती है, नाचती है, गाती है।
1: पापा, आपको आज क्या हो गया है? अभिनय, नृत्य और गायन को आप कब से खराब मानने लगे?
0: जब से अलका जैसी बच्चन लड़कियों को इन कलाओं की आड़ से शिकार करते हुए देखा है। रीता, मेरा विरोध एक्टिंग और नाचने से नहीं है, विरोध है अलका से, वो बच्चलन है। अभी उस दिन डीएसपी मित्रा बतला रहे थे कि पुलिस की उस पर कड़ी नजर है, स्मगलिंग से लेकर चोरियों तक में उसका नाम है। कुछ दिनों से वो एक नए गिरोह के साथ देखी जा रही है। मैं पूछता हूं, हरीश का उसके साथ क्या काम?
2: अरे ये क्या, तू तो रोने लगी पगली कहीं की।
1: मैं रो कर रही हूं।
2: शायद इन सबके लिए जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं रुकने को नहीं कहता तो शायद हरीश भटकता नहीं।
1: पापा, मैं आपको दोष नहीं देती।
2: दोष मेरा है। मैंने सोचा था कि हरीश अगर बेकारी की हालत में शादी करेगा तो उसे पैसों के लिए तुम पर निर्भर करना पड़ेगा। समाज तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर हरीश की बेकारी पर उंगली उठाएगा, हरीश में हीन भावना पैदा हो जाएगी। अगर आज तेरी मां जिंदा होती तो शायद ये फूल न होने देती। शादी हो जाने से शायद हरीश भी रास्ते से नहीं भटकता।
1: पापा, हरीश के आदर्श काफी मजबूत हैं। आज अगर भटक भी जाएगा तो उसे ठीक रास्ते पर आने में अधिक समय नहीं लगेगा। अपनी मंजिल वो जानता है। आप जानते हैं, जिस जगह पर मैं काम कर रही हूँ वो हरीश की होती। उसने जानबूझकर इंटरव्यू में गलत सलत जवाब देकर अपना रास्ता बंद करके मेरे लिए जगह की। इंटरव्यू के बाद प्रिंसिपल दीक्षित ने उसे बहुत डांटा था। हरीश उनका प्रिय छात्र था।
2: दीक्षित ने मुझसे भी कहा था, हेतु शायद हर नौजवान में शहीद कहलवाने की तमन्ना रहती है।
1: पापा, आप हरीश के साथ अन्याय कर रहे हैं।
2: हाँ, शायद इसीलिए, क्योंकि वो मेरी प्यारी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है। न जाने वो इस वक्त कहाँ है और किन हालात में है। वो कहाँ तक कुंडों के गिरोह से बच सकता है, कुछ समझ नहीं आता।

0: पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है।
1: हरीश, बेकारी तुमने करवाहट पैदा कर ली। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
2: ये भी गौरतलब है कि इंकलाब खुशियां तो खुशियों से ज्यादा नई खुशियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से ये इंकलाब बेहाल होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर दूर रह जाते हैं।
3: देखो देखो, तुम हमेशा रिएक्शनरी रहते
0: लगता है, जैसे अपने तमाम आदर्शों को भुलाकर मैं एक अनजान रास्ते की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल की थी? मैं जानता हूँ मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, और समाज के प्रति मेरा भी अपना कोई दायित्व है। लेकिन अब मैं किस हद तक इसे निभा सकूंगा नहीं कह सकता, नहीं कह सकता।

कौन है इतनी रात गए?

0: नरेश को घायल हालत में गोड़ा अस्पताल ले आया। हाँ, पैर में गोली लगी। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है। वैसे घबराने कोई बात नहीं, आशोक पर जल्दी चलिए। अच्छा
1: अच्छा अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
1: सचिन का फोन था। पापा हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु

0: हेलो, रीता स्पीकिंग।
1: हेलो, कौन? रीता?
0: जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ।
1: देखो रीता, मैं सचिन बोल रहा हूँ।
0: अरे सचिन, हाँ हाँ मैं

0: कैसी तबीयत है हरीश?
1: ठीक हूँ।
0: तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, कहीं तुम्हारा पैर?
1: दोनों पैरों पर चलकर जो मंजिल नहीं मिल सकी थी वो एक पैर पर चलकर मिल गई, ये क्या सफलता नहीं है? तुम मेरे साथ रहो रीता, तो सब मंजिलें मिल जाएंगी और सच्चाई के रास्ते पर मैं हमेशा चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने सीधा रास्ता देख लिया है, रास्ता सच्चाई की तरफ है और उसी पर मुझे चलना चाहिए था। काश काश मैंने तुम्हारे और अपने अंतर की बात सुन ली होती, लेकिन अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है।
2: वो मंजिल कहाँ? अभी आपने डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे स्वतंत्र कुमार ओझा। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
1: सभी सुनने वालों को आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत को। जी बिल्कुल, ठीक मेरे सामने बैठे हैं मुस्कुराते हुए जाने माने फिल्म संगीतकार की जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन साहब, और हम उनका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। तो स्वागत है आपका दिलीप सेन साहब जी।
2: नमस्कार जी। नमस्कार विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोतागणों को। दिलीप सेन यानी दिलीप सेन समीर सेन का प्यार भरा नमस्कार।
1: आप कैसे हैं बताइए।
2: बहुत बढ़िया हूँ। वापस आपने याद ताजा कर दी मेरी
1: जी।
2: बरसों पहले आया था तो चाचा भतीजे दोनों साथ में आए थे।
1: बिल्कुल।
2: और इस बार किसी कारण समीर जी के पास वक्त नहीं था, मगर कोई बात नहीं, सवाल तो वही है जो दोनों को बोलने हैं, मैं बोलूं या चाहे वो बोले।
1: बिल्कुल, हम तो आप में ही दोनों रूप देख लेंगे।
2: थैंक यू जी।
1: तो आज उन्हीं दिलीप सेन साहब को सामने बैठा देखकर मैं तो बहुत अभिभूत हूँ।
2: धन्यवाद जी। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मेरे अतीत में ले गए पुराने
1: जी।
2: और विविध भारती आकाशवाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारी चार पीढ़ियां जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी जमाल सेन
1: जी
2: जो 1935 में मुंबई आए थे और एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने ढोलक, डफ, मटका और डेरू जो फिल्म में बजाना उन्होंने ही शुरू किया था
1: जी। जी
2: उस वक्त वो गुलाम हैदर साहब के साथ में लाहौर से आए थे। 51 में उनको पहला मौका दिया केदार शर्मा जी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शोकिया फिल्म से
1: जी।
2: तो पिताजी ने रंगीला, धर्मपत्नी, पतित पावन, आला उदल, कई फिल्में की, बगदाद वगैरह, कसूरी, मंचली। उसके बाद में बड़े भाई साहब आए 70 के दशक में, शंभू सेन जी।

0: अस्सी नब्बे के दशक में हम चाचा भतीजे दिलीप सेन समीर सेन आए
1: जी,
0: 2006 में मेरा पोता सोहिल सेन जी आए और 2026 में अभी मेरा पड़पोता समर भी आ रहा है
1: जी।
0: तो ये पांच पीढ़ियां हो जाएगी हमारी संगीत क्षेत्र में।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें श्रोतागणों ने, दर्शकों ने और प्यार करने वालों ने, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने, जनता ने इतना प्यार और इतना दुलार दिया कि आज चार पीढ़ियां नहीं, पांचवीं पीढ़ी भी संगीत देने के लिए मतलब उत्साहित है।
1: जी, जी।
0: और बहुत बड़ी बात होती है कि 1935 से लेकर 2026 तक अगर किसी का परिवार फिल्म लाइन में सक्रिय है तो वो सिर्फ सेन परिवार है
1: जी,
0: जो जमाल सेन जी से लेकर समर तक
1: जी।
0: मैं सेन परिवार का एक अलग योगदान रहा है, वो मैं अलग इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ संगीत ही नहीं रहा। जैसे मैं बेसिकली डांस मास्टर रहा हूं, फोक और कथक का।
1: बिल्कुल।
0: मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी फोक और कथक के डांस मास्टर रहे, फिर मेरे बड़े भाई साहब मदन सेन जी जो भी डांस मास्टर सिंगर एज ए कंपोजर रहे, और उनके बाद में तान सेन जी वो सितार वगैरह बजाते थे, फिर इंदर सेन जी जो थे वो मैंडोलिन वगैरह बजाते थे, उनसे छोटे निहाल सेन वो सितार मैंडोलिन और डांस वगैरह वो भी करते थे, छठा मैं छठी मतलब छठा मैं था दिलीप सेन, तो करते करते निकला। और एक उम्मीद होती है इंसान को कि कुछ बड़ा बनना है, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो संगीतकार बन गए।
1: बिल्कुल, और एक बहुत बड़े और सफल संगीतकार, जाने माने संगीतकार के रूप में आप हमेशा रहे। तो आपका घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
0: जी, जी।
1: आपके परिवार का संगीत सफर जो है लगभग चार या छह पीढ़ियों से, अब तो कहीं छठी पीढ़ी से चला आ रहा है, और इस संगीत परंपरा को आधुनिक रूप देने में आपके पिता जमाल सेन साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप अपने पिता के बारे में थोड़ा और बताइए, कहाँ से
0: उन्होंने अपने कैरियर को शुरुआत की? कलकत्ता रेडियो से। वहाँ पखावज और जलतरंग बजाते थे, और कलकत्ता में उन्होंने टैगोर साहब के साथ, टैगोर दा के यहाँ
1: अच्छा
0: शांति निकेतन में कुछ साल एज ए क्लासिकल संगीत टीचर के हिसाब से काम भी किया।
1: मतलब टैगोर साहब मतलब
0: रविन्द्रनाथ टैगोर जी के यहाँ शांति निकेतन में
1: अच्छा
0: कुछ साल रहे, और वहाँ अपना हिंदी शास्त्रीय संगीत जो होता है, क्योंकि उनका तो रविन्द्र संगीत होता है, उनके साथ हमारा जो संगीत शास्त्र है तो वो पिताजी सिखाते थे वहाँ कुछ साल। बाद में 1923-24-25 में वो चले गए लाहौर, वहां पे फिर पंचोली स्टूडियो जो था जिसमें गुलाम हैदर साहब के साथ एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, और 1935 में वो मुंबई आए। अब मुंबई आने के बाद में उन्होंने एज ए म्यूजिशियन तो काम किया ही किया गुलाम हैदर साहब के साथ में, कुछ फिल्मों में एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उन्होंने काम किया, खजांची मुनीम जी वगैरह में। क्योंकि मेरे पिताजी का एक पहनावा होता था, वो कान के अंदर लॉन्ग रखते थे
1: जी।
0: उस जमाने में डायमंड सस्ता ही था, तो डायमंड के लॉन्ग रखते थे, बड़ी बड़ी मुछें होती थी, और धोती कुर्ता पहनते थे बंगाली स्टाइल का
1: जी, जी।
0: तो एक उनका एक अलग व्यक्तित्व होता था, तो उस हिसाब से उनको काम भी मिलता गया। सुजानगढ़ के रहने वाले हम लोग राजस्थान में, और हमारे यहाँ से और भी बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े कलाकार का नाम मैं लेना चाहूंगा जिसमें मुझे फक्र होता है, हमारे खेमचंद प्रकाश जी।
1: खेमचंद प्रकाश
0: वो भी हमारे ही गांव से थे, सुजानगढ़ से
1: जी।
0: और एक हमारे कवि बहुत बड़े कवि हुए हैं, कन्हैयालाल सेठिया जी।
1: बिल्कुल।
0: वो भी मतलब हमारी धरोहर है ये राजस्थान की।
1: और वही आपके सुजानगढ़ के पास चुरू से थोड़ा पास बीकानेर शहर से जो है पंडित भरत व्यास,
0: भरत व्यास जी है, गुलाम मोहम्मद जी,
1: गुलाम मोहम्मद साहब।
0: और भी आज मैं कहते हुए मुझे फक्र होगा और मुझे अभिमान भी होता है इस बात पे कि अभी तक जितने भी रिदमिस्ट हुए हैं, आप शुरू से लेके अब तक देखेंगे तो सारे राजस्थान से ही हुए हैं। और एक बात और बता दूं मैं, डांस मास्टरों में भी हीरालाल सोनला जी, वो भी सुजानगढ़ से ही थे, जिनका डंका बजता था, जिनके सरोज जी, चिन्नी प्रकाश जी, तरुण जी, कमल मास्टर जी, ये सारे हमारे एक परिवार की तरह हम लोगों ने काम किया है। तो हम लोगों को मतलब संगीत के साथ साथ डांस का भी अनुभव रहा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि दुनिया में अगर कोई सच्ची चीज है आज, अगर सुकून वाली, तो वो सिर्फ संगीत ही है।
1: जी, जी।
0: जिसके जीवन में संगीत है उसके पास सबसे बड़ी दौलत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल सही। तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल, सुनिए।

0: आपने अपने भाई से शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्र जैसे कि तबला आदि की विधिवत शिक्षा ली है और आप एक प्रशिक्षित नर्तक भी रहे हैं।
1: जी हाँ, कथक।
0: तो कथक के आप संगीत रहे कलाकार, तो कथक की दुनिया से, नर्तक की दुनिया से आप संगीतकार के रूप में कैसे इधर आ गए?
1: देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि संगीत जो शब्द बना है ये तीन चीजों से बनता है, गायन, वादन, नृत्य।
0: जी।
1: और गायन, वादन और नृत्य का अनुभव होना, अब तीन चीजों को मिलाने से बनता है संगीत, और संगीतकार इन तीन चीजों को लेके चलना। तो मेरी ये सोच है या मेरी ये समझ है, मैं अपने आप से कहूंगा कि एक संगीतकार बनने के लिए उसको इन चीजों का अनुभव होना जरूरी है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं बेसिकली डांस मास्टर भी रहा और मैं डांस करता भी था, किया भी है। मैंने गोविंदा जी के साथ एक फिल्म मेरी आई थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें मैंने गोविंदा जी के साथ काम किया, जबकि गोविंदा जी स्टार हैं और सुपरस्टार के अलावा उनके सामने डांस करना इतना मामूली बात नहीं थी। फिर भी सरोज जी ने, उन्होंने निभाया और वो गाना मेरा काफी लोगों को पसंद आया, आज भी लोग देखते हैं। तो नृत्य की एक रहा और उससे मुझे कंपोजिशन करने में बहुत मतलब आसानी रही, क्योंकि देखिए जब मैं कोई गाना कंपोज करता था, मैं और समीर जी जब बैठते थे, क्योंकि समीर जी भी कथक डांस सीखे हुए हैं।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने भी बाकायदा गणेश जी हमारे हुए हैं, गणेश मास्टर जी से उन्होंने डांस की तालीम ली, क्योंकि अब हम भले ही हमारे भाई से, भाई साहब से हमने सीखा, मगर जब तक बाहर का कोई गुरु आप अगर अपना नहीं लेते हैं जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होती, क्योंकि घर वाला ही होता है वो, और बाहर वाला जब आता है तो वो एक गुरु की नजर से आता है।
0: जी।
1: तो हम लोगों ने वैसे तालीम ली। और उसके अलावा मैं बता दूं कि आप अगर हमारे कुछ गाने देखेंगे तो कोरस प्रधान गाना होता है। कोरस आपको जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं अभी तक, शायद मुझे नहीं लगता कि किसी संगीतकार ने किया हो। जैसे कि मिसाल पे, जैसे मेरा एक गाना जो हिट हुआ था, पहला गाना हम लोगों का जैसे चला, उससे पहले जुल्म की हुकूमत आ गई थी, उसमें भी जैसे जो हिट हुआ था, जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, ताक दिना के दिने दिन दिना दिने ताक, अब ये दिन ताक दिना दिने गाने का पार्ट ही है। अब जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, टनारंग टनारंग टन टाऊ, ऐसे भी कर सकते थे, मगर ताक दिना दिन आने से उसके एक अंदर एक ब्लाइंड हो गया। ऐसे ही एक गाना हमारा और चला था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले ओले ओले, तो इसमें ओले ओले एक पंचलाइन बनी। फिर हम दो प्रेमी छत के ऊपर, गली गली में शोर शोर शोर, अर अर ओरे, तो इस तरीके से जो कोरस पार्ट होता है हम लोगों का, ये एक गाने की शक्ल में होता है। ये हमारी दिग्गज जितने भी बड़े जो गुणीजन जिनको मैं स्कूल मानता हूँ, मेरी नजर में जैसे नौशाद साहब, खयाम साहब, मदन मोहन जी, शंकर जय किशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण

0: जी, आनंद जी, खेमचंद प्रकाश जी, मेरे पिताजी, या जयदेव जी, मदन मोहन जी, श्री रामचंद्र जी, बसंत देसाई जी, अपना ये जयदेव जी, सलील चौधरी जी, मैं इनको स्कूल मानता हूँ, क्योंकि ये स्कूल इसलिए मानता हूँ, खयाम साहब, इन्होंने जो काम किया है, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन जी, इनका काम देखेंगे तो एक एक लाइब्रेरी नजर आएगी आपको। जब आप लक्ष्मीकांत जी की तरफ जाते हैं तो वो एक अलग स्कूल है, शंकर जय किशन जी एक अलग स्कूल है, नौशाद साहब एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक अलग स्कूल है, ओपी नैयर साहब एक अलग स्कूल है, कल्याण जी अलग स्कूल है, एस डी बर्मन जी एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक, तो ये मेरे लिए एक स्कूल है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती थी, जब हम संगीतकार बने तो संगीतकार बनने के साथ साथ हमने इनको भी फॉलो किया, इनको भी सुना। मेरा ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग ये सुन रहे हैं और जिनको फिल्म लाइन में आके अगर संगीतकार बनना है तो वो बनने से पहले अपने गुणीजनों को सुनो कि हमारे पहले क्या म्यूजिक दिया लोगों ने। देखिए आज का साउंड जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, क्योंकि टेक्नो साउंड भी जरूरी है, क्योंकि समय समय पर संगीत बदलता है, वो अपना चोला चेंज करता है, मगर मेलोडी जो है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी रागे हैं, जो हमारा फोक है, जो हमारा कल्चर है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो आजकल संगीत के अंदर नहीं मिलता आप लोगों को। तो हम लोगों ने जो मेरी 90 के दशक तक हम लोगों ने जितनों ने भी काम किया, वो राइटिंग वाइज, कंपोजिशन वाइज, मेलोडी वाइज, हम लोगों ने वो चीज छोड़ी नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर हमको कोई सपोर्ट मिला 90 के दशक में, तो मैं इसकी सारी क्रेडिट, बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी जगह है, चाहे वो यशराज हो, गुड्डू धनवा जी हो, कुकू कोहली जी हो, दीपक सरीन जी हो, नरेश मल्होत्रा जी हो, के रविशंकर जी हो, राहुल गुप्ता जी हो, और भी कई लोग हैं जी, मगर इनमें एक शख्सियत ऐसी थी जिनका नाम है गुलशन कुमार जी।
1: जी,
0: गुलशन कुमार जी के आने से म्यूजिक में एक अलग
1: क्रांति
0: आई और एक ऐसा बहाव आया कि जिस वक्त आप समझ लीजिए कि 90 के दशक के हम जो म्यूजिक डायरेक्टर थे या हम लोगों ने जो काम किया वो आज भी सुना जाता है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे कि जब तक हम लोगों ने काम किया तो कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा को और हमारे कल्चर को हम लोग संभाल के रख सके।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिलीप सेन साहब, जैसा कि बात चल रही थी कि आपका जो घराना है शास्त्रीय संगीत का घराना है और आप लोगों ने विधिवत शिक्षा ली एक डांसर के रूप में और संगीत के रूप में, पहली फिल्म आपको कैसे मिली जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और किस तरह से 90 के दौर में अपना पहला ब्रेक पाने का जो अनुभव था वो कैसा था, किस तरह से
0: फिल्म? मैं बता दूं आपको, जब डांस मास्टर था तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: डांस मास्टर 70 के दशक में क्या था कि एक पैसा, दो पैसा, तीन पैसा चलता था।
1: हाँ।
0: और बसों की टिकट होती थी 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा अंधेरी अगर आना हो तो। हाँ, बोरीवली से। तो हम लोग क्या करते थे कि डांस मास्टर के नाते कि यार ये 5 पैसा या 10 पैसा बचाना है, तो हम 2 स्टॉप पैदल चल लेते थे या कभी 3 स्टॉप पैदल चल लेते थे कि यार ये 10 पैसा 5 पैसा बच जाए। तो वो सब समय देखा हुआ था। तो जहन में एक, जब मैं सुजानगढ़ से मुंबई आया
1: जी,
0: तो फिल्मों में एक्टर बनने आया था, तो शक्ल तो हीरो जैसी थी नहीं कि हीरो बन जाऊं, और इतने कोई पढ़े लिखे भी हम नहीं थे कि हम कोई करेक्टर रोल में या निकल जाए। तो पिताजी ने मुझे दूसरी लाइन में पहले ट्राई किया कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं, बाद में उन्होंने देखा कि ये कहीं नहीं जमेगा, तो मेरे बड़े भाई थे मदन सेन जी, उनके साथ ऐसे मुझे असिस्टेंट के बतौर रखा लिया कि भाई तू भाई के साथ रहे। तो उन्होंने एक स्कूल खोली, तो वो स्कूल खोलना, उसमें जो बच्चे आते थे उनको अटेंड लेना, उनको देखना, तो देखते देखते तीन चार साल में मैं इस लायक हो गया कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं।
1: अच्छा।
0: तो वो जो चीजें थी, तो आगे बढ़ने के लिए एक था कि यार, मतलब उस जमाने में आप यकीन मानिएगा, जैसे 5 रुपया मेरे पास थे, तो मेरे फर्स्ट टाइम मैंने बैंक में खाता खोला तो मेरे एक सहकारी बैंक थी, तो उस बैंक में मैंने 5 रुपये का खाता खोल लिया। अब 5 रुपये के खाते के लिए वो चेक लगता था, फोटो लगती थी कि जब आप चेक लेने जाएंगे या पैसे दो के 2 रुपया या 1 रुपया या 8 आना लेना है,
1: बिल्कुल,
0: तो बैंक में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से फोटो दिखानी पड़ती थी। तो एक बहुत लिमिटेड बजट होता था और बड़ा आदमी बनना था, तो मैं अक्सर, मेरे जो पार्टनर समीर सेन जी हैं, ये प्रकाशन में नंबर 1 है इंडिया के, एक माने हुए प्रकशन हैं, जो कि रिदम में, मतलब अभी भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, चाहे ढोलक, तबला, कोंगो, बोंगो, तुम्बा, ये जो वो प्ले करते

0: अभी मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी में कोई ऐसा म्यूजिशियन हो
1: जी।
0: वो इसलिए नहीं कि मेरा भतीजा है,
1: नहीं नहीं, जो
0: सच्चाई जो उनकी अपनी मेहनत थी, लगन थी, बड़े भाई साहब ने उनको उस तरीके से तैयार किया था, उनको तालमणि टाइटल भी मिला हुआ है। मैं उनसे अक्सर बोलता था कि यार बड़ा आदमी बनना है यार, तो बोले क्या बड़ा आदमी कैसे बनोगे चाचा, तुम डांस मास्टर हो, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या बनना चाहते? मैं बोला यार अपन संगीतकार बन जाए।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल।

तो 80 के दशक में संगीतकार बनना इट इज नॉट जॉब। उसने बोला यार मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही है म्यूजिशियन में, मैं दिन में दो दो तीन तीन टेक बजा रहा हूं, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। उस वक्त 150, 200, 300

0: तो वो एक फिल्म बना रहे थे प्यारी भाभी, तो एक उम्मीद थी कि यार ये फिल्मी प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं पहली मरतबा उनके यहाँ लग गया कि चलो यार इन्हीं के यहाँ रहता हूँ, थोड़ा माहौल भी मिलता था। वहाँ असद भोपाली साहब आते थे।
1: अच्छा, गीतकार।
0: गीतकार असद भोपाली साहब जब मुझे देखते थे, वो कोई लाइन लिखते थे तो मैं उस पर कोई ऐसी डमी धुन बना देता था, तो मुझे हर बार शाम के वक्त जो बैठक होती थी इन लोगों की, बड़े लोगों की, हम तो खैर बच्चे ही थे उस वक्त, तो उस बैठक में मेरे को मौका मिलता था उनको धुन बना के सुनाने का। कभी कभी वो दिन में मुझे बोलते थे, यार तेरे में जम्स है, तू म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, तेरे पिताजी वाली बातें हैं तेरे में, क्योंकि मेरे वालिद साहब के काफी नजदीक में थे वो
1: जी।
0: तो मैं असद वालिद साहब को बोला, मैं चाचा कौन मुझे कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा। उन्होंने एक दिन एक सीटिंग रख दी, बोले काम कर, दो दिन बाद मैं तेरे को एक जगह लेके जाऊंगा। मुझे बताया नहीं कहां ले जाएंगे। मैंने जाके समीर जी को बोला, समीर सेन जी को, मैं बोला बेटा ऐसा ऐसा है, समीरे यार एक जगह सीटिंग है, अपने को फिल्म मिल सकती है। तो वो हंसने लगा, भाई साहब हंसने लगे, बोला तुमको कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा यार, कौन इतना ऐसा बड़ा आदमी आ गया जो तुमको लेगा। मैं बोला जाके आने में क्या बुराई है।
1: हाँ।
0: बोले जाओ। तो हम गए साहब, हम लोगों को सोचा कि शायद ये तो म्यूजिशियन है, कोई इनका बड़ा आदमी आएगा तो सुनाएगा। तो हम लोग 10-11 बजे गए, तो 3-4 बजे तक कोई हमारी से सुनवाई नहीं। तो असद भोपाली साहब ने जगदीप साहब को बोला, यार जगदीप तू आ जा गाने सुन ले। तो बोले इनका कौन सुनाने वाला कौन है इनमें। बोले यही बच्चे। बोले ये बच्चे सुनाएंगे। ये तो किसी एंगल से ही लग रही थे मुझे, डॉक्टर वाकई में नहीं लग रहे थे। अब इस एंगल में तो कोई शक्ल तो थी नहीं हमारी,
1: बिल्कुल,
0: और दुबले पतले से थे हम। तो खैर उन्होंने जब सुना, सुनने के बाद में आप यकीन मानिए, हम लोगों ने 4-4:30 बजे शुरू किया, रात के 12-1 बज गए। 12-1 बजे के बाद में उन्होंने कहा कि भाई देखो गाने तो तुम्हारे काफी अच्छे लगे हमको, हम खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि इसमें से कौन सा ओके करें कौन सा नहीं करें, आप सुबह आ जाइए, आप हमारी फिल्म कर रहे हैं। तो मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हम सुबह पहुंचे, उस वक्त जगदीप साहब एक फिल्म कर रहे थे मोहब्बत, जिसमें अनिल कपूर, विजेता पंडित और जगदीप साहब थे। तो वो शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैं घर पहुंचा, बोला भैया तुम लेट हो गए हो, मैं तो निकल रहा हूं, बच्चे लोग हैं तुम अंदर चले जाओ। तो हम अंदर गए तो एक छोटा सा लेटर था, वो साइन करवाया, हमको एक छोटा सा लिफाफा दिया। मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं बोला भाई पिक्चर मिल गई। तो आप यकीन मानिए कि वो खुशी खुशी हम खुश हो गए।
1: वो फिल्म सुरमा भोपाली,
0: सुरमा भोपाली। मगर इस बात के लिए मैं एक चीज के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा जगदीप साहब को। उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि एक सिचुएशन पे एक ही मुखड़े की कितनी धुन बन सकती है। तो ये स्टाइल उन्होंने सिखाया मुझे, तो मैं उनके यहां सीखता गया। उन्हीं के यहां मैंने एडिटिंग सीखी, उन्हीं के यहां मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सीखा, फोली क्या होता है, जो इफेक्ट वगैरह होते हैं फिल्म के, यानी टोटल मेकिंग जो होती है फिल्म की, वो 5 साल में मैंने जगदीप साहब के यहां सीखी, जो मुझे बाद में इतना बेनिफिट की वो चीज कि आज जब मुझे मतलब जब मैं सक्सेस हुआ, तो मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं जगदीप साहब का भी हाथ है।
1: जी,
0: जैसे गुलशन जी को हम मानते हैं,
1: मगर
0: कंपोजिशन बनाने में जगदीप साहब का हाथ रहा। तो आज अगर एक सिचुएशन आती है, तो जैसे एक एग्जांपल अगर आप बुराना माने तो सुनाना चाहूंगा, हमने ये दिल्ली के सारे गाने कंपोज कर लिए थे। तो यश जी ने कहा कि मुझे तानसेन बोलते थे, बोले तानसेन मेरा ये जो लड़का है ये करोड़पति घर का है मगर प्ले बॉय है। तो प्ले बॉय मतलब मैंने वो क्या होता है, बोले बिगड़ा हुआ। तो मैंने समीर राइटर जो हमारे अनजान है, मैं बोला यार बिगड़ा हुआ लड़का करोड़पति का क्या अलग होता है, या वो झोंपड़पट्टी का अलग होता है क्या, ये बिगड़ा हुआ क्या कर। बोला ये भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला गरीब वाला, बोला ये झोंपड़पट्टी वाला भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला यार धुन क्या बनेगी, तो हमने इसकी जगह धुन बनाई एक, पहले प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कु आई लव यू तू ना धुन धुन तू ना धुन तुम, फिर उसके बाद में एक धुन इसी सिचुएशन पे बनाई, वो ये दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो, फिर इसी सिचुएशन पे तीसरा गाना हमने बनाया अपना, ये जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मगर हम अक्सर ये दो धुनें यश जी को सुनाते थे, ये गाना सुनाते ही नहीं थे। तो इसका ये रहा कि ये हमको 2-3 महीने हो गए, अब ये गाना बाकी गाने सब कंपोज हो गए। यश जी का क्या सिस्टम था कि सारे गाने कंपोज करवा लेते थे, और सारे गानों की राइटिंग और धुन और म्यूजिक तक फाइनल करके फिर रिकॉर्डिंग में जाते थे। ऐसे ही हमने आईना की थी, तो सेकंड पिक्चर के लिए भी सारे गाने कंपोज हो चुके थे, खाली ये एक बचा था। तो ये हम सुनाते नहीं थे।

0: क्योंकि इसका जो वर्ड था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, मैं बोला कहीं यश जी ये नहीं पूछ ले यार कि ओले ओले क्या है, तो फिर क्या जवाब दूंगा,
1: जैसे इलू इलू क्या है ये प्रश्न उठा था।
0: नहीं ओले तो देखिए ओले मराठी में ओले बोलते हैं गीलेपन को।
1: अच्छा,
0: और वैसे ओले जो गिरते हैं।
1: इस पर मैं बात करूंगी आपसे क्योंकि ये गीत कैसे रचा गया था। पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं, आप बताइए और थोड़ा गा के सुनाइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप।
0: मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं इनको, अपना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को।
1: अच्छा,
0: इनका एक गाना मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो इसलिए पसंद है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, ये जो अंदाज था उनका ये कमाल था।
1: तो ये गीत सुन लें
0: जी।
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: चल रही थी दिलीप सेन साहब की गाना कैसे बनते हैं। आपने कहा कि आशा भोसले की आवाज में आपने पहला गीत ये रिकॉर्ड किया था जिसका जिक्र, तो उनके साथ आशा ताई के साथ काम करने का ये जो नया नया अनुभव था जब आप बिल्कुल नए थे, कैसा रहा?
1: मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि मंगेशकर परिवार जो है, मेरे परिवार से वाबस्ता तो था ही, क्योंकि पिताजी को जानते थे, फिर बड़े भाई साहब को जानते थे
0: जी।
1: तो वो एक रिस्पेक्ट, वो प्यार तो था उनके दिल में। मगर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तो जब उनके साथ बैठने से पता चला। पर आशा जी ने जब ये गाना सुना तो नुशा साहब आए हुए थे, तो गाने सुनने के बाद में समीर उनके साथ काम करता था पहले, अब मुझे देख के खुश भी हुई कि ये डरा डरा साहब बोल डर नहीं, अच्छा कर रहा है, तुम बहुत अच्छा करता है। नुशा साहब को बोला कि नुशा साहब ये गाना उल्टा लग रहा है, तो फिर समीर जी को बुलाया उसने, आशा जी बोला समीर इधर आ, ये गाना क्रॉस से आता है तो उल्टा हो जाता है। समीर ने जब देखा बादल सताए हम लोग गाना लगा, तो मेरे को समीर बोलता है यार गाना तो उल्टा हो गया। तो मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी थे मेरे साथ, तो भाई साहब बोले भाई तू गाना बनाया, तेरे को बनाते वक्त ध्यान नहीं था, अब इसको सम में कैसे लाएगा। मैं बोला भाई साहब ये 8 मात्रा का नहीं है, 4 मात्रा का है। बोले 4 मात्रा कैसे? मैं बोला लेजिम ठेका है, दिन ताक दे दिन आग दिन ताक दिन ताक दिन ताक दिन, तो 4 बीट का गाना है।
0: अच्छा,
1: ये जो लेजिम एक आते हैं हमारे मराठी में, आपने देखा होगा बच्चों को सिखाया जाता है, तो मैं बोला उस ठेके पे बना हुआ गाना है
0: जी।
1: ये 4 बीट का ही है, तो आप सम 4 बीट में लोगे तो ये परफेक्ट आएगा, आप 8 मात्रा में गिनोगे तो उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से वो रहा। तो आशा जी इस बात को नोट करती रही और उनको लगा, उन्होंने
0: की एक नई बात है,
1: नहीं नई बात के अलावा उन्होंने समीर को बोला कि यार लगता है तेरे चाचा में कुछ बात है। तो ये उन लोगों के आशीर्वाद और दुआ रही। और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक सपना होता है, बाकियों की बात नहीं कहूंगा मैं अपनी करूं, कि जिन्होंने मंगेशकर परिवार के साथ काम किया, जैसे लता जी के साथ आशा जी के साथ काम करना एक ड्रीम होता है, और वो ईश्वर ने यशराज फिल्म में मेरा कम्प्लीट किया कि दोनों बहनों के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया
0: जी,
1: आईना और ये दिल लगे में।
0: जी, तो आप कितने भाग्यशाली रहे दिलीप सेन साहब कि एक शुरुआत में ही आपको यश जैसा बड़ा बैनर मिला यश चोपड़ा जी का, और आईना और ये दिल लगी जैसी फिल्में मिली, आशा जी और लता जी के साथ गाने का
1: मौका मिला
0: बहुत बड़ी बात थी आपके लिए।
1: बहुत बड़ी नहीं, तो ड्रीम
0: मतलब पूरा हो गया इतनी जल्दी, जो उम्मीद भी नहीं होती। तो कैसा लगा होगा, आपकी मनस्थिति क्या रही होगी, और लता जी के साथ काम करने का भी कोई अनुभव हमसे साझा कीजिए।
1: देखिए दीदी के साथ तो पहला तो मैं ये कहूं कि दीदी की एक आदत थी कि वो बहुत सॉफ्ट बोलती थी।
0: अच्छा।
1: बात करने से पहले चश्मे को थोड़ा नाक पे लेती थी।
0: अच्छा।
1: फिर ऊपर करके कैसा बरा ठीक है, इतना सॉफ्ट बोलती थी।
0: जी।
1: तो पहला गाना जब मैंने उनके साथ किया था गोरिया रे गोरिया रे, तो क्योंकि डरा हुआ था तो एकदम खुल के बैठ भी नहीं सकता था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा तक धिनाक दिन दिन तिन ना, उन्होंने वैसे ही गा दिया
0: जी।
1: अच्छा, मुझसे इन लोगों ने कहा था, क्योंकि जब डबिंग हो रही थी तो दीदी अकेली थी जब उनकी डबिंग के वक्त, क्योंकि उस वक्त ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मुझे ये कहा गया था कि बार बार टॉक बैक से इनको बोला नहीं जाता था।
0: अच्छा।
1: दीदी से अगर कुछ बात करनी हो तो आपको कट करके फिर उनके रूम में जहाँ पे सिंगिंग रूम है वहां जाके बोलना पड़ता था। तो मुझसे कहा गया था बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुपचाप बैठे रहो, गाना होने दो। गाना पूरा हो गया तो मैं ऐसे रहा नहीं गया। फिर मैं उठ के गया, दीदी को हाथ वाथ जोड़े, तो दीदी ने मेरी तरफ देखा मुस्कुराते हुए, पूछा कैसा ठीक हो गया? बोला दीदी गाना तो बहुत अच्छा हो गया, मगर एक जगह रह गई। फिर वो जरा क्वेश्चन मार्क से मेरी तरफ देखी, बोले मेरे से जगह रह गई क्या, जगह कैसे रह गई, कोई सुर कम लगा? मैं बोला नहीं नहीं सुर कम नहीं लगा, वो मींड रहेगी। बोले कैसे? बोला आपने गाया सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा ठाक दिन आगे दिन, बोला हाँ ऐसे ही तो गाया है। मैं बोला यहाँ ये एक बार मेरा रह गया, तू कैसे चाहता था?

0: से दिल लगी, सुना उन्होंने मम्मी बोला इस तरीके से। तो गाना ये भी हो गया। मैं बोला दीदी खाना आ रहा गहलोत से। बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है। बोला क्यों, तूने धुन नहीं बनाई? मैं बोला नहीं, आपका एक गाना था ना वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, अच्छा तो हम चलते हैं। तो बोले क्या तूने वो चोरी किया है धुन? मैं बोला नहीं चोरी नहीं की है, मेरा गाना सुन लीजिए आप। वो कैसा है? मैं बोला नाम क्या है प्यारे कमारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है प्यारे कमारा। ये भी सुना उन्होंने, सुनते बोला ठीक है अच्छा है, नया स्टाइल है, गाती हूँ। ये भी गा दिया उन्होंने। तब तक खाने में थोड़ा और लेट
1: टाइम
0: हो रहा
1: लग
0: था।
1: गया। हाँ
0: मैं बोला दीदी अब खाना आने ही वाला है, एक काम कीजिए, एक गाना सिर्फ आप सुन लीजिए, गाएंगे नहीं।
1: हाँ
0: बोला क्यों, तुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है? मैं बोला दीदी बहुत है, ये मेरे दिल के करीब है।
1: जी
0: बोला अच्छा। तो अक्सर मैं क्या करता हूं, जब कोई गाने उस दौर में जब ये ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मैं अपनी वॉइस में गा के रख देता था कि अगर मैं थोड़ा लेट हूं तो सिंगर वो गाना सुन के लिख भी लेता था और धुन भी याद हो जाती थी। तो मैंने मैंने बोला एक रफ गाया है मैंने, सुन लीजिए आप। तो गाना इस तरीके से था, हो तुम पे बस।

0: जब ये अंदाज उन्होंने सुना तो
1: जी
0: दो मिनट तो मेरी तरफ देखी, फिर मुस्कुराई, लाचा लिखा मुझे। लिखने के बाद में उन्होंने दमन सूद साहब से बोला कि सूद देख ले, अगर मेरी वॉइस क्रैक नहीं होती तो एक ट्राई करके देखते हैं। मैं बोला रहने दीजिए दीदी, क्योंकि अब आप भी थक गई होंगी। तीन गांव बोले नहीं ट्राई करते, नहीं हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। अब उन्होंने वन टेक में ही गाना परफेक्ट गा दिया, गाना हो गया। उसके बाद में जब तक खाना आ गया था तो यश जी भी आ गए थे
1: जी।
0: तो यश जी बोला यार मैं तो एक गाने के हिसाब से पेमेंट आया, तुमने तो चारों कर दिए। अरे ये जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ
1: जी
0: कि दीदी ने, लता दीदी ने एक ही स्टूडियो में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का, एक ही फिल्म का, एक ही समय में चार गाने गाए हूँ। ये मेरे लिए बहुत,
1: ये क्रेडिट आपको गया
0: जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात रही। और मैं समझ रहा हूँ शायद दुनिया में ये पहला ऐसा मौका रहा होगा दीदी के लिए
1: जी।

0: खाना खाते खाते मैंने दीदी से पूछा, मैं ये बात आपके रेडियो के माध्यम से पब्लिक तक जो सिंगर बनना चाहते हैं उनको कहना चाहूंगा कि देखिए सिंगर ऐसा ही बड़ा नहीं बनता है
1: जी।
0: सिंगर के कुछ नियम होते हैं जो कि हर आज नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जब दीदी से मैंने ये बात कही कि दीदी आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से हर बार बोलती थी, क्यों, उनकी एक आदत थी, जैसे मैंने गाना गाया गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जाता, फिर बोलती थी एक बार और, ऐसे करके पांच छह बार सुनती थी।
1: अच्छा।

0: मैंने कहा दीदी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप क्या हर न्यूज डायरेक्टर से बोलती थी कि एक बार और एक बार और? तो हंसने लगी, बोले दिलीप मैं गाना तो सुनते ही मुझे याद हो जाता है।
1: अच्छा।
0: मगर मैं गाना बार बार इसलिए सुनती हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर जब गाना बनाता है उस वक्त वो अलग शक्ल में होता है, फिर उस पर वो गाना लिखता है तो वो अलग शक्ल बन जाती है, फिर वो गाना डायरेक्टर तक जाता है तो उसकी और शक्ल अलग हो जाती है, फिर वो प्रोड्यूसर सुनता है तो और शक्ल हो जाती है, फिर म्यूजिशियन के पास आते आते और अलग हो जाता है, और जब सारे म्यूजिशियन मिक्स होकर करते हैं तो वो परफेक्ट एक सॉन्ग बनता है। तो म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर वो पूरा गाना वार्म अप हो जाता है। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर के एक्सप्रेशन नोट करती हूँ कि वो गाते वक्त उसके चेहरे के हाव भाव क्या हो रहे हैं,
1: क्या बात
0: है, और कौन से शब्द पे वो सांस ले रहा है, कौन से शब्द पे उसके चेहरे के क्या हाव भाव चेंज हो रहे हैं, तो मैं वो ऑब्जर्व करके फिर अपनी फील देती हूँ। और ये आज के सिंगर को हमेशा होना चाहिए कि आप जब गाना आते हैं किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का, चाहे वो नया म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे पुराना हो या आपके बराबर ही हम दोस्त भी हो, आप पहले गाने को सुने, उसकी सिचुएशन सुने, प्लस उसके एक्सप्रेशन के अलावा, क्योंकि जो शब्द आप गाओगे वही एक्सप्रेशन देगा आपका हीरो
1: बिल्कुल
0: या हीरोइन
1: बिल्कुल।
0: तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि भाई मैं जिस तरीके से गाऊंगी वही एक्सप्रेशन डांस डायरेक्टर वहां पिक्चराइज करेगा, वही एक्सप्रेशन हीरो हीरोइन देंगे। तो वो अच्छा लोकेशन भी पूछना चाहिए, पिक्चराइजेशन का समय भी पूछना चाहिए, जैसे कि पुराने सिंगर पूछते थे अच्छा कहाँ हो रहा है, नाइट में हो रहा है या डे में हो रहा है, आउटडोर हो रहा है कि इंडोर हो रहा है, नदी के किनारे हो रहा है कि गार्डन में हो रहा है, कि बर्फीली पहाड़ियों में हो रहा है, कि खंडर में हो रहा है, कि डेजर्ट में हो रहा है, कि रेतों में। तो ये जो सिचुएशन है पहले पूछते थे,
1: मतलब इतनी गहराई में जाना होता है कलाकार को, एक सिंगर को, एक संगीतकार को,
0: जिस तरीके से संगीतकार जाता है, जैसे मैं जाता
1: हूँ, गीतकार भी जाता होगा निश्चित रूप से।
0: नहीं, डेफिनेटली हमको सबको जाना पड़ता है उसमें, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि जो कंपोज हम करेंगे, जो शब्द हम कंपोज करेंगे, जो भाव सिंगर देगा गाने में, जैसे उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब गाना गवाते हैं सिंगर से तो गाना तो उसी वक्त याद हो जाता है, मगर उसको डबिंग करते वक्त 2-3 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन होते हैं शब्द के, हम वो उससे करवाते हैं। जैसे कि एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, जैसे हरिहरन जी, चित्रा जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए सिंगर हैं, दोनों क्लासिकल के माहिर हैं।
1: चित्रा जी
0: मद्रास के, साउथ की,
1: चित्रा के एस,
0: हम चित्रा जी बोलते हैं उनको। उनका जब मैंने पहली फिल्म उनके साथ की थी जिद्दी, तो मेरा गाना था हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए।

0: से है
1: क्या बात है, बहुत
0: तो ये गाना उन्होंने दो घंटे में गा दिया।
1: जी जी।
0: जब सैम दोनों सिंगर मेरी फिल्म आई अफलातून, जिद्दी में भी डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, बबुलू पचीसिया जी प्रोड्यूसर थे, अफलातून के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, तो उसका एक गाना था

0: दिल।
1: बहुत गहरा गाना
0: अब
1: था
0: ये गाने में उनको 4 घंटा लग गए। अब होता क्या है कि जब आप किसी बड़े सिंगर के साथ काम करते हैं तो आप बार बार कट नहीं कर सकते
1: जी,
0: तो आपको क्या है कि उनके रिस्पेक्ट को भी रखना है, उनकी जो ओहदा है, जो उनकी पोस्ट है
1: उसको भी रखना है,
0: उसको भी कायम रखना है, और हमें हमारी जो चीज चाहिए वो भी निकलवानी है। तो उसके लिए क्या करता था मैं, आधा घंटा 15 मिनट किया, फिर मैं ब्रेक ले लेता था। फिर उन लोग पूछते थे क्या हुआ, मैं बोला नहीं मैं एक मिनट थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फिर जाता था उनके कैबिन में, हॉल में जाके फिर बैठते थे, आइए जरा 2 मिनट बैठते हैं, क्या हुआ सर कुछ नहीं, मैं बोला बहुत बढ़िया हो रहा है
1: जी,
0: उनको ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या कमी हो रही है। फिर बैठ के बातचीत करते थे, फिर बातों बातों में बोला जैसे ये जगह ना, पलकों के साए में सो जा तू, फिर उधर थोड़ी सी बातें मैं अंदाजे से ही बता देता, ऐसा नहीं बताता था कि आपसे नहीं निकल रहा है। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं अपन लोग, हाँ हाँ सर कर सकते हैं, मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं, अंजा तुझे मैं छुपा लूं, ओ तो ये मुर्गी रिमाइंड ये भी आ सकती है शायद, हाँ आ सकती है सर, तो जैसे बच्चों को कैसे हम लुबराते हैं
1: साइकोलॉजिकल,
0: तो वैसे उनके

0: क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ या इतने बड़े सिंगर को आप बार बार अगर ऐसे करेंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए, प्लस कहीं फंस ना जाए। अच्छा, सिंगर अक्सर ऐसा फंस जाते हैं, वो लूप अगर लग गया उनको फिर अटक गए तो अटक गए, तो बहुत ही बच्चों की तरह ट्रीट करके उनके साथ वो निकलवा के, क्योंकि वो इस काबिल थे और काबिल हैं।
1: चलिए गीत सुनते हैं, पहले आपकी पसंद का
0: आप वो गाना लगाइए जिस गाने को दीदी ने बड़े प्यार से गाया है
1: जी।

आप सुन रहे थे संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पा

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम FM 103 पर। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं। अब युवा श्रोता सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी युवा दोस्तों को आपके अपने युवा दोस्त रोहित कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम आ गए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर युवावाणी, जिसमें होगी हमारी आज की बात, कुछ महत्वपूर्ण रोचक जानकारियां और साथ ही होगा मनोरंजन कुछ फिल्मी गीतों के साथ। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर देश के भविष्य से जुड़ा है, युवा राष्ट्र की प्रगति का आधार स्तंभ। दोस्तों किसी भी राष्ट्र की ताकत उसकी युवा शक्ति होती है। युवा केवल उम्र का नाम नहीं बल्कि जोश, ऊर्जा, नवाचार और परिवर्तन की सोच का प्रतीक है। जिस देश के युवा जागरूक, शिक्षित, कर्मठ होते हैं वह देश विकास की नई ऊंचाइयों को छूता है। दोस्तों आज का युवा केवल सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें साकार करने का साहस भी रखता है। चाहे विज्ञान हो, तकनीक हो, खेल हो, कला या सामाजिक सेवा, हर क्षेत्र में युवाओं ने अपनी प्रतिभा बनाई है। दोस्तों भारत जैसे युवा देश में जहां जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा है, वहां यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। शिक्षा, कौशल विकास और सकारात्मक सोच के माध्यम से युवा न केवल अपना भविष्य संवार सकते हैं बल्कि देश को भी सशक्त बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों चुनौतियां भी कम नहीं है। बेरोजगारी, नशा, डिजिटल भ्रम और सामाजिक दबाव, ऐसे में जरूरी है कि युवा सही मार्गदर्शन अपनाए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और अपने अंदर की क्षमता को पहचानें। साथियों युवा अगर ठान ले तो बदलाव निश्चित है। इतिहास गवाह है कि हर क्रांति, हर बड़ा परिवर्तन युवाओं के कंधों पर ही हुआ है। तो दोस्तों आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने देश के विकास में अपना योगदान देंगे ईमानदारी, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ। दोस्तों अंत में बस इतना ही कहूंगा, युवा ही राष्ट्र की नींव है और मजबूत नींव ही मजबूत भविष्य का निर्माण करती है। दोस्तों चर्चाएं तो हमारी जारी रहेगी, आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
1: तेरी मेरी कल आए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
2: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड की रंग बिरंगी संस्कृति की ओर, जहां हर धुन में परंपरा बसती है और हर कदम में इतिहास झलकता है। साथियों हमारा आज का विषय है बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य। दोस्तों बुंदेलखंड अपनी वीरता, संस्कृति और लोक परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोक नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं, उत्सवों और जीवन शैली का आईना है। राय नृत्य यह बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इससे नृत्यांगना की तेज गति और भाव भंगिमाएं दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। ढोलक और नगाड़े की ताल पर किया जाने वाला यह नृत्य विशेष रूप से मेलों और उत्सवों में प्रस्तुत किया जाता है। दिवाली नृत्य दोस्तों दीपावली के समय किया जाने वाला यह नृत्य वीरता और ऊर्जा का प्रतीक है। इसमें पुरुष लाठी और पारंपरिक वेशभूषा के नृत्य करते हैं जो एकता और साहस का संदेश देते हैं। बधाई नृत्य यह नृत्य खुशी के अवसरों जैसे विवाह, जन्म या अन्य शुभ कार्यों में किया जाता है। इसमें गाने और नृत्य के माध्यम से खुशियां व्यक्त की जाती हैं। सेहरा नृत्य यह फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य है जो किसानों की खुशी और प्रकृति के प्रति आभार को दर्शाता है। दोस्तों ये लोक नृत्य केवल कला नहीं बल्कि हमारी जड़ों से जुड़ने का माध्यम है। ये हमें हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान से जोड़ते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इन लोक कलाओं को संजोए और आगे बढ़ाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनकी सुंदरता का आनंद ले सकें। दोस्तों आइए सुनते हैं भेंट वार्ता, नृत्य कला का महत्व। वार्ताकार हैं श्री कमलेश सोनी जी से शिवानी वर्मा की बातचीत।
3: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी झांसी से मैं शिवानी वर्मा। श्रोताओं नृत्य वो कला है जो भाव को शब्दों के बिना व्यक्त करती है। नृत्य केवल एक शारीरिक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से उपजी एक अनुभूति है। और जब बात भारतीय शास्त्रीय नृत्य की हो तो कथक का नाम स्वाभाविक रूप से लिया जाता है। कथक जिसमें कथा, ताल, भाव और लय का अद्भुत समन्वय है। आज हमारे साथ आकाशवाणी झांसी के स्टूडियो में उपस्थित हैं ऐसे ही एक वरिष्ठ सुविख्यात कलाकार जिन्हें कई सारी उपाधियों से सम्मानित किया गया है और नृत्य निर्देशक की भी कई जगह भूमिका निभाई है। राजकीय विद्यालय में संगीत शिक्षक भी रहे हैं। 73 वर्षीय श्री कमलेश सोनी जी जो कथक नृत्य के एक जीवंत अध्याय है, 6 दशकों से भी अधिक की उनकी साधना आज भी उतनी ही ऊर्जावान, उतनी ही भावपूर्ण है। श्री कमलेश सोनी जी आपका आकाशवाणी झांसी में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद शिवानी जी, आकाशवाणी झांसी परिवार एवं आकाशवाणी झांसी के प्रबुद्ध रसिक श्रोता परिवार को। यदि नृत्य के बारे में कहा जाए तो नृत्य एक मानवीय अभिव्यक्ति है, उसका रसमय प्रदर्शन है। हम मानते हैं कि यह एक सार्वभौम कला है। बालक जैसे ही जन्म लेता है
3: जी।
4: तो हंसना, रोना, अपने हाथ पैर मारना
3: जी।
4: अपने भावाभिव्यक्ति व्यक्त करना उसका प्रयत्न करता है, प्रयास करता है ना। यही सारी कुछ आंतरिक क्रियाएं जो हमारे नृत्य को उत्पन्न करती हैं।
3: अच्छा।

0: से यहीं से प्रारंभ होता है कि शिशु का रुदन करके चारों ओर देखना, कभी मुस्कराना, हाथ पैर चलाना, इन्हीं सबसे नृत्य की प्रेरणा मिलती है, यहीं से नृत्य प्रारंभ होता है। अगर हम देखें तो हमें खुशी के मौके पर झूमना, उछलना, विभिन्न प्रकार की हरकतें करना, ये सब नृत्य के दायरे में ही आ जाता है, है ना। नृत्य वह है क्या कि जितना हम ढूंढते हैं, जितना प्राप्त करते हैं, वही सब नृत्य में आ जाता है। जिन खोजा तिन पाइया, आज हमने नृत्य को जिस रूप में देखा है
1: जी।
0: हाँ, वह शिशु के जन्म से लेकर अब तक की सारी क्रियाएं उसमें समाहित हैं।
1: बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अच्छा गुरुजी, हमारे जो भारतवर्ष में नृत्य की जितनी भी विधाएं हैं, तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य विधाएं हैं जो हमारे भारत में प्रचलित हैं?
0: जी हाँ शिवानी जी, आपने प्रश्न बहुत ही उपयोगी किया, ज्ञानवर्धक है। कहा जाता है, कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे पानी, तो यही नृत्य का है।
1: अच्छा
0: जी हाँ, हम भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, पहनावे के अनुसार, बोलचाल के अनुसार, पर्यावरण वातावरण के अनुसार ही नृत्य को देखते हैं। हमारे भारत में भारत के हर जगह दो प्रकार के नृत्य चलते हैं। पहला नृत्य होगा लोक नृत्य।
1: अच्छा, लोक नृत्य
0: जी
1: जी।
0: तो लोक नृत्य में है क्या कि लोक नृत्य अपने हिसाब से चलता है, मौसम से हिसाब से परिवर्तित होता है। जैसे सावन आया तो हमारे मन में अलग ही उमंग होगी, सावन के गीतों पर हम गीतों पर झूमते हैं, झूला पर झूलते हैं, नृत्य करते हैं। अब ना लीजिए, यदि घर में कोई खुशी का अवसर आया, शिशु का जन्म होता है,
1: शिशु का जन्म होता है, सही बात है,
0: तो उसकी भी बधाइयां गाई जाती हैं तमाम प्रकार से, उसी में हम नृत्य को प्रयोग में लाते हैं। नृत्य क्या है, हमारी एक उमंग है, उसी हिसाब से नृत्य चलते हैं। अब नृत्य हमारे भारतवर्ष में ही ले लीजिए, कई प्रकार के हैं। जैसे पंजाब में चले जाए तो पंजाब में लोक नृत्य होगा भांगड़ा, गिद्दा, टप्पा, इस पर कहते नृत्य चलते हैं,
1: सही सही बात
0: है ना। और हम यदि उत्तर प्रदेश के रहने वाले अपने यहाँ की बात कहें तो उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल का थोड़ा अलग हो जाता है, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की बोली में फर्क आ जाता है, वहाँ के नृत्य भी होते हैं, परंतु इन नृत्यों में कोई बंदिश नहीं होती है। उमंग तो है, आप चाहे जैसे हाथ पैर मारकर, कमर हिलाकर, घूंघट डालकर, या ना बिना घूंघट के ही आप किसी भी नृत्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसी तरह से नृत्य है राई। राई नृत्य हमारे बुंदेलखंड का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर नृत्य है, जिसकी रिदम का तो कुछ कहना ही नहीं कि कितनी भ्रमरियां उसमें दी जाती हैं, लोग अचंभित हो जाते हैं। देश विदेशों में भी इस नृत्य की काफी पूछ है। राय नृत्य, इसमें लड़कियां घाघरे पहन पहनकर और घूंघट, यानी
1: सबसे देखा है, काफी
0: सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नृत्य में घूंघट डाला जाता है, चेहरा नहीं देखा जाता है। तो चेहरा देखने के लिए दर्शक उत्सुक होते हैं, उनके समझ में आता कि हाँ, इस नृत्य में कितनी मर्यादा है, उस मर्यादा को देखते हुए राय नृत्य होता है। इसी तरह से शास्त्रीय नृत्य भी है। शास्त्रीय नृत्य में
1: जैसे हमारे यहाँ जो भरतनाट्यम है, उड़ीसी है, कुचिपुड़ी है, तो हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है, तो ये किस प्रकार से, मतलब इसमें अलग है? बताइए।
0: शास्त्रीय नृत्य में कुछ वर्गीकरण किया जाता है, प्रतिबंधित रहते हैं, बंदिश रहती है उसमें कि आपको इतने हिसाब से इतना नाचना है, इस चीज पर इतना नाचना है, इस तरह से पग संचालन है, इस तरह से कटि संचालन।
1: अच्छा,
0: है
1: मतलब
0: इस तरह से, हाँ,
1: अनुशासन,
0: अनुशासन
1: अनुशासन के साथ,
0: अनुशासन बहुत जरूरी है। यदि अनुशासन नहीं है तो उसमें फूहड़पन आ जाएगा, तो शास्त्रीय नृत्य रहा ही नहीं। अच्छा। उसे अब शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। अब हम साउथ से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए साउथ में आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य, कर्नाटक यानी दक्षिण भारत का

0: भरतनाट्यम ये तो एक पुस्तक के नाम से है जो भरत मुनि आचार्य हुए हैं उन्होंने भरतनाट्यम पुस्तक लिखी है।
1: अच्छा,
0: यह नृत्य पूरा उसी पुस्तक के लिए समर्पित है भरतनाट्यम। इसमें देखिए जो मंदिरों में भित्ति चित्र या मूर्तियां होती हैं उन्हीं के अनुसार इस नृत्य की मुद्राएं बनाई जाती है जो बड़ी आकर्षक होती हैं। इनकी वेशभूषा भी उस तरह से होती है। कथकली नृत्य केरल का हमने बताया आपको, मणिपुरी पूर्वी छोर भारत को जो पूर्वी छोर है असम की ओर वहां है, इसका नाम यानी मणिपुर गांव का नाम था।
1: हाँ।
0: उस ग्राम के नाम से ही यह नृत्य का नाम रखा गया है। ओडिशा ओडिसी नृत्य
1: ओडिसी
0: जी इनकी वेशभूषाएं भी अलग हैं और नृत्य की शैली जो है वाद्य यंत्र भी। अब हम आते हैं थोड़ा सा कथक
1: की ओर।
0: हाँ। जी जो हमारे उत्तर भारत की है तो वैसे सभी जगह प्रचलित है उत्तर भारत की शैली है कथक नृत्य। तो कथक नृत्य में यहाँ पर जो है शास्त्रीय नृत्य हुआ है। इस नृत्य में बिंदुल बिल्कुल बंदिश है बधी हुई कि कितना आपको पग संचालन करना है, किस तरह से आपको बोलना है, किस तरह से चालना है, किस तरह से आप चलेंगे और क्या भाव करेंगे। कहा है ना कि कथा कहे सो कथक कहावे, जिसने कहा कथा कही वही कथा कहला। प्राचीन काल में मंदिरों से जो कथाएं चलती थी उसमें जो मान लीजिए हम किसी बात को कह रहे हैं हमारी बात हमारी भाषा आप नहीं समझ पाते हैं यदि हैं तो हम अपनी भाषा को किस तरह से मुस्कुरा कर समझाएंगे, आवाज़ के साथ हाथ भी चलाएंगे
1: जी, जी,
0: है ना। उस तरह से यदि हम क्रोध है तो क्रोध अलग दिखाते हैं कि ये हमारा क्रोध है, कि क्रोध को भी इस तरह से दिखाएंगे है। हंसी करना है तो किस तरह से दिखाएंगे उससे यानी जो सामने वाला दर्शक है जो हमारी भाषा नहीं आती है वो हमारी भाषा को इंगित सांकेतिक भाषा को इजीली समझ लेता है। यही कथा है कि कथयति सह कथक।
1: तो आपके अनुसार कला संस्कृति जो है वो हमारे समाज को जोड़ती है,
0: है ना।
1: तो कथक जो है वो सामाजिक संदेश देने का अपना माध्यम भी बन सकता है।
0: आपका बहुत सटीक प्रश्न है शिवानी
1: जी।
0: हमारे आज जो नृत्य चल रहे हैं
1: जी,
0: क्योंकि पुरानी बात तो अपनी जगह है, पहले नृत्य चलता था वही भी अच्छा था और आज भी नृत्य अच्छा है, परंतु उसमें समय के अनुसार परिवर्तन जरूर लाना था। उन कलाकारों को धन्यवाद है, युवा कलाकारों को धन्यवाद है कि वो धीमे धीमे परिवर्तन की ओर बढ़ा रहे हैं नृत्य को।
1: तो गुरुजी आपका ये जो अनुभव है सचमुच प्रेरणादायक रहा, क्या आप हमारे श्रोताओं को और भी बताएंगे कि आपकी कथक की जैसे कि आप कथक जी
0: यदि आप हमारे नृत्य को लेते हैं तो हम भी उन्हीं में से रहे हैं
1: जी जी।
0: हमें बचपन से ही शौक था क्योंकि हमारी माँ पूज्य माता जी बहुत अच्छा गाती थी ढोलक बजा पकड़ कर भजन कीर्तन यदि चक्की भी पीस रही है घर में तो स्वर भी गीत गाती थी। हमें उन्हीं के गीत ने आकर्षित किया। उसके बाद ऐसा था कि जगह जगह पर रास मंडलियां आती आती रहती थी तो जरा रास मंडलियों का नृत्य देखा, कुछ नोटिंगियां देखी, हमारा झुकाव उसी तरफ बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे गुरु जी हमको भाग में ले जाते थे कार्यक्रम में, तो वहीं से हमने पुरस्कार जीतना शुरू किया, हमारा हौसला बढ़ता गया, हम आगे बढ़ते गए।
1: गुरु जी आपसे ये कहना चाहेंगे कि थोड़ी सी तालियां कथक के बोल सुनाना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता रेडियो के माध्यम से कथक का एक खूबसूरत एहसास कर सके।
0: जी हाँ चलिए, तो पहले तो आपको एक काव्य में बता दें कवितांगी जो कहलाती है कथक में नृत्यांगी है तालांगी है कवितांगी है, तो एक कवितांगी हम लेते हैं
1: जी। एक छोटा सा एक आपका हाँ, वो हाँ, प्रस्तुति
0: हाँ। ना दीदी ना ना दीदी ना ना दीदी ना ना दीदी ना ना दीदी ना ना दीदी ना ना दीदी ना ना दीदी ता थैया थैया तत् कोमल केश कसे कर सो मुक्ता मणि मांग में डार लिए अखियान में अंगुरन आंगन आज कटाक्षन कोर कमान किए झूलत झुकत झुमक कानन बिच हिरन हर सत हार ये कट कर धनी कोमल कंकन कर बिच बाहन बाजू बंद दिए चूनर चूली चटक पहर।

0: certo mamo ur pan sa ja li so ro sa te sa va sa lo ni pe ja ni ya ja na na na na ja ne ka de ki dar pan san mu ka tha li bhai nij roop sa roop na dekh aghani kachu man me harsha aaye rahi sharma aaye rahi mukh meech lobhani ta thaya thaya tat tat tat na didi na na didi na na didi na na didi na tegda dik dik tei tegda dik dik tei tegda dik dik ta ये है
1: सच में बिना देखे ही बहुत खूबसूरत लगा गुरुजी। ये नृत्य की जो गूंज हमारे दिल में उतर रही है यही है हमारी भारतीय कला की शक्ति। तो गुरुजी अंत में आप हमारे रेडियो श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: नृत्य एक अद्भुत कला है
1: जी,
0: हमारा संयोग है उस नृत्य से इतना लाभ है कि आपका मस्तिष्क मन सब ठीक हो जाता है, स्वस्थ रहता है यदि आप इसे धर्म के भाव से शास्त्र के भाव से नृत्य को समझें और करें तो नृत्य आपको बहुत आगे ले जा सकता है। आपको इससे आर्थिक मदद भी होगी, शारीरिक मदद भी होगी, हर तरह से हृष्ट पुष्ट रहेंगे। यही हमारी ओर से आधुनिक श्रोताओं के लिए, युवाओं के लिए संदेश होगा।
1: आपकी साधना और समर्पण निश्चय ही अनुकरणीय है। धन्यवाद गुरु जी।
0: धन्यवाद।
2: दोस्तों अभी हमने सुनी है भेंट वार्ता नृत्य कला का महत्व, श्री कमलेश सोनी जी से शिवानी वर्मा की बातचीत। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं करियर से। दोस्तों आज का विषय हर छात्र के लिए बेहद खास है, स्मार्ट स्टडी तकनीक और तनाव मुक्त पढ़ाई। दोस्तों पढ़ाई केवल ज्यादा समय देने से नहीं बल्कि सही तरीके से करने से असरदार बनती है, यही है स्मार्ट स्टडी, कम समय में बेहद बेहतर परिणाम पाने की कला। तो आइए जानते हैं कुछ आसान और प्रभावी स्मार्ट स्टडी तकनीकें। साथियों बिना योजना के पढ़ाई करना समय की बर्बादी है। एक टाइम टेबल बनाइए और उसी के अनुसार पढ़ाई कीजिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, बड़ी किताबों को देखकर घबराने की बजाय उन्हें छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें। रिवीजन है सबसे जरूरी। दोस्तों जो पढ़ा है उसे बार बार दोहराना ही असली सफलता की कुंजी है। और एक्टिव लर्निंग अपनाइए, केवल पढ़ाई की बजाय नोट्स भी बनाइए, खुद से सवाल पूछिए, समझने की कोशिश कीजिए, ब्रेक लेना भी है जरूरी। लगातार पढ़ाई से दिमाग थक जाता है, इसलिए बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक जरूर लें। दोस्तों अब बात करते हैं तनाव मुक्त पढ़ाई की। साथियों परीक्षा का तनाव स्वाभाविक है लेकिन इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, इसलिए नियमित नींद लें, हल्का व्यायाम करें, योग करें, मोबाइल व सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें, खुद पर भरोसा रखें, सकारात्मक सोच बनाएं। याद रखिए पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता है। स्मार्ट तरीके से पढ़ें, तनाव को दूर रखें और अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ते रहिए। दोस्तों चर्चा तो हमारी जारी रहेगी, आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
3: सुनिए सुनिए सुनिए 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 तक आकाशवाणी झांसी पर।
4: मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारी और दूसरों की सुरक्षा से जुड़ा है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही जरूरत हमारी सबसे बड़ी लापरवाही बन जाता है। साथियों, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना, चाहे कॉल उठाना हो, लेकिन कई बार यही जरूरत हमारी सबसे बड़ी

मोबाइल का इस्तेमाल करना, चाहे कॉल उठाना हो, लेकिन कई बार यही जरूरत हमारी सबसे बड़ी लापरवाही बन जाती है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना, चाहे कॉल उठाना हो, मैसेज पढ़ना हो या सोशल मीडिया देखना हो, यह एक गंभीर खतरा है। सिर्फ कुछ सेकंड का ध्यान भटकना भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। दोस्तों, जब आप सड़क पर होते हैं तो आपका पूरा ध्यान केवल ड्राइविंग पर होना चाहिए, और मोबाइल का एक नोटिफिकेशन भी आपकी एकाग्रता को तोड़ सकता है। दोस्तों, याद रखिए, आपकी एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, सरकार और यातायात नियम भी साफ कहते हैं कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग करना दंडनीय अपराध है। साथियों, गाड़ी चलाते समय मोबाइल को साइलेंट या दूर रखें और जरूरी कॉल के लिए गाड़ी रोककर ही बात करें, और ड्राइविंग के दौरान टू नॉट डिस्टर्ब मोड का इस्तेमाल करें, और सबसे जरूरी, अपनी और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म रबरा बना दी जोड़ी से, और जिसमें आवाजें हैं, कैलाश खेर की। जिसमें आवाजें हैं सुनिधि चौहान व साथियों की।

इस गीत के साथ ही दोस्तों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो जल्दी से उठा लीजिए पेन और पेपर और नोट कीजिए हमारे कार्यक्रम का पता, ताकि आप अपने पत्र एवं सुझाव हम तक आसानी से पहुंचा सकें। हमारे कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी कानपुर रोड झांसी। हमारा पिन कोड है 28412। इसी के साथ ही अब दीजिए अपने दोस्त रोहित कुमार को कार्यक्रम युववाणी से इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 103 पर। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 5:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी जगत।

0: श्रोता बहनों को सबसे पहले सविता की प्यार भरी नमस्कार। बहनों आज होंगी ढेर सारी बातें और करेंगे मनोरंजन फिल्मी गीतों के साथ। बहनों आज हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी से कई लोगों की जान बच सकती है। आज है डूबने से रोकथाम का विश्व दिवस। यह दिवस हर वर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को डूबने की दुर्घटनाओं से बचाव के बारे में जागरूक करना है, क्योंकि डूबना एक गंभीर दुर्घटना है। इसीलिए कुछ सावधानी अपना कर इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। नदियों, तालाबों, झीलों और कुआं और स्विमिंग पूल के पास विशेष सावधानी रखना जरूरी है। बहनों बच्चों पर हमेशा निगरानी रखें और उन्हें अकेले पानी के पास ना जाने दें और गहरे या तेज बहाव वाले पानी में जाने से बचें। डूबने की घटनाएं केवल सावधानी की कमी से भी होती हैं। यदि हम सतर्क रहेंगे, सुरक्षित नियम का पालन करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे ताकि अनेक अनमोल जीवन बचाए जा सके। आइए बहनों चर्चा और होगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
2: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
1: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं। हर लफ्ज में छुपी है।

0: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
1: तेरी मेरी कलाई होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
2: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: बहनों एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने कार्यक्रम नारी जगत में। बहनों कहते हैं कि हुनर वह दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। बहनों आज हम बात करेंगे ऐसे ही हुनर की जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और रोजगार का रास्ता भी खुलता है। बहनों हमारे अपने हाथों में कई ऐसे उपयोगी और अच्छे हुनर होते हैं जिन्हें हम अच्छे से कर सकते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई ब्यूटी पार्लर का काम पेंटिंग अचार पापड़ आदि अन्य ऐसे कई और भी काम हैं जिन्हें आप अपने हाथों के हुनर से कर सकती हैं। बहनों आज के समय में हाथों का हुनर रोजगार का एक अच्छा साधन है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई कला है तो वह घर बैठे भी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है और अपने बनाए हुए सामान को सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूर दूर तक भेज सकते हैं। हाथों का हुनर केवल रोजगार ही नहीं देता बल्कि व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, परिवार की आय में सहयोग भी होता है, समाज में सम्मान भी मिलता है। इसीलिए बहनों हमें अपने हुनर को पहचाने और उसे निखारें भी और उसका सही उपयोग करें। हमारा हुनर ही सफलता की पहचान है। आइए बहनों और जानकारी के लिए सुनवाते हैं यह भेंट वार्ता। हस्तशिल्प गृह सज्जा स्टार्टअप उद्यमी सुमन अग्रवाल से जिन्होंने अपने हाथों के हुनर को पहचाना और निखारा भी, इनसे बातचीत की है सीमा कुशवाहा ने।
3: श्रोता बहनों नमस्कार। बहनों शादी ब्याह का सीजन हो या फिर त्योहारों की धूम, हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग

0: हर तरह की सुंदर सजावट, कोई लटकन, कोई तोरण, शादी ब्याह में हम देखते हैं सुंदर सुंदर सी, कभी चौकियां हैं तो कभी डलियां हैं, कभी सूपे हैं, ये एक नए आकर्षक रूप में हमें दिखाई देते हैं। और त्योहारों के समय हम बाजार जब जाते हैं तो वहां पर दरवाजे पे लटकाने वाले लटकन हो या बेलकम हो, रंगोली हो या तोरण के डिजाइन हो, ये बहुत प्यारे लगते हैं, जिन्हें हम घर में खरीद कर ले आते हैं और सजाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं बहनों कि ये सामान आखिर बनाता कौन है, इस सामान को बनाने का आइडिया आता कहाँ से है? तो देखिए, हमारे बीच आज एक महिला मौजूद है जिन्होंने अपनी इस सोच को एक नया आकार दिया। हैंडक्राफ्ट का सामान बनाती है और इस काम को उन्होंने एक स्टार्टअप का रूप दिया है। तो हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी ही आत्मनिर्भर महिला, सुमन अग्रवाल जी। तो सुमन अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार बहनों, सुमन अग्रवाल का सब बहनों को नमस्कार।
0: सुमन जी, हमारी बहनों को आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए।
1: जी हाँ, मैं हस्तशिल्प का सामान बनाती हूँ और शादी ब्याह से लेके जो भी छोटे से छोटा अपना त्योहार होता है
0: जी,
1: मैं उसका सारा कुछ सामान घर पे बनाती हूँ, बनवाती हूँ। आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप एक ही छत के नीचे मुझसे मिल सकते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो ये जो सामान आप बनाती हैं, क्या क्या सामान होता है, इस सामान में क्या क्या विशेष है जो आप बनाती हैं?
1: सामान देखिए, मेरे पास चौकी है, तोरण है, हैंगिंग है, बास्केट है, और भी काफी सामान है जो हम लोग बनाते हैं। आजकल आपने देखा होगा जब दुल्हन एंट्री करती है
0: जी,
1: तो एक चादर चल रही है।
0: जी जी जी जी हाँ,
1: वो भी हम लोग घर पे ही तैयार करते हैं, उसमें कई तरह की लटकन लगा के।
0: आजकल तो शादी की वरमालाएं भी बहुत सुंदर।
1: जी
0: हाँ,
1: मैं हम लोग वरमाला भी बनाते हैं, उनमें कुंदन भर करके वरमालाओं में आर्टिफिशियल फ्लावर लेकर, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर हैं जो हम लोग घर में ही बनाते हैं स्टॉकिंग बायर लेकर। तो काफी सामान है जो घर में ही तैयार होता है, अधिकतर सामान मेरा घर में ही बनता है।
0: तो सुमन जी, ये बताइए, आप इस काम को अकेले ही करती हैं या और भी लोग आपका इसमें सहयोग करते हैं?
1: नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी टीम है, काफी महिलाएं हैं जो मेरे साथ काम करती हैं, जो सीखना चाहती हैं, जिनके मन में इच्छा होती है, सभी महिलाएं मेरे साथ काम कर रही हैं, काफी महिलाएं हैं।
0: तो आपके साथ और भी महिलाएं और भी लोग जुड़े हुए हैं इस काम में, आपकी मदद करती
1: हैं।
0: बहुत बढ़िया। तो आप ये बताएं कि इस काम की शुरुआत आपने कब की और इस काम को करने का एक आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया?
1: ये शुरुआत मुझे किए हुए 4 साल हो गए हैं
0: जी।
1: जब कोविड आया तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि बैठे बैठे हम क्यों ना कुछ करें बैठकर, क्योंकि अपने यहाँ फेस्टिवल इतने रहते हैं, हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल तो रहता ही है। तो महिलाएं परेशान होती हैं कि मुझे कुछ सामान नहीं मिल रहा है, हम लोग कहाँ जाएं, घर से निकल नहीं सकते हैं, पर सामान चाहिए है उनको।
0: तो ये कोविड के समय की स्थिति
1: हाँ,
0: बनी हुई थी इस
1: जी हाँ, तब मेरे दिमाग में आया, तब हमने घर का ही सामान जो हमारे यूज नहीं आता था
0: जी जी,
1: उसी से हम लोगों ने बनाना शुरू किया और जो महिलाओं की जरूरत थी उन तक पहुंचाया।
0: जी बहुत अच्छी बात आपने बताई। और कब से कर रही हैं आप इस काम को?
1: इसको करे हुए हमें 4 साल हो गया।
0: 4 साल हो
1: हाँ
0: गए। सुमन जी, इस सामान को जो आप इस्तेमाल में लाती हैं, घर का कुछ सामान होता है, क्या कभी कभी कुछ बाहर का सामान भी हमें लेना पड़ता है, बाहर से भी खरीदना पड़ता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल खरीदना पड़ता है, क्योंकि सब चीज घर में नहीं मिलती है।
0: जी जी,
1: छोटे छोटे सामान है, पोत है, कांच है, ये घर में कहाँ हम लोग रखते हैं।
0: जी जी जी,
1: तो ये हम लोग को बाहर से मंगाना पड़ता है, पोत, कांच, मोती, और भी काफी हैं, छोटे छोटे ब्रोचेज आते हैं, कुंदन आता है, वो हम लोग घर में नहीं मिलता
0: है। तो आप ये सामान कहाँ से मंगवाती हैं?
1: ये हम लोग कलकत्ता है, जयपुर है, इंदौर है, काफी सिटियां हैं जहाँ अलग अलग सामान के लिए अलग अलग जगह फेमस है, तो हम लोगों को वहीं से रॉ मटेरियल लेना पड़ता है।
0: तो फिर इस सामान को मंगवाने में और काम को करने में एक लागत कितनी लगती होगी आपकी? देखिए, मैं इस वरपथ से पूछ रही हूँ कि हमारी जो महिलाएं बैठी हैं, हमारे इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, तो वो भी अगर आपकी बातचीत से प्रेरणा लें और इस काम को करना चाहें तो वो शुरू कर सकें।
1: जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि पहले आप 0% लागत से शुरू कीजिए। आप ये सामान देखिए कि आपके घर में क्या पड़ा है, हम उससे क्या बना सकते हैं और उसको क्या आकार दे सकते हैं नया।
0: जी हाँ, घर में काफी कुछ रहता है, पुराने कपड़े या साड़ियों के चीजों को, कपड़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: हाँ जी, पुरानी गांव में देखा होगा आपने, बास्केट होती है बांस की
0: जी,
1: उसको भी आप गोटा लगाइए,

0: गोटे के फूल लगा दीजिए, उन पे किरण लगा दीजिए, कुछ भी करके आप उसको तैयार कर सकते। पहले की औरतें क्या करती थी, गुड्डा गुड़िया बनाती थी।
1: जी जी बिल्कुल,
0: पुराने कपड़ों से गुड्डा गुड़िया बनाती थी और उनको सजाती,
1: बटन टांग उन्हें सजाने
0: जाती। आजकल वो काफी ट्रेंड में है, आप उसको तैयार कर सकते हैं, उससे रोजगार ले सकते हैं बनाकर।
1: तो आपने कभी कोई ऐसा कोई सामान बनाया है जिसकी बहुत ज्यादा आपकी मांग रही हो या जो आपके लिए यादगार रहा हो?
0: जी हाँ, मेरी एक पीकॉक रंगोली है, वो काफी फेमस रही है। उसको शुरू में करने में हमें काफी मुश्किल आई है क्योंकि उसका आइडिया नहीं था, सिर्फ दिमाग में एक मुझे था कि मुझे ये बनाना है। तो मैंने काफी उसका कपड़ा देखा मार्केट में जाके, फिर उस पे हम लोगों ने स्टोन का वर्क कराया, मार्केट गई, लकड़ी की दुकान पर गई, एमडीएफ की सीट ली, सीट की मैंने कटिंग कराई, पेस्ट करके फिर पीकॉक को डेकोर किया। उसको सजाने के बाद सेंटर पीस तैयार हुआ, उसके बाद मैंने छोटे छोटे पीस तैयार किए उसके दिए लगाने के लिए। मैं गेट पे रखूं तो लोग उसको देखें, उसमें दिए जलते हैं तब वो इतनी खूबसूरत लगती है कि लोग देखते हैं तो पूछते हैं आपने कहाँ से ली है। तो मैं बोलती मैंने ली नहीं है, मैंने खुद ही बनाई है।
1: तो इस तरह से लोगों को आपने अपनी चीज का बनाई हुई पीकॉक पीस का आपने प्रचार प्रसार भी कर दिया।
0: हाँ जी।
1: तो क्या रिस्पांस मिला फिर उसका?
0: उसका बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। मेरे दोस्त रिलेटिव ये तो छोड़िए, इंडिया के अलावा मेरा आउट ऑफ इंडिया में भी इसका इतना डिमांड रहा कि मेरे बच्चों ने इतना काम किया इसके ऊपर, जो महिलाएं थी रात रात उन्होंने काम किया क्योंकि ये मेरे बल्क ऑर्डर।
1: देखिए जैसे आपने कहा कि मेरे बच्चों ने, तो देखिए काम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें परिवार का सहयोग जरूरी होता है।
0: बच्चों का मतलब है मेरी महिलाएं जो मेरे साथ काम करती है, मेरी से कम एज में, तो मैं उन्हें
1: बहुत अच्छी बात है कि देखिए आप उन्हें अपने अनुभव दे करके सिखा रही हैं और आप उन्हें अपने प्यार से ही संबोधित उन्हें अपने
0: बच्चे की तरह मैं उनसे ट्रीट करती हूँ।
1: सुमन जी ये बताइए, एक आइटम को बनाने में लगभग कितना समय लग जाता है?
0: देखिए हम महिलाएं हैं, पहले हम लोगों को घर भी देखना पड़ता है, फैमिली भी देखनी पड़ती है। जब हम लोग फ्री होते हैं उसके बाद ही ये काम शुरू करते हैं। ये काम करने में हम लोग को एक से दो तीन दिन तो लग जाते हैं।
1: हम कोई भी काम करें तो उसमें कुछ मुश्किलें कुछ परेशानियां आती हैं, तो आपने कभी कोई मुश्किल कोई परेशानी?
0: हाँ जी, मैंने देखी है, काफी परेशानी देखी है। करवा चौथ के समय मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरा बल्क ऑर्डर था 200 थालियों का
1: जी।
0: तब मेरी जो महिलाएं थी, चार महिलाएं एक ही परिवार की थी, वो सारी बैठ गई। उस समय मेरे दिमाग में इतना प्रेशर था कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर भी अगर मैं किसी को बोल देती हूँ कि आपकी मैं ये निकाल दूंगी कल, ये बाहर कनाडा जाना था मेरा पार्सल, तो मैंने रात भर जाके सबके साथ बैठ के पूरी दो दिन रात रात जाके काम किया। तो देखिए कोई भी काम हो परेशानियां तो आती
1: हैं। बिल्कुल बिल्कुल परेशानियां आती हैं। तो ये जो महिलाएं आपके साथ काम करती हैं, सुमन जी आपने बताया, तो इस काम से इन्हें कोई आर्थिक लाभ भी मिलता?
0: हाँ
1: होगा,
0: बिल्कुल आर्थिक लाभ मिलता है उनको, हम उन्हें पैसे देते हैं। जब देखिए कोई भी है हमारे साथ काम करता है तो उसे कुछ तो उम्मीद रहती है कि हम समय दे रहे हैं तो उसका हमें कुछ मिलना चाहिए, तो हम देते हैं उन्हें। फिर उसके बाद जब वो सीख जाती है तो अपना खुद का काम शुरू कर
1: सकती है। तो यही बात मैं कहने जा रही थी कि हमारी महिलाएं भी इस काम को घर बैठकर शुरू कर सकती हैं। अब आप ये बताएं सुमन जी, सबसे जरूरी सवाल कि इस सामान की मार्केटिंग या सेलिंग आपने कैसे शुरू की, या कोई महिला करना चाहे तो किस प्रकार उसकी शुरुआत कर सकती
0: है? जी हाँ, जैसे मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं एक अपना कोई भी आइटम आपको दे सकती हूँ, तब आप बोलेंगी इस आइटम बहुत अच्छा है। इसी तरह मैंने ना अपने रिश्तेदारों को दिया, दोस्तों को दिया, तब उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छा आइटम है आपका, आप आगे जाके इसको सेल कर सकते हैं, आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पे अपना एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं।
1: शुरुआत आपने अपने आसपास के लोगों के साथ?
0: बिल्कुल आसपास के लोगों के साथ ही की। तब दिमाग में आया कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। तब मैंने फिर अपना एक पेज बनाया सोशल मीडिया पे, फिर वहां मैंने अपलोड की, वहां से मेरा शुरुआत हुआ।
1: तो आप ऑनलाइन सेल भी करती हैं?
0: मैं ऑनलाइन, पूरा सामान मेरा ऑनलाइन सेल होता है।
1: देखिए एक बात निकल कर आई है कि अभी आपने कहा था कि किसी काम को हम करते हैं तो उसमें परिवार का सहयोग, साथ ही अपने लोगों का, अपने दोस्तों का, अपने परिवार के लोगों का भी सहयोग जरूरी
0: है। बिल्कुल जरूरी है, परिवार का सहयोग के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते।
1: उन्हीं की बातें या उन्हीं का सहयोग आपको उस काम के लिए और भी मोटिवेट।
0: मुझे मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट है, यहाँ तक कि मेरी छोटी सी नातिन है वो भी मेरे साथ बैठती है काम कराने, उसे भी काफी शौक है करने का।
1: बहुत अच्छी बात है ये। तो सुमन जी अब ये बताएं कि आपके इस काम को लेकर आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, आप अपने इस काम को किस स्तर पर ले जाना चाहती हैं?
0: देखिए मेरी तो काफी योजनाएं हैं, भगवान करे वो सक्सेस हो, मैं काफी ऊपर तक ले जाना चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं की भी एक पहचान होनी चाहिए।

0: महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। आजकल देखिए महिला कहाँ से कहाँ जा रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मैं भी वही चाहती हूँ कि सभी महिलाएं अपना पैरों पे खड़ी हों, अपना नाम करें, खुद की पहचान बनाएं। तो मैं काफी ऊपर तक के लेके जाना चाहती हूँ अपना काम।
1: बहुत अच्छी एक सोच है आपकी निकल कर आई है सामने कि आप जो काम कर रही हैं आपने उस काम में और भी महिलाओं को अपने साथ जोड़ रखा है। तो आप ऐसा कोई एक संदेश हमारी महिलाओं को देना चाहेंगी अपनी तरफ से?
0: जी हाँ, मैं दूंगी, जरूर बोलूंगी। महिलाएं आजकल क्या है, देखिए सबके पास हाथ में फोन रहता है।
1: जी जी।
0: मैं नहीं, सभी महिलाओं के हाथ में फोन होगा, कोई भी सिंगल महिला नहीं होगी जिसके हाथ में आजकल फोन नहीं है। और घर के काम से फ्री होके ये महिलाएं फालतू का देखती हैं ना, बैठ के गेम्स खेल रही हैं, रील देखती हैं, कुछ भी पिक्चर देख रही हैं। ठीक है, देखिए मैं मना नहीं कर रही, लेकिन उसको आप एक रोजगार का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, उसमें आप अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं। आप थोड़ा सा मन में रखिए कि मुझे कुछ करना है, मन में इच्छा रखने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं।
1: सोशल मीडिया पर देखिए आजकल बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी आ रही हैं जिसको आप देख करके खुद घर में भी सीख सकते हैं।
0: सिखाते हैं आपको, बनाना सिखाते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पास पड़ोस से बात कर सकते हैं, घर में बैठ के फ्री बैठ के कुछ भी कीजिए। आप फ्री मत बैठिए, मेरा तो यही कहना है, फ्री बिल्कुल मत बैठिए, कुछ ना कुछ करिए, अपनी खुद की भी पहचान बनाइए। हम महिलाएं हैं, हमें बहुत आगे बढ़ना है अभी।
1: बहुत अच्छा संदेश आपने दिया और मैं भी यहाँ पर कहना चाहूंगी कि देखिए बहनों, हमारे भारत देश में तो त्योहार आते ही रहते हैं, कभी शादी ब्याह है, कभी जन्मदिन है, कभी मुंडन का कार्यक्रम है। त्योहारों पर या इन मौकों पर हमें सजावटी सामान की जरूरत होती है, तो आप भी रुचि के अनुसार इस काम को आगे बढ़ा सकती हैं, कर सकती हैं और उससे कुछ पैसा लाभ भी कमा सकती हैं। जैसे कि हर एक महिला में एक एक हुनर होता है, एक एक योग्यता होती है उसकी और उस काम को करने की इच्छा भी होती है, तो वह इस काम को बड़ी आसानी से कर सकती है। वह अपनी इच्छा, अपनी योग्यता का इस्तेमाल करें। और आज एक सबसे अच्छा साधन हमारे बीच मौजूद है, हमारी सोशल मीडिया। एक सेकंड में आपकी बात 50 लोगों तक पहुंच जाती है, तो उसी प्रकार आप जो भी बनाएंगे या आप जो भी काम शुरू करेंगे बहुत जल्द ही लोगों तक पहुंचेगा और आप उसमें सफलता हासिल कर सकती हैं।
0: नहीं, कुछ महिलाएं होती हैं, बोलती हैं ना कि मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे किस तरह पोस्ट करते हैं, ये देखते हैं काफी सामान आपका, फिर पूछेंगे आपसे कि आपने कहाँ से लिया ये, आप कैसे बनाती, इससे आपको ही आगे रोजगार मिलेगा। मैं तो सभी महिलाओं से कहूंगी कि प्लीज कुछ ना कुछ करिए, फ्री मत बैठिए कोई भी।
1: तो बहनों, ये महिला सशक्तिकरण की बात मैम ने कही कि हर एक महिला कुछ ना कुछ काम करे, आर्थिक निर्भरता हम सभी महिलाओं को मिले, उनके अंदर जो भी खूबी है, उनका जो भी कौशल है, उसका विकास हो। जब एक महिला सशक्त होती है, महिला जब आर्थिक निर्भर होती है, तब मानसिक स्वास्थ्य जो होता है उसमें भी उसकी बढ़ोतरी होती
0: है। बिल्कुल होती
1: है, खुश रहेगी।
0: हाँ जी
1: जी हाँ।
0: नहीं, जब हाथ में आपको पैसे आते हैं ना तो आपको बहुत खुशी होती है।
1: जी हाँ, परिवार की और सामाजिक जो उसकी स्थिति है उसमें भी बढ़ोतरी होती है।
0: और फिर क्या होता है ना, फ्री रहती है महिला तो बोलती है आज मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, आज मुझे वहाँ दर्द, काफी बीमारियां घेर लेती हैं उसको, पर ये सब छोड़ दीजिए, सारा दर्द जब हाथ में लक्ष्मी आती है ना, सब दूर हो जाते हैं दर्द।
1: बहुत बढ़िया। तो सुमन जी, आज की इस बातचीत में आपने हमारी महिलाओं को बहुत अच्छा संदेश दिया और उन्हें एक प्रेरणा दी कि वो भी घर बैठे बहुत सारा काम कर सकती हैं, अपनी योग्यता को, अपने हुनर को, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके वो भी पैसे कमा सकती हैं। अपने देश, अपने शहर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आप अपने काम की धूम मचा सकती हैं। आप भी अपने काम को कर रही हैं तो हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारी बहनों को आपने प्रेरणा दी, उसके लिए सुमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
2: बहनों, अभी सुन रही थी आप यह भेंट वार्ता सुमन अग्रवाल से सीमा कुशवाहा जी की बातचीत। बहनों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति का काम, परिवार और जिम्मेदारियों में इतना घिरा हुआ है कि खुद के लिए समय निकालना भी भूल जाते हैं। लेकिन बहनों, हम खुद का ध्यान रखेंगे तो अपने परिवार और काम का भी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे और खुद के लिए समय निकाल पाएंगे। जब हम अपने लिए कुछ समय निकालते हैं तो शरीर को आराम मिलता है, मन शांत होता है और नई ऊर्जा मिलती है। दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से करें, सुबह 20 से 30 मिनट पहले उठने की कोशिश करें, उसे इस समय में आप टहलें, योग करें और कुछ देर शांत बैठकर गहरी

0: सांसें लें, इससे आपका पूरा दिन अच्छा रह सकता है। बहनों, काम की योजना बना लें, कौन सा काम कब करना है, पहले जरूरी काम करें और बाकी काम समय मिलने पर करें, ताकि इससे थोड़ा समय बचे। दिन में एक अपनी पसंद का काम जरूर करें, ताकि मन को शांति मिले। बहनों, परिवार का सहयोग लें और घर के काम सभी सदस्यों को बांट दें, इससे किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और इससे आपके लिए भी थोड़ा सा समय बच पाएगा, ताकि कुछ काम आप अपने मन पसंद के कर पाएं, जो आपके मन को अच्छा लगे, क्योंकि संतुलित जीवन की शुरुआत खुद से ही होती है। आइए बहनों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आइए बहनों, सुनवाते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत जो लिया गया है फिल्म क्रिस से। आवाजें दी हैं सोनू निगम व साथियों ने।

बहनों, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आशा करती हूं कि आपको हमारा साथ अच्छा लगा हो। इसी आशा के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। उठाइए पेन पेपर और नोट कीजिए हमारे कार्यक्रम का पता। हमारे कार्यक्रम का पता है नारी जगत कार्यक्रम द्वारा के निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड है 284128। इसी के साथ अपनी दोस्त सविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी प्रस्तुत किया जा रहा था कार्यक्रम नारी जगत FM 103 पर। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजे हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम किसान वाणी। यह कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया और पंच भैया अपने विपिन भैया और
1: संतोष पाल को नमस्कार।
0: तो संतोष भैया हाँ। जैसे अपने संजय भी यहाँ अपना अपना कार्यक्रम लेके हैं
1: बिल्कुल भैया
0: और आजकल हम
1: देखते हैं नौ लोगों से मिलके
0: बिल्कुल
1: भैया का कछु चल रहा।

0: भी रखे
1: बिल्कुल संतोष भैया। देखो हम भी यही सोच रहे थे कि देखो खेती किसानी में अपने देखो धान की कछु रोपाई हो गई है भजिया बहन की और कछु अपनी रह गई है, तो देखो जो भैया की वैसे पछेती है जब पानी बाद में बरसो है तो उनने बढ़िया देखो मल्चिंग अपनी खेत खूब मचान करके अच्छी अब हम देखोगे कई भैया बहन खूब रोपाई कर रहे हैं कि नहीं।
0: तो जितने नहीं बरसो तो किसान भैया आने देखो अपने बोर से उन्हें भर रहे पानी लगा रहे। और विपिन भैया एक बात और है, अब देखो नई अच्छी किस्में आ गई धान की, अब तो ज्यादातर किसान भैया छड़क वहाँ विधि से बोन लगे, खासे पौधा लगवावे में खर्चा ज्यादा लगन लगत उनकी लागत बढ़ जाती खेती किसानी में, तो जो किसान भैया आ रहे हैं फिर भी देखो पौध लगाए थी नर्सरी लगाई थी उनने तो उनकी पौध ठाणी हुई है तो और रह गई अगर उनकी धान लग भी तो देखो भाई अपन टाइम से मौसम के देखत भाई रोपाई जरूर करा।
1: बिल्कुल संतोष भैया जो अपन के वो चाहू थे बार बार देखो और फिर रोपाई के बाद भी उनका बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो अपने खेत में पानी पर्याप्त है कि नहीं, अगर पानी की मात्रा बड़ी बैस रहो कम हो रहा हो तो अपने बोर है जैसे अपने पास कुआ है तो उसे भी अपने खेत में भर सकत, ऐसे की देखो जो अपने तापमान है पानी को वो बिल्कुल बन हो रहा है, पता लो खेत सूख गए धान लगी है अपनी तो कहाँ से पैदावार हो जाएगी नहीं।
0: बिल्कुल विपिन भैया अपने किसान पंच भैया से एक चर्चा और करवा चाहते हैं, कहा है कि अपन विपिन भैया जो तो देखते ही हो कि अपने बुंदेलखंड क्षेत्र की देखो जलवायु में है असमानता ज्यादा है, कैसे कभी अपन देखा कि पानी बरस जाते को आठ दिना तक नहीं बरसत, कौ कौन साल है सूखा पाया जाता तो कौन साल है देखो इतना बरस जात पानी के फसलें सड़ जाती, कौन साल है मने रिमझिम रिमझिम बरस के निकल जाती, तो ऐसे में क्या करने अपने किसान पंच भैया आनखे सह फसली खेती अपनाने।
1: बिल्कुल संतोष भैया कहा है और हम अपने बार बार भी अपन भैया बहन को बताओ जाते तो कि देखो जो अपने विज्ञान भैया है देखो आसो बारिश कम होने तो भाई वातावरण के जो अनुसार जो अनुकूलित खेती है अपनी जलवायु के अनुसार वैसे अपन खेती करने, चाहे देखो धान की बात हो चाहे अपनी मूंगफली की बात हो, तो भैया बहन ने आसो अपने देखो कम मात्रा में मूंगफली की खेती करी और धान तो तय करी जैसे बिल्कुल पानी उनके पास पर्याप्त है
0: या उनके देखो संसाधन है स्रोत है पानी की जैसे नहर निकली या फिर उनके बोरन में अच्छा पानी है जो नीचे को धरती के नीचे को जल स्तर है वो अच्छा है जो जगह पे। और एक बात और विपिन भैया कहा है कि जैसे अपन ने सह फसली खेती की बात करी बतकाओ करो तो अपने किसान भैया ने सोचा थे जाके ऐसी सह फसली खेती तो अपन उनसे क्या वो चाहते ही कि एक तो भैया अपन है क्या करना है अपनो बड़ो खेत है तो अपन देख लो कि दो चार बीघा में अपन मूंग बह दो उड़दा बह दो कछु में मूंगफली लगा दो कछु में तिली लगा दो, जैसे अपन ने अभी बताई के वैज्ञानिक भैया ने देखो मौसम विज्ञान विभाग ने बताई के आसो कम वर्षा है तो जो तिली की फसल है कम वर्षा में अच्छी होती है, तो अगर तिली की फसल अपनी किसान भैया ने बो दी हुई है तो उनकी निश्चित है कि अच्छी पैदावार मिले।
1: बिल्कुल संतोष भैया और हमारे किसान भैया बिल्कुल बहुत अच्छे से जब सब जाना थे कि देखो वातावरण के अनुसार अपन किसान भैया बेड़ी रहे कि देखो पहले अपन ने बे देते देखने अब समय समय पे उनके वैज्ञानिक तरीके से खेती करने लगे, पहले कहा होती है छिटकुआ विधि से मूंगफली बे देते अब आजकल सीड ड्रिल से मेबराई कई ऐसे यंत्र आ गए, तो उनमें कहा है भैया मैंने अगर लाइन से लाइन की दूरी जैसे खरपतवार नियंत्रण के लाने अपन गछू
0: बिल्कुल सही बात कही अपन ने तो उसे खरपतवार नियंत्रण भी अच्छी तरह से हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: और विपिन भैया अपन एक बात और उनसे कहना चाहते हैं कि भैया देखो अपन के एक तो प्राकृतिक खेती की बात तो अपन करते ही रहते ही अपने किसान भैया उनसे के रसायन को देखो उपयोग कम से कम करने, अब उसके संगे संगे अपनी सेहत को भी ध्यान रखने तो सेहत को ख्याल रख भी कि लाने उन्हें क्या करने देखो श्री अन्न की भी खेती करने है, श्री अन्न यानी कि मोटो अनाज है, मोटो अनाज में कौन कौन आ जाता है जैसे जनई है
1: ज्वार
0: और कुदई है मक्का है
1: बाजरा है
0: तो ये फसलें लेके अपने किसान भैया आ रहे हैं देखो अपनी थाली में वो मोटे अन्न को भोजन
1: बिल्कुल करें तो अपन भी स्वस्थ रहे अपना बिल्कुल शरीर भी स्वस्थ रहे
0: और अपनी खेती जो बंजर हो जा रही
1: वो भी बची रहे
0: कैसे कि देखो जो मोटे अनाज में खादन की कम जरूरत
1: है। संतोष भाई देखो अपन और भी बतलाव करें मोटे अनाज पे तो और भी करें अपन ठीक नहीं, लेकिन कहानी के पहले कुछ संदेश हो सुन लो जाए।
0: बिल्कुल
2: क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त।

0: जरा पहली वाली बात कहाँ,
1: परम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज कल जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: तो हाँ विपिन भैया, संतोष भैया, देखो कितने उमदा से अपने संदेश सुने कि नहीं, और लेकिन अब कहा है कि एक उमदा बतका उसे सुनवा दे भैया मैंने।
6: बिल्कुल, तो का कच्ची सुनवा रहे आज अपने किसान पंच भैया?
5: अपन भैया ने सुनवा है कृषि का बदलता परिदेश और विषय पर राजकुमार, जो अपने जागरूक किसान है राजकुमार राजपूत, और इनसे अपन ने, जो हमारे संतोष भैया अपन ने कहा बात करी, हम तो उनसे भैया से पूछो अपन ने,
6: तो अपन भैया जी बहुत देखो अनुभवी और काफी उम्रदराज किसान थे जो अपने स्टूडियो में आए थे, तो उनने बहुत कछु बातें बताई, तो अपन सुनो अपने किसान भैया का सुनवा।
5: बिल्कुल सुना थे।
7: नमस्कार, आज हमारे आकाशवाणी के झांसी के स्टूडियो में उपस्थित राजकुमार राजपूत जी हैं, जो कि एक अनुभवी और जागरूक किसान हैं, और इनकी उम्र लगभग 70 साल के करीब है, तो इतनी उम्र होने के कारण इनको काफी लंबा अनुभव जिसे की खेती किसानी इनने ज्यादा करी। तो राजकुमार राजपूत जी, आपका हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे बातचीत करें, लगभग कितने साल से आप खेती कर रहे हैं?
8: खेती जो है लगभग हमें 50 साल से खेती करते आ रहे हैं।
7: अच्छा, 50 साल हो गई
8: खेती करते करते, 50 साल
7: अवधि के दौरान देखा कि पहले के समय में जो खेती की जाती थी पूरी तरह से जैविक पद्धति।
8: हाँ, जैविक पद्धति,
7: जैविक आधारित खेती थी, और आज के समय में हम देखा कि सबसे ज्यादा रासायनिक को प्रयोग,
8: रसायन के प्रयोग करा जा रहा
7: है, चाहे अपन देख रहे हैं कि बेरा खरपतवार नारवे की रासायनिक दवाइयाँ हुई, तो वे भी ज्यादा मात्रा में प्रयोग करी जा रही है, चाहे कीटनाशक दवाइयाँ, तो रासायनिक ही विधि से इन सबको निदान करो जा रहा
8: है।
7: तो ऐसी स्थिति में आपने जो खेती करी पहले का स्तर हतो आपको के पहले के समय में कैसी का पैदावार होती, अब जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़त जा रही, और ऐसी स्थिति में अब जब जनसंख्या बढ़े तो नाच की और हर तरह से हर चीजें की ज्यादा जरूरत पड़े, तो पहली खेती से उपज कैसी होती और अब जो खेती करेंगे तो तरीका बदल लो, तो अब पैदावार कैसे?
8: अब जो है पुराने समय में खेती होती थी, ज्वार है, ठीक है, मूंग है, अरहर है, जो पुरानी चीजें होती थी, ठीक है, तो उनकी पैदावार तो ठीक थी, लेकिन अब समय बदल गया है, अब जो है नई तकनीक से खेती करने पड़ रही, क्यों कि अब जो है उस समय कम पैदावार थी, बहुत कम थी, संसाधन नहीं थे उस समय, हाँ, हर बखर से खेती करते थे, खेती करते थे, हाँ।
7: उस समय का आपके अनुभव है, तो और अब अपन देखत के जो मशीनी युग है, पूरी तरह मशीन से खेती,
8: हाँ बिल्कुल, हाँ,
7: तो ई में और पहले के दौर में आपका कच्चे अनुभव
8: है? पहले के दौर में आपके अनुभव में बहुत फर्क है, कोणी मोहन का पहले तो जो है शुद्ध होती थी, गोबर के खाद डाल करके बढ़िया बना करके बोई जाती थी, पानी के कम साधन थे तो एक दो पानी में वो हो जाती थी, तो लेकिन कम मात्रा में होती थी, अब क्या है कि अब आबादी बढ़ रही है तो नई तकनीक से खेती करने पड़ रही है, ठीक है,
7: मशीनी हो गया
8: है।

0: से खेती होती तो अपन ने उस समय भी देखो जुताई करी हुई है बैल,
1: हाँ बिल्कुल,
0: अब ट्रैक्टर से कर रहे हैं।
1: हाँ, ट्रैक्टर
0: से बैल बखर से अपन देखते कि खेत की जो माटी रहती है कैसी बनती है, आज कैसे अपनी फसल के लाने ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व दे।
1: पहले के समय जो है गोबर की खाद गिरती थी, इसमें हर बखर से जो खेती होती थी तो जमीन वो दबती नहीं थी, ट्रैक्टर का 20 क्विंटल का वजन से जो है जमीन दब जाती है, तो उसमें जो है नीचे वो कुछ क्या घिसते हैं तो उसमें घिसने के कारण जो है पानी की क्षमता सूखने की कम हो जाती है, तो मशीन युग है। लेकिन ठीक है, ऊपर ऊपर वैसे मशीन युग नहीं करें अपन लोग, खेती नई तकनीक से नहीं करेंगे तो इतनी जो है कैसे पैदावार होगी। इसलिए अब जो है बहुत कुछ अब साधन हो गए, जैसे सूर्य प्लांट लग गए, ठीक है, लाइट से मोटरें चल रही, चिड़िया स्प्लेंडर से सिंचाई हो रही, तो सब जो है इसमें क्या है कि स्प्लेंडर सिंचाई होने से जो है चिड़िया से जो है मिट्टी दबती नहीं है, वो वर्षा नामा होती है तो उससे अच्छा, पैदावार अच्छी होती है।
0: पहले के समय में सिंचाई के माध्यम का
1: पुराने समय में तो देखो तो वो तरसा से खेती करते थे, एक पड़ाव बनाया जाता था उसमें लगाई जाती नारी, नारी से फिर खींचते थे बैलों द्वारा, फिर लुकाया, फिर इसके बाद फिर जो है रेंट की खेती हुई, रेंट के बाद फिर पंप पे आए, पंप के बाद अब जो है मोटर और जो है सूर्य प्लांट से अब खेती हो रही है, संसाधन बढ़िया है और पैदावार भी बढ़िया हो रही है।
0: सिंचाई करने का तरीका वो पहले को और अब को
1: बहुत फर्क पड़ गया।
0: हाँ, तो पहले देखो ज्यादा मात्रा में पानी की बर्बादी होती और टाइम भी ज्यादा
1: लगता,
0: लेकिन जो आती के उसमें लागत नहीं लगती,
1: लागत नहीं लगती थी, अब तो लागत को खींचती
0: है। अगर देखो अगर अपन लाइट से मोटर चला रहे हैं तो बिजली को भी देना,
1: बिल्कुल देना है,
0: और अगर अपन वाटर पंप चला रहे हैं, इंजन चला रहे हैं, डीजल डालने पर,
1: डीजल डालने
0: पर अपनी खेत की लागत
1: बढ़ गई
0: लागत बड़ी तो पैदावार भी बड़ी,
1: बड़ी।
0: और पहले लागत कम होती
1: पैदावार
0: कम बढ़ गया, तो ई में अपन का अंतर महसूस कर रहे हैं कि पहले सही है तो कि अब सही हो।
1: वैसे अब पहले सही था, उस हिसाब से ऐसा था कि जो शुद्ध होता खाने पीने के लिए गेहूं चना मटर से चीजें शुद्ध होती, तो अब जो है ठीक है पैदावार तो बड़ी है, लाभ तो हो रहा है, लेकिन जो है इससे जो है शरीर को नुकसान हो रहा है। थोड़े थोड़े सब किसानों को जो है जैविक की ओर बढ़ना चाहिए, थोड़ी थोड़ी एक एक दो बीघा में जैविक खेती करो, घर का गोबर डाल के और अपने खाने लायक करो, थोड़ा बहुत और परिवार लायक कर लो, तो जो है इस ओर भी ध्यान देना, क्योंकि जैसे कि जमीन है इसी प्रकार जो है हम आप जो है यूरिया डीयूपी देकर के जमीन का तत्व निकाल रहे हैं तो बंजर की ओर वो बढ़ रही है, तो इस पर उसके स्वास्थ्य का ध्यान देना है। इसलिए जो है खाद कितनी डालें, गोबर की खाद नहीं है तो जो है सनई है घे चाय जी कटवा के उसमें डलवा दो बुवा दो तो जो उसमें जो है हरी खाद लग जाए।
0: अच्छा, आपको खेरे को मतलब सनई और ढेंचा है जो हरी खाद तो आज के समय में बहुत कम किसान भैया रहे ऐसे हैं जो हरी खाद के बारे में जाना, तो ये सनई ढेंचा कब बोई जाता है और फिर इन्हें खाद के रूप कैसे जाओ जाते हैं?
1: अच्छा,
0: पूरी तरह से आप बताओ।
1: अच्छा, इसमें जो है अषाढ़ में बो दो आप।
0: अच्छा,
1: और 30-35 दिन के हो जाए,
0: लगभग एक महीना,
1: एक महीना के लगभग, तो जो है ढेंचा जो है इतना हो जाएगा, ठीक है, उसको जो है हैरो चलवा दो,
0: इतने को मतलब
1: नहीं इतनी हो जाए, कम से कम जो है दो दो फुट की हो जाएगी, बढ़िया पाल सा तन जाएगा, बिल्कुल घना बोला जाता है, तो एकदम उसका इतना ऊंचा हो जाएगा कम से कम 2.5-3 फुट, इसके बाद उसमें हैरो चलवा दो आप, हैरो उसमें वो करके गिर गया तो पाटा देके फिर वो सड़ जाएगा, उसमें बहुत अच्छी पैदावार होगी, लेकिन बजाय का है किसान की मजबूरी, इतनी जमीन भी नहीं है भाई, थोड़ी थोड़ी जमीन है नहीं तो हर आदमी नहीं कर पा रहा।
0: ये सनई और ढेंचा, ये की चीज है कि सनई अलग
1: है, ढेंचा अलग है।
0: अच्छा, तो आपने जो बताया कि 2 फुट की जाके पौधा हो जाता है, हैरो चला के और खेत की माटी में मिला हो जाता है, तो जो सनई है मिला हो जाती है ढेंचा
1: नहीं, दोनों अलग मिला हो जाता।
0: अच्छा, सनई भी उतनी
1: सनई जो खड़ी है तो बहुत बढ़ जाती है, ढेंचा भी बढ़ जाता है कम से कम 5 फुट, लेकिन उसको कच्चे में उसको पलटा जाता है, मिट्टी मिल जाए, सड़ जाए, गल जाए, बरसाती में वो गल जाता है।
0: और आज के समय में आप देखत किसान भैया आ रहे हैं कि यूरिया को,
1: यूरिया
0: रासायनिक खादों को ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर
1: बहुत ज्यादा हो,
0: तो अब आज भी किसान भैया आ रहे हैं बात खेती अपना सतत, जैसे खाद की बात आए तो खाद भी जो रासायनिक खाद है उनका प्रयोग ना करके और हरी खाद को, गोबर की खाद को प्रयोग कर सकते, और रही बात जैसे समय की तो उनमें देखो चाहे

0: कटाई कतराई हो या बखन्नी हो, इनमें आप मशीन को यानी कि ट्रैक्टर को प्रयोग कर सकते हैं।
1: हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते
0: हैं। इसमें कहते हो ना कि तुम अपने किसान भैया की जो लागत है वहाँ में कमी आए,
1: आए क्यों नहीं आए, आएगी उसमें कमी।
0: ऐसा अपन ने करो तो अपनी किसान भैया के कछु आप एक ही बारे में बताओ कि ऐसे किसान भैया है अपनी खेत की जो लागत है खेती किसानी खावी वाली का लागत है कम कर सकत और पुरानी विधि को भी कछु मिसेस करके आज अच्छी पैदावार ले सकते।
1: बस पुरानी विधि तो यही है कि अगर गोबर की खाद मिल जाए बर्डर हुआ तो ठीक है, और उस रिश्ता से जो खेती करो तो उसमें थोड़ी तो मात्रा में तुम्हें डीओपी यूरिया देना पड़े, क्या उसमें जो है तब तो हुए तीन साल के लिए जमीन मजबूत हो जाती है गोबर की खाद से, प्लाई पकड़े रहती है ठीक है, तो उसमें जो है तुम्हारी यूरिया डीओपी की मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी और आराम से खर्चा कम भी आएगा और फसल बढ़िया होगी, और जो है यानी जो है वो चाहे गेहूं हो चाहे चना हो कुछ भी हो उसमें खाद नहीं लगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, खाने में टेस्ट भी अच्छा है, हैं ये सब चीजें हैं पुरानी पद्धति की। हाँ हाँ,
0: पहले आदमी अपने स्वाद को अपने सेहत को भी ख्याल रखा।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: उसके अनुसार खेती करा।
1: हाँ
0: अब कहा है कि व्यवसाय के रूप में व्यवसाय खेती कर रहे।
1: हाँ व्यवसाय व्यवसाय खेती कर रहा,
0: ऐसे में अपनी सेहत को कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहा
1: हूँ। बिल्कुल कर रहा हूँ, खिलवाड़ कर रहा
0: हूँ। सरकार भी जोर दे रही है तो मोटो अनाज श्री अन्न खेती करो
1: जी।
0: तो अपनी थाली में जब अपने घर में जो जिसकी पैदावार हुई है अपन खाने में ही उपयोग करें।
1: बिल्कुल करें, क्यों नहीं करें।
0: जब पहले जुनाई होती थी,
1: हाँ ज्वार होती थी बहुत अच्छी,
0: तो किसान भैया है आज भी नई तकनीकी से जुनाई की खेती कर सकते हैं, जहाँ पैदावार ले सकते। अपन ने कहा कछु अनुभव करो कि पहले भी अपन ने जुनाई की खेती करी, वो आज अपन नहीं सोचते कि हम आज भी जुनाई की खेती करें।
1: नहीं तो ज्वार की खेती करने में नुकसान नहीं है, फायदा है। हर किसान को जो है ज्वार की खेती करना चाहिए, क्यों कि उसकी पैदावार भी अच्छी है और रेट भी अच्छी है, रेट भी उसकी अच्छी है, और उसमें जो है कोई वो रासायनिक खाद भी नहीं लगे हुए, इसलिए जो है वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं है और बिल्कुल पचने वाली है। उसमें जो है ज्वार की रोटी खाने से डायबिटीज की दिक्कत, न किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है, कई बीमारी हटती नहीं उससे, ठीक है, वो शुद्ध है, हराया खाना है, बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया पौष्टिक चीज है। तो हर किसान को जो है थोड़ी थोड़ी करना चाहिए, वजह का होगी मजबूरी क्या हो गई कि एक किसान दे दे सुबह चिड़िया चुन जा रखा नहीं पा, और सब लोग एक दो दो बीघा में सब लोग करने लगे तो उससे सारे आनंद, सब लोग जो है इसके महेरी बना के खाओ, रोटी खाओ, कितनी बढ़िया स्वादिष्ट और शुद्ध चीज है। पुरानी चीज में अब में तो बहुत टेस्ट बदल ही गया है।
0: हाँ स्वाद
1: बिल्कुल,
0: पोषक तत्व
1: हाँ
0: जो अपन के स्वास्थ्य के लाने लाभदायक
1: नहीं मिल पा, नहीं मिल पा रहे, नहीं मिल पा
0: रहे, और कई हानिकारक तत्व अपन अपनी खाना के माध्यम से अपने शरीर में खुद दे रहे, जिसे ऐसी बीमारियां हो रही कि डॉक्टर भैया भी हरे उन बीमारियों से नाम नहीं दे पा रहे
1: भाई,
0: का नाम से न
1: बजाय कहा है सब शुद्ध चीज कोई खाने के लिए नहीं मिल रही, कैसे नहीं मिल रही कि चाहिए हमने जो है तुरई लगाई, लौकी लगाई, पोबो लगाए, उसमें जो है कीटनाशक दवाई दी, वो ही हमने मंडी में रख दी, तो वो जहर का बुझा वो मांग गया, उन्होंने धोया लेकिन मुझे उसका जहर नहीं हट पाया, वो खाया तो शरीर में नुकसान है। अब जो है रासायनिक खेती हो रही है उससे तो नुकसान ज्यादा हो रहा, लागत बहुत है खेती में, अब कम से कम जो है 30-35% जो है लागत में चला जाता है, दवाई में बीज में
0: पैदावार बढ़ी तो लागत भी बढ़ी,
1: लागत बढ़ी,
0: कहीं ना कहीं एक औसत
1: मैं पहुंचा,
0: तो काय ना फिर अपन अच्छी यानी कि एक स्वस्थ पैदावार लें और अपन खुद स्वस्थ रहे और अपनी खेती है बंजर होवे से बचाएं,
1: बिल्कुल बंजर हो जाए, बिल्कुल हो जाए।
0: और अपने के पहले के समय में जो मूंगफली अपने बुंदेलखंड में शुरू में करी,
1: हाँ देसी
0: गुड़ाई करते खुरपी से,
1: हाँ खुरपी से,
0: और जो बेदतन वाले
1: गाना बोलो जाकर गाना बखर लहसुन रह दो पूरी गुलाई हो जाती, वो पपटा पे को चारों पूरे सूख जाते, फर्स्ट क्लास शुद्ध हो जाती है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया
0: बढ़िया,
1: अब तो जो है बहुत फर्क पड़ गया है, पुरानी खेती की तो बात ही अलग थी, आदमी के चेहरा दमकत थी, शुद्ध थे, अब कहा तुम्हें इतना आदमी को बीमारी, कोई आदमी बड़ा मुश्किल में है, 100 में 2-4, 10-25 आदमी जो है स्वस्थ होने तक कुछ न कुछ वाली है जमीन बनी।
0: आपने अपने इतना

0: अनुभव साझा करो हमारे किसान भैया आए हैं और पहला जौन विधि से खेती होती और आज जौन विधि से हो रही पैदावार तो बड़ी लेकिन अपन ने बताई कि लागत भी बड़ी
1: लागत
0: कहीं औसत होता ही रहो और तो अपन किसान भैया से यही कह वो चाह रहे के वे भी पुरानी जैविक खेती की ओर बढ़े और अपनी खेत की माटी के बंजर होवे से बचाएं और अपनी खेती किसानी में आवे वाई लागत के कम करें और अपनी लाने एक स्वस्थ भोजन है भी अपने खेतन में होगा। आपने इतनी अच्छी जानकारी किसान भैया आने दी। आप हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो देखो संतोष भैया, किरतम दास अपन ने जो बतखा सुनोबे कृषि का बदलता परिदेश और विषय पर राजकुमार जो जागरूक किसान थे राजकुमार राजपूत जी और उनसे अपन ने देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें पूछी कि देखो कैसे अपनी खेती को बंजर होवे से बचाएं और कैसे अपने जो जैविक खाद अपन को इस्तेमाल करने और पहले की तरह अपन को खेती करने है कि नहीं, तो बिल्कुल अपन ने सारी बातें उनसे पूछ ली है और पूछ के बिल्कुल हमारे किसान भैया भी करें कि देखो अब अपन खां भी देखो रसायन कम से कम डालने जैविक खाद और जैविक खाद की जब बात आने लगे थे तो हमारे किसान भैया पूछ रहे हैं जैविक खाद का चीज है कि नहीं, तो जो देखो अपन किसान भैया हमारे सब जाना थे कि पहले देखो अपने जो गोबर की खाद होती है जो अपने खरपतवार बचाते घूरे खत्ते घूरे में डाल देते हो साल बरसात में सड़ जाते हो और बिल्कुल फिर गर्मियों में अपन खेतन में खरवा देते हो बिल्कुल पानी बरस हो जैसे ही तो पूरे खेत में फैल जाते हो।
0: बिल्कुल विभिन्न भैया जैविक खाद में देखो बहुत सी जैसे कि हरी खाद आ जाती है, सनई ढेंसा वो के अपने किसान भैया आ रहे हैं और एक बात वो बता दें कि जो अपनी मूंग और दा अपने किसान भैया ने बोते ही खेतन में और अगर वे कुफर हो जाते तो ऊखे वे अपने खेत नहीं में खेत में बखरवा दें तो उसे भी भैया देखो खाद बन जाता है।
2: बिल्कुल उसमें कहा है कि मूंग में अपने जो नाइट्रोजन की मात्रा है अपने जमीन खान फसल का तो पूरे मूंग से भरपाई हो जाती है उनकी फसल से।
0: और जैसे समाधि खाद है अपने किसान पंच भैया ने देखो पशुपालन तो करते ही हैं और जब उनके पशु की भगवान ना करे वो की पशु की कैसे कारण से अगर मृत्यु हो जाते मौत हो जाती तो वे उखे ऐसे ही फेंक देते ही जो पर्यावरण है भी प्रदूषित कर तो उन्हें ऐसे ही नहीं फेंकने का करने की जितने उनकी खाली जमीन पड़ी ऊसरा या बंजर जमीन पड़ी तो उतरे गड्ढा खोद के और उनके जितना वजन है उनके अनुसार नमक उनके संगे नून लगा के और गाड़ देने।
2: बिल्कुल पशुओं की अपने जैसे बात करी तो देखो अब जो बरसात का मौसम चल रहा हो तो जो पशुओं को स्वास्थ्य उनको आहार की बात कर ली जाए कैसे भैया देखो बरसात के मौसम में जैसे स्वास्थ्य पानी बरसात है तो कहूँ कहूँ अपने पशुओं में बीमारी होने लगा कैसे जैसे अपन ने देखो अभी नई घास आने लगी और भाई अपन ने जानवर जो खाते हैं तो उनमें कहूँ थे कि जो उनको गले में गला घोटू बीमारी हो रहा है कई प्रकार की बीमारी होने लगती नई घास से तो उन भैया ने कहा करने के देखो सबसे पहले मौसम बदला अपने जैसे ही तो उस समय हमारे किसान भैया अपन भी बार बार करके देखो अपने मौसम बदल से पहले अपने जो पशुओं को टीकाकरण करा ले।
0: बिल्कुल रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली बिल्कुल लगत भी लगवा लेने और अपन का करने कि एक तो अपने पशु के जो हरे चारे के संगे संगे कछु सूखो चारो भूसा भी देते रहने जिसे कहा है कि उनको जो अफरा चढ़ जाता नहीं ना पेट फूलन लगत कन लगत और अफरा चढ़ गो जिसे पशु के सांस लेवे में भी दिक्कत होने लगत है तो ऐसी स्थिति ना बने और कभू कभू का होने लगत विपिन भैया के पशु देखो पौकन लगत यानी कि
2: ज्यादा गोबर करने लगत ज्यादा हरो चारो भी पशु नुकसान लायक
0: अपने ही हुए जैसे कोनू ये भोजन ज्यादा मात्रा में खा जाओ तो वो नुकसान कह जाता है।
2: बिल्कुल संतोष भैया अब देखो बतखा तो और भी करें हम सोच रहे भैया कि देखो कछु मनोरंजन और हो जाए तो हमने किसान भैया को का सुनवा चाह रहे यार।
0: विपिन भैया आज देखो एक उम्दा से लोकगीत अपने किसान भैया सुनवा रहे जी खे गा रहे हरविंद कुमार नीरज तो

0: भी अपने को पशुओं नुकसानदायक होते हैं।
1: अब नहीं हुए जैसे कोनू ये कि भोजन ज्यादा मात्रा में खा जाओ तो वो नुकसान कह जाते ही।
0: बिल्कुल संतोष भैया, अब देखो बदलाव तो और भी करें, हम सोच रहे भैया कि देखो कछु मनोरंजन और हो जाए तो हमने किसान भैया का सुनवा चाह रहे यार।
1: विपिन भैया आज देखो एक उमदा सो लोकगीत अपने किसान भैया का सुनवा रहे, जिखे गा रहे हैं हरविंद कुमार नीरज, तो अपन सुनो और उनके
0: अपने किसान भैया बहन सुने।
1: बिल्कुल।

0: विपिन भैया
1: हाँ।
0: अब अपने किसान भैया ने कितनो उमदा जो लोकगीत सुनो जिखे गावे वाय भैया थे हरबिंद कुमार नीरज और चलत चलत अपने किसान भैया से अपन जो ही कहो चाहता ही के भैया रो अपन वाले जो किसान भैया जो धान की फसल लेत खरीफ के मौसम में वे देखो बहुत ज्यादा लागत धान में लगा देत उनकी लागत बढ़ जात काहे से खादन से जो रासायनिक खाद छिड़कत भी तो उनके भैया अपने धान की फसल में संतुलित मात्रा में सीमित मात्रा में खाद देने वैसे तो अपन जी सलाह दे तो न कि भैया जैविक विधि से करो लेकिन अपन धीरे धीरे आओ कैसे अपन है पैदावार भी लेने तो ऐसी स्थिति में भैया एक तो अपन माटी की रिपोर्ट के अनुसार उर्वरक देने अपनी फसल में है और दूसरी अपन देखो फसल के देखत भाई सीमित मात्रा में खादन को उपयोग करने
1: बिल्कुल।

0: कॉल संतोष भाई, और संतुलित मात्रा में ही देने, जो मतलब जो बार बार भी भैया बहन से बता दे कि देखो अपनी मिट्टी की जांच करा लो, कौन सी मात्रा कितने कपन की, कब जो कमी है अपनी वही डपन है डालने, है कि नहीं।
1: और विभिन्न भैया अब देखो चलवे की बेरा हो रही, तो जल्दी से किसान भैया आन के बता दो कार्यक्रम को पतो।
0: तो कार्यक्रम को पतो है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा, के निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड है 284128।
1: और किसान भैया हमारे आकाशवाणी झांसी के नाम से फेसबुक पेज है, तो ऊपर अपन लाइक करके कमेंट बॉक्स में भी बता सकत लिख के कि अपन के कार्यक्रम कैसो लगा, तो अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। अब आज्ञा दे अपने भैया संतोष पाल और
0: विपिन भैया का
1: नमस्कार।

अभी किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। यह कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित था। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

संध्या के 7:20 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 7:31 पर सुनेंगे कार्यक्रम खुशबू माटी की।

संध्या के 8 बजे सुनेंगे इस सप्ताह संसद में, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 8:15 पर सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे एक ही संगीतकार के संगीत निर्देशित किए हुए कुछ फिल्मी चुनिंदा नगमे। आज के संगीतकार होंगे भक्ति लहरी।

8:45 पर सुनेंगे समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 9:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी भाग 6। रात्रि 10 बजे सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात्रि 10:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि 11 बजे होंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अर्थात 11:05 होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि

11:10 पर सभा समापन का समय रहेगा। कार्यक्रम विवरण समाप्त। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुरु रंधावा व नेहा कक्कड़ की आवाजों में ये बधाई हो फिल्म का खूबसूरत सा नगमा। संगीत दिया था तनिष्क वाक्षी ने और गीत के बोल लिखे थे मैलोर ने। लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं ये कुछ संदेश।
1: भैया कछू अनमने दिखा रहे, क्या बात है
2: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
1: हैं? अपन को भैया पता नहीं है आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
2: हेलो किसान फोन इन जोका है भैया?
1: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उसको समाधान करवे के लाने बैठक है विशेषज्ञ भैया।
2: कैसे पाए समस्या को समाधान?
1: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से

0: के 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
1: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
0: फोन नंबर है 0510-232-0068।
1: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हो हमारे किसान भैया परेशान।
2: लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा, फिल्म का नाम है बेटा। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल व उदित नारायण की। गीत के बोल लिखे हैं शमीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। लीजिए सुनते हैं ये कार्यक्रम का खूबसूरत सा नगमा।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में 1942 आ लव स्टोरी का खूबसूरत सा नगमा। गीत के वो लिखे थे जावेद ने,

और संगीत तैयार किया था राहुल देव बर्मन ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं ये कुछ संदेश।

लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला नगमा। अनुराधा पौडवाल व कुमार सानू की आवाजों में फिल्म का नाम है आशिकी। गीत के बोल लिखे हैं रानी मलिक ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनते हैं ये कार्यक्रम का खूबसूरत सा नगमा।

लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा। अलका याग्निक व विनोद राठौर की आवाजों में फिल्म का नाम है बाजीगर। गीत के बोल लिखे हैं गोहर कानपुरी ने और संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। लीजिए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला नगमा।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक बा विनोद राठौड़ की आवाजों में ये बाजीगर फिल्म का नगमा। गीत के बोल लिखे थे गौहर कानपुरी ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने। लीजिए कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है रोग, आवाज है उदित नारायण की, गीत के बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा ने और संगीत दिया है MM करीम ने। लीजिए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला और आखिरी खूबसूरत सा नगमा।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक, क्षमा कीजिएगा, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में ये रोक फिल्म का खूबसूरत सा नगमा। गीत के बोल लिखे थे नीलेश मिश्रा ने और संगीत तैयार किया था एमएम करीब ने। एफएम 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। संध्या के 7:20 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन

0: जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के बीच आज तीसरे दौर की वार्ता में सीजेपी ने दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में जारी प्रदर्शन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह और सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की चर्चा में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से संबंधित मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नड्डा ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार ने सीजेपी की इस मांग को मान लिया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि कोई एफआईआर दर्ज की गई है तो उसे वापस ले लिया जाएगा और एफआईआर की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
2: आत्महत्या करने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेजने के बाद कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में आज जालौन विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए अपनी गौरवशाली और नई पहचान को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है।
4: बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी, ये क्षेत्र बीहड़ था, अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था, लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक ओर करते हुए आज इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है, देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में।
2: इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनपद फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 125 विकास

0: विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 12 वर्षों में छात्रों और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम

0: 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के दिन आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं वैश्विक जगत में अपनी दाग को का लोहा मना सकता है, यह व्यवस्था दी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। उन्होंने यहां 342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। आगरा पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है, जिनके ज्ञान, करुणा और सद्भाव के शाश्वत संदेश से विश्व प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मान्यता देश की समृद्ध सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है। श्री मोदी ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर वाराणसी के निवासी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ये काशीवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
2: सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना हम सभी काशीवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। भगवान बुद्ध की प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन स्थली को मिली यह वैश्विक पहचान भारत की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान है। हम इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त करते हैं।
1: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद कल पीलीभीत के पूरनपुर में ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा बदायूं में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री वर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस सेवा के शुरू होने से बदायूं और उजहानी क्षेत्र के यात्रियों को राजधानी लखनऊ के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी।
3: उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिलेगा। हरी झंडी में अपने जो गृह नगर है, होम टाउन है उजानी, उस रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन उजानी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में सबसे पहली योजना में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था।
1: प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर वर्षा जारी है। कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में 25 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 27 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है।
4: मानसूनी प्रवाह बढ़ने के दृष्टिगत 27 जुलाई से पुनः प्रदेश में मानसूनी सक्रियता बढ़ने से प्रदेश में व्यापक वर्षा के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी

करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और यूनेस्को ने सारनाथ की प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बुंदेली धुनों पर आधारित कार्यक्रम खुशबू माटी की। लीजिए कार्यक्रम का ये पहला बुंदेली गीत सुनते हैं, लोक भजन देवीदास कुशवाहा की आवाज में।

0: चिकन बुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचे की।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे भैया का करें, जब खेती किसानी में कौन फसल में कितने पानी देवे, खाद बीज कितने से ले आवे, किसे पूछ में कछु समझे ही में नहीं आऊ।
3: अब चिंता छोड़िए किसान भाइयों, क्योंकि आकाशवाणी झांसी प्रस्तुत करता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला। 24 कड़ियों के इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि से संबंधित जानकारियां और व्यवहारिक अनुप्रयोग की विधियां बताई जाएंगी। यह कार्यक्रम 10 मई 2026 से प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
4: अरे सच में भैया?
3: हाँ बाबू, बिल्कुल सच।
5: लीजिए कार्यक्रम का अगला लोकगीत सुनते हैं, निरंजन कुमार शर्मा की आवाज में ये रसिक गीत।
2: पानी देवे, खाद बीज

0: अभी आप सुन रहे थे ये हरवेंद्र कुमार नीरज की आवाज में ये भजन। लीजिए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अरे भैया कछु अनमने दिखा रहे, का बात है
2: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
1: हैं? अपन को भैया पता नहीं है आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
2: हेलो किसान फोन इन झोंका है भैया?
1: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उनको समाधान करवे के लाने बैठत है विशेषज्ञ भैया।
2: कैसे पाए समस्या को समाधान?
1: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
2: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
1: फोन नंबर है 0510-232-0068।
2: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हुए हमारे किसान भैया परेशान।

अभी आप सुन रहे थे ये चेतावनी गीत, कलाकार थे रामनाथ अहिरवार। लीजिए अगला चेतावनी गीत सुनते हैं वृंदावन और साथियों की आवाज में।

इसी के साथ खुशबू माटी की कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 8 बजने को है। अब आप सुने कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहां चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर

आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख
उन्होंने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक

के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के चौथे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही संगीतकार के संगीत निर्देशित किए हुए कुछ फिल्मी चुनिंदा नगमे। आज के कलाकार हैं बप्पी लहरी।

0: कब तक चुप रहूंगी। अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप इस फिल्म का नगमा। गीत के बोल लिखे थे अनजान ने और संगीत तैयार किया था बप्पी लहरी ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही संगीतकार अर्थात बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन किए हुए कुछ फिल्मी चुनिंदा नगमे। लिए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आप सुनते हैं कार्यक्रम में सबीर कुमार को। फिल्म का नाम है कब तक चुप रहूंगी। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने और संगीत तैयार किया है बप्पी लहरी ने।

लीजिए, अब सुनते हैं कार्यक्रम में मिट्टी और सोना फिल्म से आवाजें हैं आशा भोसले, शब्बीर कुमार व बप्पी लहरी की। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने और संगीत तैयार किया है बप्पी लहरी ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के कलाकार हैं बप्पी लहरी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। लीजिए सुनते हैं ये कार्यक्रम का खूबसूरत सा नगमा।

लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी नगमा। अब आ जाए हैं आशा भोसले, शब्बीर कुमार, बप्पी लहरी की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद ने और संगीत तैयार किया है बप्पी लहरी ने। ये सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला और आखिरी नगमा।

इसी गीत के साथ एक संगीतकार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 8:45 होने को हैं। अब आप सुने समाचार संध्या, तत्पश्चात अर्थात रात्रि 9 बजे सुनेंगे News@9, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 8:45 होने को है। आइए अब सुनते हैं समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया।

0: कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन वट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने

0: मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुनावे स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन

0: कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देशभर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म संजू से। आवाज सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल शेखर अस्तित्व के और संगीत विक्रम मोन्ट्रोस का।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम FM 103 पर। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पॉडकास्ट श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी भाग 6।

0: हासिल किया। हजारों दिव्यांगों के प्रेरणा स्रोत भी बने। स्वागत कीजिए करगिल वॉर के हीरो, भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह जी का। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जय हिंद, सबको नमस्कार, राम राम।
0: कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपका बचपन था, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे या फिर उससे आगे बढ़कर जब आप कॉलेज में गए, तो पहली बार कब एहसास हुआ या कब विचार आया कि आपको सेना में जाना चाहिए? क्या परिवार के किसी लोग ने आपको प्रेरित किया या दोस्तों के बीच ऐसा माहौल था कि दोस्त कह रहे थे कि आपको सेना में जाना चाहिए? वो कहानी थोड़ी सी बताइए।
1: मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, जगाधरी के पास, और मेरी सारी स्कूलिंग जो हुई है वो अब जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, रुड़की, जो IIT रुड़की के लिए मशहूर है, वहां पे हुई है। कॉलेज में प्राइवेट किया है। और रही बात प्रेरणा स्रोत, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, मेरे जो दादाजी थे वो वहां पर आर्मी का एक सेंटर है उसमें सेवा करते थे, वो अकाउंट्स में थे CDA में, उनके साथ मैंने बचपन बिताया अपना, क्योंकि मेरे पिताजी दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे, वो बॉर्डर रोड्स में सेवा कर रहे थे। तो दादा दादी के पास रहते हुए जो एक जीवन था वो बड़ा डिसिप्लिन वाला और सख्त था, लेकिन नाना नानी के पास जब हम छुट्टियों में जाया करते थे तो बड़ी मस्ती होती थी। तो वो जो बच्चा दूसरी क्लास में उनके पास रहता था उसको थोड़ा सा अटपटा लगता था, और डिसिप्लिन में किसको रहना पसंद है। तो एक दिन मैं ये सोच के कि यार नानी के पास ज्यादा मस्ती होती है, घर से भाग गया। और जब मैं घर से भागा तो उस रुड़की की सीमा से बाहर पहुंचा ही था कि किसी जानने वाले ने मुझे पकड़ा, साइकिल पे बिठाया और वापस अपने घर के बाहर छोड़ दी। तो जिंदगी का मेरा वो पहला यूटर्न था, और उस पहले यूटर्न में मैंने सबक लिया था कि भाई डीपी सिंह, जिंदगी में आप अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकते। जहां हो, जैसे हो, वहां पर आपको अपने परिश्रम से, अपने बल से ऊपर उठ के जीना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये जो पहला यूटर्न था, इसने मुझे बाद में जब मैं युद्ध में घायल हुआ, जीने के लिए जो एक फाउंडेशन थी वो ऑलरेडी बना दी थी, सेट कर दी थी। तो जब मैं वापस आया घर तो मैंने सोचा कि यहीं पे रहना है, ठीक है, अब डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन वाले एंगल से ही चलेंगे। और मेरे दादा दादी ने मुझे जोड़ दिया था गुरुद्वारे से, वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने फौज में ऑफिसर बनने की 8वीं क्लास में ही ठान लिया था, जब मैं भाग के गया था और घर में जब वापस लाके छोड़ दिया गया था। तो एक क्लैरिटी आ गई थी तभी कि भैया जिंदगी जीनी है तो फौज में अफसर बनकर जीना है।
0: मेजर साहब, कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। 7 डोगरा रेजिमेंट में कमीशन होना और भारतीय सेना की वर्दी पहनना, कितना गर्व का पल था, क्या इमोशंस आपके जहन में चल रहे थे उस समय?
1: बिल्कुल, बहुत गर्व का पल था, क्योंकि आप ये सोचिए कि जिस बच्चे ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा हो और उस सपने को पाने तक उसको बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू गुजरना पड़ा हो, पहले NDA में फेल हुए, उससे पहले 11वीं में फेल हुए, NDA में 3 बार अटेम्प्ट किया फेल हो गए, फिर ग्रेजुएशन प्राइवेट किया तो उसमें भी एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी शारीरिक रूप से, और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो लग रहा था कि अब बस जीवन डार्क हो गया। लेकिन वहां पर भी हौसला अफजाई माता जी ने करी कि तुम पढ़ते रहो, और क्योंकि उन दिनों में सिचुएशन ऐसी थी घर की फाइनेंशियल की, मैंने बैंक में एक प्राइवेट नौकरी कर ली थी कि मैं पढ़ सकूं और साथ में CDS की तैयारी कर सकूं, क्योंकि जाना तो अल्टीमेट फौज में ही है। फिर CDS में फेल हुए 2-3 बार, फिर इंटरव्यू में फेल हुए, तो कम से कम 5-6 फेलियर देखने के बाद जब आप कमीशन होते हो, अपने ड्रीम को पाते हो, तो एक अलग ही तरीके का जुनून जो सिर में होता है वो मतलब देखने को मिलता है, वो खुशी जाहिर होती है। और उससे भी बड़ी खुशी थी कि कुछ ही दिनों में उसके बाद युद्ध आ गया था, तो बैप्टाइजिंग बाय फायर वाली जो बात, हर सोल्जर जो एक तरीके से तैयार रहता है कि फौज में आए इसलिए कि भारत माँ के लिए कुछ करके दिखाएं।
0: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 1999 में जब करगिल युद्ध शुरू हुआ और आपको पहली बार पता चला कि आपको करगिल में युद्ध के लिए जाना है, उस समय क्या आपके जहन में चल रहा था और आपको वो सौभाग्य मिला, गौरव मिला? क्या परिवार से थोड़ी बातचीत हुई, परिवार के लोगों का क्या कहना था, या फिर सेना के अंदर का क्या माहौल था, थोड़ा बताएं उसके बारे में?
1: देखिए, उन दिनों इंटरनेट या फोन की सुविधा नहीं हुआ करती थी कि हम कनेक्टेड रहे, सिर्फ चिट्ठी लिखा करते थे कभी कभार। और जैसे मैंने बताया 97 दिसंबर में मैं कमीशन हुआ था और साल भर के अंदर ही लड़ाई लग गई थी, तो वो जो एक साल बीता था वो कोर्सेज यंग ऑफिसर्स को सिर्फ कमांडो कोर्स करने में बीत गया था। और सिर्फ 2 महीने की छुट्टी लेने के बाद जब मैं वापस पहुंचा तो

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आज सुनते हैं करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। एक ऐसे योद्धा की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिनके जीवन में 15 जुलाई 1999 का दिन पुनर्जन्म दिवस या अमृत दिवस के रूप में आता है। करगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर जब मौत मोर्टार बनकर गिरी, शरीर पर दर्जनों चोटें लगी, लेकिन उसके बावजूद हौसला नहीं टूटा। लगभग मुर्दा घर से वापस लौटकर भारत के पहले ब्लेड रनर बने, करगिल और लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में मैराथन दौड़ी, कई पदक जीते और आसमान से छलांग लगाकर पहले सोलो स्काई डाइवर होने का गौरव भी

0: तक मेरी पलटन ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय हो चुकी थी। तो आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से कि आप हमेशा कनेक्टेड हो और पता चल रहा है कि परिवार वाला क्या सोच रहा है, भाई बहन क्या सोच रहे हैं, तो ये वो उस समय सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो हमें मालूम नहीं था कि कौन क्या सोच रहा है। और हमें खुद भी सिर्फ रेडियो से पता चलता था कि लड़ाई लग रही है, या टीवी भी नहीं होते थे, और क्योंकि हम दुर्गम क्षेत्रों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉयड थे तो वहां पे समाचार पत्र भी जो 3-4 दिन के बाद आया करता था, जैसे राशन आता था 3-4 दिन के बाद। तो ये जीवन उस प्रकार का था जो आज आप शायद यंगस्टर खासकर इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलग मजे थे। और हम जो थे वो यंगस्टर थे बिल्कुल ही उन दिनों, 24 साल की मेरी उम्र थी और युद्ध शुरू हो चुका था, तो जुनून था कि अब कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है, हम तो तैयार थे सबके सब।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जहां पर आपको डिप्लॉय किया गया कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, -20 डिग्री का तापमान, रणनीतिक चुनौतियां थीं और आपको अपने बटालियन के साथ मुंहतोड़ जवाब देना था। थोड़े आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए विस्तार से आप वो ग्राउंड बैटल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकें कि वहां की क्या स्थिति थी, आप लोग जब वहां पहुंचे तो कैसे बंकर बने हुए थे, या आप लोगों ने क्या व्यवस्था की कि दुश्मनों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे।
0: जो क्षेत्र बुरी तरीके से युद्ध में था वो था कारगिल, द्रास, मश्को। उस क्षेत्र में आगे उन्होंने अपने सैनिकों को बिठाया हुआ था सर्दियों में, वो बहुत दुर्गम क्षेत्र था। उनकी तरफ से जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई आसान थी, तो सर्दियों के दिनों में जब हम वो पोस्ट छोड़ देते थे अक्सर, उन दिनों में वो आराम से आके धीरे धीरे वहां पे उन्होंने अपना राशन पानी जमा करके बैठ चुके थे। हमारी तरफ से जो चढ़ाई थी वो बड़ी दुर्गम थी, लेकिन मैं इखनूर वाले इलाके में पोस्टेड था, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल थी, और वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र था वो था पानी और पहाड़ के मिलाप के कारण, नदी के बीच में हमारा पोस्ट थी। और जैसे आजकल आपने देखा यही वाला टाइम था, तो बारिशों के दिनों में नदी नाले सब भर जाते हैं, बाढ़ तक की सिचुएशन आ जाती है, तो हमारी पोस्ट भी जो थी वो काफी इस तरीके से कट ऑफ हो रखी थी, पीछे सप्लाई बड़ा मुश्किल से मिलता था। लेकिन फिर भी सामने जो दुश्मन था वो कोई 80 मीटर पे पोस्ट पे बैठा था, कोई 100 मीटर की पोस्ट पे बैठा था, तो फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन तो चलती रहती थी। तो दोनों क्षेत्रों का मिलाप नहीं कर सकते, उस क्षेत्र में हैंड टू हैंड बैटल बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कबायलियों के साथ, टेररिस्ट के साथ उनके जो रेगुलर फौजी थे वो भी घुसे थे। हमारे वाले क्षेत्र में रेगुलर फौजी ज्यादा थे, टेररिस्ट कभी कभार इन्फिल्ट्रेट करते थे, लेकिन दुर्गम था जरूर, क्योंकि सरकंडों के बीच में से हमारे वाले क्षेत्र में घुसना बड़ा आसान था। और खासकर हमारे साथ साथ जो सीमा से लगते गांव थे और जो सिविलियन थे उनका जीना बड़ा आराम हो रखा था, क्योंकि सबके घरों पे लगातार फायरिंग की दुर्घटनाएं होती रहती थी। और उन दिनों में भी मैंने देखा कि सिविलियन जो गांव छोड़ के बाकी पीछे चले गए थे, जम्मू की तरफ आ चुके थे, तो जीवन जो था वो सबका क्षतिग्रस्त था, सबका हिला हुआ था, भले ही वो सैनिक हो भले वो सिविलियन हो, लेकिन हम डटे हुए थे क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, यही सिखलाई फौज ने हमें दी है, उसी सिखलाई पे हम चल रहे थे।
1: मेजर साहब, जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे उसी स्थिति से चल रहे थे, 15 जुलाई 1999 का जिक्र बरबस ही आपके साथ बातचीत में आएगा, उसकी सुबह कैसे हुई थी, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो 1.5 मीटर दूर जब मोर्टार गिरा उस समय आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आया था।
0: मेरी जो पोस्ट थी उसमें मेरे साथ एक जेशू साहब और 29 जवान डिप्लॉयड थे, और हमारी पोस्ट से तकरीबन 80 मीटर दूर जो थी वो दुश्मन की पोस्ट थी। तो क्योंकि हमारी लगातार फायरिंग होती रहती थी और मैं क्योंकि यंगस्टर था और हम भी तैयार रहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते जिसके कारण जो हमारा पड़ोसी है वो परेशान रहता था। तो उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसने 15 जुलाई से 2 दिन पहले एकदम फायरिंग बंद कर दी। तो शुरू में तो मुझे लगा 13 तारीख को कि यार फायरिंग बंद हुई है, चलो थोड़ा सा आराम मिलेगा हमारे सैनिकों को भी, लेकिन जब वो लगातार बंद रही 13 की पूरा दिन और 14 को भी मैंने देखा बंद हो रही, तो चिंतित हुआ मैं। और इसका जैसा मुझे डर था वही हुआ कि वो लल बिफोर द स्टॉर्म था, बिकॉज बाद में पता चला शायद वो मेरे से परेशान होकर मेरी पोस्ट की ही रेकी कर रहे थे 13-14 को, मेरे उठने बैठने पर नजर रख रहे थे कि क्या करता है सारा दिन, कहाँ कहाँ जाता है। 15 जुलाई को जब दिन शुरू हुआ, तो दिन शुरू हुआ शुरुआत ही दिन की गोले से हुई, दिन के पौ फटने से पहले गोला फट चुका था और मुझे पता चला वो गोला पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि उस जो गोला नजदीक गिरता है उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जो गोला ऊपर

0: से निकल जाता है, उस आप युद्ध क्षेत्र में पहचान जाते हो कि ये पीछे गिरेगा, आगे गिरेगा, कहाँ गिरेगा। तो पहला गोला तो बहुत पीछे गिरा, दूसरा गोला इससे पहले कि कुछ रिएक्शन होते हैं उनका दूसरा गोला आ चुका था और उसकी आवाज नहीं आई। वो मेरे बगल में गिरा 1.5 मीटर दूर। 1.5 मीटर दूर जो था वो किलिंग जोन था उस गोले का, क्योंकि सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर का दायरा किलिंग जोन होता है। तो उन्होंने तो पूरी अपनी तरीके से प्रिपरेशन के साथ मुझे मारने का पूरा हिसाब किताब फिट किया हुआ था, तो मारने की तो पूरी कोशिश करी, लहूलुहान किया भी, गंभीर भी हुआ मैं बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे सिपाहियों ने उठा के अपनी जान पे खेल के जब मुझे पीछे पहुंचाया 7 डोगरा के सिपाहियों ने, तो रस्ते में खून के साथ साथ हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन फिर भी हम बच गए। बचना था क्योंकि बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे भगवान ने शायद मेरी जिंदगी में लिखे हुए थे जो उसके बाद करने जरूरी थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में घायल होना मेरा बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे शायद भगवान ने ऑलरेडी मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में लिख के भेजी थी, उसके लिए टांग कटना, एक बार मृत घोषित करना, लहू लुहान होना बहुत जरूरी था। क्योंकि वहां से जब फिर कहानी शुरू हुई तो हमने उन दुश्मनों को फेस किया जो सोच से घायल थे। तो वो जो युद्ध लड़ा उसके बाद आज तक जो लड़ रहा हूं, उसमें जो झंडे गाड़ने को मिले, उसमें जो तिरंगा लहराने को मिला, उसमें सेना की जो सिखलाई है वो बहुत काम आई, आज भी आ रही है।
1: इस बातचीत को आगे बढ़ाएं मेजर साहब, बीच की एक छोटी सी कहानी और भी है, जब आप घायल हुए और उसके बाद आपके जो साथी सैनिक थे आपको रेस्क्यू करके अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे थे, बगल में एक नदी भी बहती थी और आपके जो साथी थे उसमें एक को तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में आपका साथ दिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं शायद ना सिर्फ उन 4 सैनिकों का, 7 डोगरा पलटन का, और उसके बाद अनगिनत फौजी और सिविलियन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेना के अस्पताल से जुड़े हुए थे, उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं भी अगर सारी उम्र तब भी वो कम रहेगा। क्योंकि सैनिकों में वो 4 जो मेरे स्ट्रेचर को उठा के ला रहे थे, एक जो था वो नॉन स्विमर था, उसको मतलब तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान पे खेलते हुए उसने फिर भी अपनी सेना की सिखलाई को सर्वोपरि रखते हुए कि अपने सिपाही को, साथी को, भले ही मैं उनका अफसर था लेकिन एक तरीके से मैं उनका साथी था, उसको युद्ध क्षेत्र से निकालना बहुत जरूरी है, उसका हमेशा साथ अंतिम पल तक देते हैं। तो अपने प्राणों पे खेलते हुए उसने मुझे वहां से बचाया, रस्ते में वो स्लिप भी हुआ लेकिन फिर भी उसने मेरे स्ट्रेचर को नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार से जब मैं एम्बुलेंस में आया तो डॉक्टर साहिबान जो थे हमारे RMO, उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद 2.5 घंटे जो मुझे लगे हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो बातें मुझसे करने की कोशिश करी ताकि वो मुझे जगा के रखे, वो आज तो मुझको वो बड़ी अच्छी लगती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन उस समय मुझे वो इरिटेट कर रही थी कि मेरी तो हालत बहुत खराब है और ये पूछ रहा है कि भैया तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मुझे बेहोश होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बात और है कि उसके बावजूद भी मैं कार्डियक अरेस्ट हुआ, बेहोश हुआ, और जब पहुंचा तो एक बार कि भैया इसकी फोटो पे तो माला टंगे के ले जाओ इसे बोला गया, लेकिन हम भारतीय सेना के सिपाही हैं, मरने वालों में से नहीं थे, बचे, आज भी जिंदा है।
1: 15 जुलाई 1999 की कहानी आप बयां कर रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फरिश्ते के रूप में आते हैं कर्नल राजिंदर सिंह जो डॉक्टर थे, वो कैसे आपको मिले? क्या उस समय आप होश में थे मेजर साहब? क्या जब वो विजिट कर रहे थे और वो आपके स्ट्रेचर तक आए तब आपको कुछ अंदाजा था?
0: मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं तो बेहोश था। सर्जन ने तो बोल दिया था कि डेड बॉडी है, ले जाइए मॉर्चरी में, लेकिन वो एमएच अखनूर में उस समय उस दिन थे, ये बाद में मुझे पता चला वो थे, तभी उन्होंने इंटरवीन किया, मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे कहां से वो कैसे बचा के ले आए वापिस, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उनको बेहोश करना और होश में लाना आता था। तो उन्होंने मुझे बचाया और बचा के तीसरे दिन जब मुझे होश आया, ये जो पांव कटा है वो गैंग्रीन के कारण बाद में कटा है, उस समय नहीं कटा था, क्योंकि चोटें बहुत हैं, 73 छर्रे अगर ऑलरेडी मौजूद हैं उससे ज्यादा मेरे को काटते हुए चले गए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी चोटें लगी होंगी। तो बच तो गया था। वो कर्नल राजिंदर सिंह उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए बहुत सालों तक। 2019 में फेसबुक के कारण मैं

0: उनके साथ कनेक्ट हुआ। तब तक मेरी जो किताब थी ग्रिट द मेजर स्टोरी वो छप चुकी थी। मैंने वो किताब उनको उन तक पहुंचाई। वो कैलिफोर्निया में एज ए वेटरन एज ए रिटायर्ड पर्सन अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और फिर जब 2023 में मैं यूएस में हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए जाने का मुझे मौका मिला तो स्पेशली मैं उनसे जाके वहां पे मिला और जाके मैंने उनके पांव छुए गले मिला और तब मैं इतने सालों के बाद इन पर्सन उनको थैंक यू कर पाया मुझे बचाने के लिए। ये है एक सैनिक का सैनिक से मिला।
1: अभी अभी आपने बातचीत के दौरान एक बात कही कि 70 से ज्यादा छर्रे आज भी आपके शरीर में मौजूद हैं। परेशान करते होंगे आज भी?
0: मेड इन पाकिस्तान वाले छर्रे अंदर अभी भी बम के टुकड़े पड़े हुए हैं। 73 ऐसे टुकड़े हैं। उसमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहां पर तंकरना आसान है, जैसे जो ज्वाइंट्स हैं, हिप ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, या चेस्ट हो गया, या दो तीन और ऐसी जगह है, और एक लिवर में भी है। डॉक्टर बोलते हैं कि लिवर में वो चुपचाप लेटा हुआ है किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो मिलीमीटर से कम भी कहीं हिल गया और कोई अंदर से नस फट गई तो पता भी नहीं चलेगा कि थैंक यू कब हुआ। लेकिन वो तंग करने में काफी देर तक तो उन्होंने मेरे को तंग करते रहने के लिए, मतलब उनको उसमें सक्सेस मिलती रही, मगर वो सक्सेस मिली तब उन्हें बंद हुई जब मैंने वो तो तंग करने से नहीं हटे लेकिन मैं तंग होने से हट गया। मैंने कहा ठीक है भैया, जो मैंने लेसन 8वीं में सीखा था कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं भाग सकते हैं, तो उन्हीं परिस्थितियों में रह के आपको अव्वल उठना पड़ेगा मेहनत करके अपने अंदर उन्हीं शक्ति को बढ़ा के। वो लेसन फिर से यहाँ काम आया कि अगर आप छर्रों को निकाल नहीं सकते तो उनको अपना लीजिए, उस दर्द को अपना लीजिए। वो दर्द जिस दिन आप अपना लोगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा, और रोने के बजाय उस दर्द पे हंसना शुरू कर दीजिए। उस दिन के बाद आज तक वो तंग तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं तंग होता नहीं हूं।
1: तंग तो आप उस दिन भी नहीं हुए जब डॉक्टर ने कहा था कि आपका पैर काटना पड़ेगा। 24-25 साल का एक युवा देश के लिए युद्ध लड़ रहा था, पूरा भविष्य सामने खड़ा था, और आपने एक सेकंड का भी समय नहीं लगाया जब डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन के कारण आपका पैर काटना पड़ेगा। उस समय क्या चला था आपके जहन में? भविष्य नजर आ रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिर उस समय कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर कर रही थी कि नहीं सब कुछ बेहतर कर सकता हूं?
0: ये बहुत अहम सवाल है और मैं कहूंगा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था मेरी जिंदगी का, क्योंकि जब डॉक्टर साहबान कर्नल अशोक जो बाद में ब्रिगेडियर अशोक आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के कमांडेंट बनने के बाद रिटायर हुए हैं, वो मेरे बिस्तर के चारों तरफ पट्टी खोलने के बाद डिसीजन लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं इस बच्चे को कैसे बताऊं कि तुम्हारी टांग काट दी जाएगी। उनके बोलने से पहले ही मुझे ये पता चल गया था पट्टी खोलने के बाद टांग को देख के कि ये कटेगी। तो मेरे दिमाग में दो विचार आए थे, उन विचारों को मैं आपसे शेयर करता हूं कि पहला जो विचार था उसकी ओनरशिप मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि वो बड़ा ही स्पिरिचुअल और बहुत ही एक तरीके का पॉइस विचार था। क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक आया कि अब देखते हैं कि एम्पुटी की लाइफ, डिसेबल वाली लाइफ कैसे होती है, ये एक चैलेंज है। शायद एक दिन मैं इस जिंदगी में इस चैलेंज को इस प्रकार से निभा पाऊंगा कि ना सिर्फ मैं बल्कि लोग भी प्रेरित होंगे। और दूसरा जो विचार था वो विचार था कि मैंने अपनी जिंदगी से खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उसके क्वालिटी और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं जीऊंगा तो खुल के जीऊंगा। अब इस दूसरे विचार को तो मैं मानता हूं कि मेरा था, लेकिन पहला विचार, 24 साल का जो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल थॉट कैसे सोच सकता है, ये मुझे अभी भी हैरानी होती है। तो शायद भगवान की दी हुई सोच थी और उस सोच को भगवान ने एक्चुअल में रियलाइज भी कराया, वो पूरे तरीके से खरी उतरी भी, क्योंकि जो दूसरा विचार था उस विचार ने उस सोच को खरी उतरने में बड़ा हेल्प करी। हर मौके पे जहां पे मैं कुछ अचीव कर पाया हूं डिसेबल होने के बाद, उसके पीछे वो मेरी प्रॉमिस थी मेरे साथ कि मैं अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड, लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज ना करने का मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अंदरूनी तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आज के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठने के लिए आज के लेवल से अपने आप को अगर उठाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। और भगवान की दया से बार बार वो कंफर्ट जोन मैंने तोड़ा है, चाहे वो नकली टांग से भागना हो, चाहे वो ब्लेड से भागना हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो हवाई जहाज से कूदना हो, वो कंफर्ट जोन टूटा है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा है।
1: पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में चलते

0: मेजर साहब, जब आप एक साल से ज्यादा समय तक अस्पताल में रहे, कई सर्जरियां हुई, उसके बाद घर वापस आए, जब व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, आपने एक टांग गंवा दी, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? आप देश के लिए लड़े।
1: तकरीबन 1 साल मैं हॉस्पिटल में रहा, और हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं था। हॉस्पिटल में मेरे जैसे 5 जने थे। हम किसी की टांग नहीं थी, किसी का आंख नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख और हाथ दोनों नहीं थे। लेकिन सब में जुनून था और सबके सब युद्ध क्षेत्र में घायल वाले थे। और उस जुनून ने, उस कमराडरी ने एक दूसरे का सहारा बनके कभी भी हमारे को ये नहीं फील होने दिया कि हम किसी चीज में कम है। इनफैक्ट हमने वो करके दिखाया जो शायद उस समय लोग सोच भी नहीं पाते। कभी हम एक ही टांग पे क्लब में नाचते हुए नजर आते थे, कभी एक ही टांग में हम सड़कों पे स्लिप होके गिर रहे हैं, फिर भी उठ के चल पड़े हैं क्रच के साथ। तो जिंदगी खुल के जी रहे थे और खुद का देखभाल भी करने की पूरी कोशिश रख पा रहे। लेकिन जब दोबारा से जीवन में वापसी आई, जब दुनिया में वापसी आई और आम जीवन दोबारा शुरुआत करने का वक्त आया, तब हमें पता चला कि लोगों का जो नजरिया है वो डिसेबल की तरफ थोड़ा नकारात्मक है। और मेरे लिए खासकर वो एक चैलेंज था क्योंकि मेरा जो पास था, मैं कमांडो ट्रेंड हाईली सुपरफिट टाइप का बंदा हुआ करता था। लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं 4 कदम भी बगैर किसी सहारे के आज की डेट में चल नहीं पा रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इरिटेशन होती थी, इरिटेशन के कारण गुस्सा आता था, गुस्से के कारण लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो गया है। लेटर ऑन आज भी मैं स्टेज पे जाता हूं तो मेंटल हेल्थ और PTSD के बारे में जरूर बात करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके पता ना होने के कारण मुझे बहुत कुछ सफर करना पड़ा। इन माई केस मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जो बचपन में गुरुद्वारे जाने से जो मिली थी, उसके कारण मैं रिवाइव कर पाया और उसी के कारण मैं अचीव भी कर पाया चीजों को। तो वो मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन थी और जो वो इरिटेशन थी, जो अपना द्वंद था मेरा, मेरे पास की रियलिटी का और आज की रियलिटी का, उसको ओवरकम करने में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने मेरा सहारा दिया, उस सहारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और उन अनअचीवेबल अनथिंकेबल चीजों को, चाहे वो पहला व्यक्ति हो भारत का जिसने नकली टांग से मैराथन भागी, इसके बावजूद कि मैं जब पूरा कंप्लीट था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद ना टांग कटने के बाद किस किलोमीटर भाग के आया। तो ये सब ये पता चलता है कि दिमागी सोच अगर आपकी सही है तो आप एक एबल इंसान हो।
0: जी
1: ये जो एग्जाम्पल फिर मेरे को सेना की सिखलाई और अपने हिस्ट्री की मजबूती, सिखिज्म की मजबूती के कारण जो मैं एग्जाम्पल ऑन ग्राउंड सेट कर पाया अपने एज ए डिसेबल सोल्जर होने के बावजूद अचीवमेंट्स के साथ, उस एग्जाम्पल ने लोगों के नजरिए में बदलाव लाया। और आज की डेट में जो मेरा ग्रुप है, NGO है, द चैलेंजिंग वन, जिसको 2011 में मैंने शुरू किया था, जिसमें तकरीबन आज की डेट में 3,500 एम्पुटीज कनेक्टेड है,
0: जी
1: उसमें उस नकारात्मक सोच से तोड़ के उन एम्पुटीज ने जीना सीखा। जीना सीखने के साथ साथ अचीवमेंट करनी सीखी। आज उनमें बहुत सारे जो है कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, ना सिर्फ खेलों में बल्कि एडवेंचर में। और एक नाम मैं खास कर लेना चाहूंगा, उस लड़की का आप लोग जानते भी होंगे, मानसी जोशी,
0: जी
1: जो कि वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड तक अचीव कर लिया है। तो ये विचारों का जो बदलाव आया, और जिसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि भगवान ने मुझे चुना, उसमें उस पाकिस्तानी का बम फेंकने की रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट थी। ना वो बम फेंकता चोटिल होता, ना मेरी टांग कटती, ना ये हिस्ट्री लिखी जाती।
0: बहुत ज्यादा समय नहीं है कार्यक्रम में, दो छोटे छोटे सवाल आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे। पहला कि मैराथन आपने दौड़ना शुरू कर दिया था, ब्लेड रनर, भारत का पहला ब्लेड रनर बनने की क्या कहानी थी, और फिर सोलो स्काई डाइविंग भी आपने शुरू की, बहुत संक्षेप में उसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
1: 3 बार जब मैं नकली टांग से हाफ मैराथन भाग चुका था, तो जो एडजुटेंट जनरल हुआ करते थे उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश अग्रवाल, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को काफी शाबाशी दी और पूछा कि बताओ DP, तुम एक सेवानिवृत्त सिपाही हो, तुम्हारे को मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर अगर ब्लेड मिल जाए तो शायद भागना और नॉर्मल

0: हो जाए, तो मेरे को 2011 में एजी ने भारत का पहला ब्लेड इंपोर्ट करके 2011 में मेजर डीपी सिंह सेवानिवृत्त को दिया गया और वहां से मेरे को ब्लेड ऑनर का नाम, फर्स्ट ब्लेड ऑनर ऑफ इंडिया का नाम मिला। उसके बाद 2018 में जनरल बिपिन रावत जब चीफ थे तो 2018 को सेना ने एयर ऑफ डिसेबल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी उस सोल्जर को डेडिकेट किया था और जनरल बिपिन रावत मेरा एग्जाम्पल जगह जगह पे जाके दिया करते थे अबाउट एबिलिटी ऑफ द सोल्जर जो कि 100% डिसेबल है उसके बावजूद उसकी एबिलिटी। तो उनकी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो साल है इसको हम किसी हाई नोट पे कंप्लीट करें, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को स्काई डाइविंग करने की अनुमति दी जाए। तो उनकी अनुमति के साथ फिर जो आर्मी एडवेंचर विंग है उन्होंने मुझे एक महीने की सिखलाई करी दी 2019 में मार्च नासिक में, और 29 मार्च को 2019 को पहला स्काई डाइवर एशिया का डिसेबल्ड होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ।
1: अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, देश के करोड़ों युवाओं के नाम आपका क्या संदेश होगा जो कई बार हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि भविष्य काफी अंधकारमय है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उन युवाओं को भी आप क्या कहना चाहेंगे जो देश की सेवा के लिए सेना में आने के बारे में सोच रहे हैं?
0: देखिये, मैं भी युवा था और मैं आज भी अपने आप को युवा समझता हूँ, समझने में तो कोई गलत नहीं है चाहे भले बूढ़े हो गए। तो मेरा ये कहना है कि बैठना या रुकना में कोई दिक्कत नहीं है, थकते सभी हैं, लेकिन उसके बाद फिर उठो और चलते रहो। चलना तब खत्म करना है जब तुम्हारे को तुम्हारा एम, तुम्हारा मकसद मिल जाए, उससे पहले नहीं, उससे पहले सिर्फ ब्रेक ले सकते हो।
1: कहते हैं मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, संभावनाओं को संभव नहीं बना पा रहे हैं आप, तो हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेजर डीपी सिंह की कहानी अपने आप में सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक संस्थान बन चुके हैं और वो बताने के लिए काफी हैं कि कितनी विकट परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाए लेकिन आगे बढ़ने की चाह हमेशा बनी रहती है। जरूरत होती है कदम बढ़ाने की, जरूरत होती है अपने लक्ष्य को और बड़ा करने की। थोड़ा सा हौसला रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार, अपने जीवन के बारे में, करगिल युद्ध के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ विस्तार से बात करने के लिए मेजर डीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद, जय हिंद, सबको राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। लीजिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस नगमे के साथ। फिल्म का नाम है अनुरोध, आवाज है किशोर कुमार की, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए सुनते हैं ये कार्यक्रम का पहला नगमा।

लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है नागिन। आवाजें हैं लता मंगेशकर व महेंद्र कपूर की। गीत के बोल लिखे हैं वर्मा मलिक ने और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है सड़क। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल व मनहर उदास की।

लीजिए कार्यक्रम का अगला और आखिरी नगमा सुनिए, उदित नारायण व साधना सरगम की आवाजों में। फिल्म का नाम है सुहाग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी नगमा।

इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गजल के साथ। कलाकार हैं पंकज उदास।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। अभी आप सुन रहे थे ये पंकज उदास की खूबसूरत सी गजल। लीजिए एक बार फिर सुनते हैं पंकज उदास को इस गजल के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम की खूबसूरत सी पेशकश। ये कार्यक्रम की आखिरी गजल है।

इसी गजल के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11 बजने को है। अब आप सुने हिंदी में समाचार, तत्पश्चात होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद

0: सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजीपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।